आज सुबह 9:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत दांतों की समस्याओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संबंध में डॉक्टर पवन परिहार से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के और उसके बाद में गाने नए तराने नए 10:30 पर। शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत फोन करें गीत सुने महिला जगत 5:30 पर आप सुन सकेंगे। किसान मंडी

0: ये थे कुछ खास कार्यक्रम हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, उर्वरकों की बिक्री के लिए राज्य भर में जल्द ही ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली लागू की जाएगी। राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 20 दिन में 1624 हार्ड कोर अपराधियों को गिरफ्तार किया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में अच्छी बरसात से नदियों में पानी की बेहतर आवक, सबसे अधिक 30 सेंटीमीटर बारिश झालावाड़ के सुनेल में दर्ज की गई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप जारी की। इसके तहत 6000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। इस पहल से कृषि विद्यार्थियों को अब हर महीने DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे विद्यार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के आर्थिक मदद मिल सकेगी। श्री चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता के साथ कृषि शिक्षा को मजबूत करने का प्रमुख साधन भी है।
2: सत्र समय पर चले, परीक्षाएं टाइम पर हो, कई सुझाव मेरे बेटा बेटियों आए थे, उनको लागू करने की दिशा में काम निरंतर चल रहा है। लेकिन आज के युग में यह भी बड़ा अजीब लगता था, स्कॉलरशिप जाएगी स्टूडेंट्स के नाम लेकिन जाएगी यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में, फिर कॉलेज फिर ढूंढेगा। इतना समय लग जाता था कि जब तक स्कॉलरशिप पहुंचती थी तब तक पता चला परीक्षा वरीक्षाएं सब निपट गए। स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या था? सही समय पर स्टूडेंट्स की सही जरूरत पूरी हो जाए पढ़ाई लिखाई।
1: उर्वरकों की बिक्री के लिए राज्य भर में जल्द ही ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली लागू की जाएगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सिरोही और राजसमंद जिलों में चलाया गया पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है। इस व्यवस्था के तहत अब तक 68,000 किसानों ने 10,000 मीट्रिक टन उर्वरक खरीदा है। उन्होंने बताया कि नई प्रणाली के तहत किसान खेत से ही ऑनलाइन बुकिंग कर QR कोड के माध्यम से फसल की वैज्ञानिक सिफारिश के अनुसार उर्वरक खरीद सकते हैं। इससे उर्वरक बिक्री में पारदर्शिता आएगी और कालाबाजारी तथा जमाखोरी और डायवर्जन पर रोक लगेगी। श्री मीणा ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है और नियमित आपूर्ति जारी है। उपमुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कल राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वेबसाइट शुरू होने से परिषद के कामकाज में गुणवत्ता, पारदर्शिता और आधुनिकता आएगी। वेबसाइट के माध्यम से आयुर्वेद नर्सिंग में प्रवेश, काउंसलिंग, पंजीकरण, संस्थाओं की संबद्धता और नर्सिंग परीक्षाओं से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। परिषद की गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी एक क्लिक पर मिल सके।

0: करेंगी। गौरतलब है कि इस वेबसाइट को राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर और आयुर्वेद निदेशालय अजमेर की वेबसाइट से भी जोड़ा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत पिछले 20 दिनों में 1624 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभियान में नशा तस्करों, साइबर अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 848 एनडीपीएस मामलों में 1158 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध के मामले में 624 लोग पकड़े गए और लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पीड़ितों को वापस दिलाई गई। अवैध हथियारों के मामले में 396 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर 232,000 से अधिक कार्रवाई की गई। महिला सुरक्षा के तहत 2,835 मामलों में कार्रवाई की गई। और अब मौसम। प्रदेश में कल कई स्थानों पर अच्छी बरसात हुई। हाड़ौती अंचल में जमकर बादल बरसे। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों में लगातार बरसात से नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ गए। तेज बरसात से आम जीवन भी प्रभावित रहा। कोटा के दरा घाटी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के कारण यातायात बाधित रहे। बूंदी में भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार झालावाड़ के सुनेल क्षेत्र में बहुत अधिक बरसात हुई और वहां 30 सेंटीमीटर पानी बरसा। झालावाड़ के बकानी और पिरावा में 25 सेंटीमीटर से अधिक बरसात दर्ज की गई। इसके साथ ही कोटा के दिगोद, रामगंज मंडी, सांगोद और चेचट में भी भारी बरसात हुई। करौली में देर रात झमाझम बरसात हुई। विभाग ने आज भी हाड़ौती अंचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। वहीं लगभग 20 स्थानों के लिए हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। कल से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। बड़े पुल, बिजली संयंत्र और पाइपलाइन जैसी संरचनाओं की सुरक्षा में वेल्डेड जोड़ अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं जोड़ों को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिक वेल्डिंग की नई तकनीक और सामग्री विकसित करने पर शोध कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मैकेनिकल विभाग की शोध टीम समुद्री और ऑफशोर क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए हल्की और मजबूत कंपोजिट सामग्री विकसित करने पर काम कर रही है। इससे कठिन परिस्थितियों में इस्तेमाल होने वाली संरचनाओं को और अधिक सुरक्षित तथा टिकाऊ बनाने में मदद मिल सकेगी।
1: वैज्ञानिक रेड ऑक्साइड जैसे प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल खनिजों का इस्तेमाल कर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड विकसित कर रहे हैं, जिससे जोड़ अधिक मजबूत और टिकाऊ होंगे। टीम ऐसी वेल्डिंग सामग्री और तकनीक विकसित कर रही है जिसका इस्तेमाल अत्यधिक तापमान, दबाव और जंग वाली परिस्थितियों में किया जा सके। इसका लाभ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्रों, पाइपलाइनों व समुद्री संरचनाओं को मिल सकता है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: पंच गौरव कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब पंच गौरव के तहत चिन्हित उपज और वनस्पति प्रजातियों की प्रसंस्करण इकाइयों को भी नीति के तहत लाभ और प्रोत्साहन मिलेगा। इससे स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और किसानों तथा उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। नीति के तहत भरतपुर में शहद और कदम्ब, अलवर में प्याज और अर्जुन तथा जयपुर में आंवला और लहसोड़ा से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों को फायदा पहुंचेगा। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर नमन किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वतंत्रता के लिए अल्पायु में दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान सभी को राष्ट्र सेवा और देशभक्ति के पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में

0: में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, उर्वरकों की बिक्री के लिए राज्य भर में जल्द ही ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली लागू की जाएगी। राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 20 दिन में 1624 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में अच्छी बरसात से नदियों में पानी की बेहतर आवक, सबसे अधिक 30 सेंटीमीटर बारिश झालावाड़ के सुनेल में दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 9:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह है पहली प्रस्तुति, आवाज चंद्रु आत्मा की है।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: शर्मा बंधु की गाई इसी भक्ति रचना के साथ वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। इनसे मिलिए के अंतर्गत लीजिए सुनिए दांतों की समस्याओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संबंध में डॉक्टर पवन परिहार से अशोक कुमार गोयल की ये बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन परिहार, जो कि नागौर के जाने माने डेंटल सर्जन हैं और यहाँ नागौर में ही सुगन सर्किल पर आपका परिहार डेंटल क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है। यहाँ आप दंत चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे जो दांतों की सामान्य समस्याएं होती हैं हर आयु वर्ग के लोगों को, वो क्या होती हैं और दांतों की समस्याओं के बारे में लोगों को क्या भ्रम है और वो भ्रम कहाँ तक सही है गलत है, वो सारी बातों को लेकर और किस प्रकार से हमारी आदतों को और हमारे व्यवहार को, दांतों से जो हम संबंधित व्यवहार है उसको रखें ताकि हम दांतों की समस्या से बचे रह सकें। और दांतों की समस्या को जो हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं वो कितनी गंभीर समस्या हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर, उस पर भी डॉक्टर साहब प्रकाश डालेंगे। सभी बातों को लेकर आपसे चर्चा होगी। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: धन्यवाद, आपने यहाँ हमें बुलाया और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि श्रोताओं की सारी जो भी समस्याएं हैं बता सकूं आपको अच्छे से।
1: बिल्कुल। हाँ। डॉक्टर साहब, यहाँ आप काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं नागौर में, आपका ये कर्म भूमि है और जन्म भूमि भी है आपकी।
2: हाँ जी।
1: तो यहाँ के जो पेशेंट आते हैं, दांतों के जो मरीज आते हैं आपके पास, किस तरह के मरीज ज्यादा आते हैं? चूंकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं और शहरी क्षेत्र के भी मरीज होते हैं, तो आप जो उन, एक सबसे पहले बात जो मैं करना चाहूंगा कि वो हर आयु वर्ग का आपके पास मरीज आता है, तो किस आयु वर्ग के में किस तरह की दंत समस्याएं आपने देखी हैं, वो थोड़ा सा आप सबसे पहले उस पर हम चर्चा करें।
2: हाँ, सही है, हमारे पास में हर आयु वर्ग और हर प्रोफेशनल से हमारे पास लोग आते हैं। एक किसान भी आता है और एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी भी आता है, एक व्यापारी भी आता है, तो एक ठेला चलाने वाला वो भी आता है, क्योंकि ये एक समस्या है वो आम जन में सबको होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो बच्चों में होती प्रॉब्लम और उसके बाद में हम अडल्ट्स जो व्यसक होते हैं उसमें, और एक जो बुजुर्ग होते हैं उनमें होती है। तो सबसे पहले हम जब बच्चों के लिए समस्या के बीच में आते हैं तो बच्चों में ज़्यादातर जो कम उम्र में हम देखभाल नहीं करते दांतों की, क्योंकि क्या है माता पिता अच्छी तरीके से कई बार उनको ब्रश नहीं करवा पाते, तो उसके अंदर बहुत जल्दी से उनके दांतों में खराब होने शुरू हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, कैरीज हो जाती है, ठीक है। और युवावस्था में हमारी लापरवाही होती है, हम अच्छे से ब्रश नहीं करते, फिर हमारी आदतें होती है, हैबिट्स होती है, जैसे गुटखा पान च्यूइंग वगैरह होता है, तो वो करने की वजह से भी हमारी जो मुख की समस्याएं दांतों की समस्याएं बढ़ती है। और जहाँ तक हम बुजुर्गों के दांतों की समस्या के और मुख की बीमारी के बारे में आते हैं, बुजुर्गों में जब एक अवस्था के बाद में दांत कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, तब वो जब दांत गिर जाते हैं तो उनको टाइम पे उसको रिप्लेस नहीं करवाते, बदलवाते नहीं है, उसकी वजह से भी उनके जो जबड़े के अंदर भी समस्या आना शुरू हो जाती है और प्लस उनको खाने पीने की समस्या भी आना शुरू हो जाती है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि हर उम्र की दांतों की अपनी अलग समस्याएं होती है, थोड़ी अलग किस्म की समस्या होती है उम्र के हिसाब से, तो हम ये देखते हैं कि दांतों की समस्या को लोग जनरली जो है वो मतलब गंभीरता से नहीं लेते हैं और वो तभी दंत चिकित्सक के पास डॉक्टर के पास आते हैं जबकि उनको ये अपरिहार्य हो जाता है ना कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तो हम सबसे पहले तो

0: जैसे हम कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, दांतों की देखभाल किस प्रकार से की जानी चाहिए, किस प्रकार से हम अपने ब्रशिंग की बात हो, चाहे वो जो खाने पीने की बात हो और भी जो दूसरी आदतें हैं उनकी बात हो, किस प्रकार की हमारी रहन सहन खान पान होना चाहिए कि हम जो दांतों की समस्याओं से बचे रह सके।
1: हाँ, ये बिल्कुल सही है। अवेयरनेस बोलते हैं हम इसको, डेंटल अवेयरनेस।
0: जी
1: तो जब हमारे मुंह में पहला दांत आना शुरू होता है, तब से हमें अपने मुंह के दांतों की और मुंह की ध्यान रखना चाहिए। और जो एक बहुत ज़रूरी है, माता पिता सबसे पहले जो प्रथम शिक्षक होते हैं वो वहाँ से कह करते हैं। उसके बाद में विद्यालय में भी जो शिक्षक वगैरह थे उनको भी समय समय पर जो बच्चों को बताना चाहिए कि हम अपने शरीर के अलावा भी हमारे जो मुंह और दांतों की समस्याओं के बारे में उनको कैसे रखें। और जब हम प्रौढ़ावस्था में या वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद में आपको रेगुलर दंत चिकित्सक के पास जाके उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
0: जी
1: तो इस तरह के जो अवेयरनेस होते हैं, एक तो हमारे क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारी जो हैबिट्स होती है सुबह शाम ब्रश करने की, तो
0: जी
1: क्या है, ज़्यादातर हम खाना खाने के बाद में, जो अमूमन गांव में वगैरह में लोगों को टाइम नहीं होता, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो वो क्या है कि सुबह उठ के सीधा आप खाना वाना खा के खेतों में चले जाते हैं अच्छे से, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होते, कई बार अच्छे टूथपेस्ट नहीं होते, ब्रश नहीं होते हैं। और उसके बाद में जो उनके आदतें होती है, जैसे चिलम पीना, बीड़ी पीना, गुटखा, इस तरह की चीज़ें होती है, तो वो क्या है उस जो मुख संबंधी समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य कि सबसे पहले आप अपने जो सफाई का, सुबह उठते ही जो ब्रश वगैरह, जो मंजन वगैरह करते हैं, वो आप तरीके से प्रॉपर से करें। उसको कम से कम 10 से 15 मिनट आप उसको धोएं, आपके दांतों को साफ करें, आपकी जीभ को अच्छे से साफ करें, और रात को सोने से पहले भी ब्रश करें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। उसके अलावा जो हमारी डाइट होती है, ज़्यादातर क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल, जो न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी हो रही है, जो अच्छे खान पान की कमी हो रही है, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण में खाने पीने की कमी है, बट ऐसा हो रहा है कि वो खा नहीं रहे हैं, क्यों, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजकल दूध वगैरह बच्चे अगर नहीं पीते तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो चॉकलेट्स, कुरकुरे वगैरह जो बाहर के बाजारी जो चीज़ आते हैं, उसकी वजह से क्या है कि हरी सब्जियाँ वगैरह, पनीर वगैरह ये नहीं खाते, तो उसकी वजह से भी क्या है कि हमारे दांतों में कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, उससे मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कैविटीज़ वगैरह डेवलप होने शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि हमारे खान पान का जो, और उसके बाद में हमारे जो दांतों को साफ करने की जो तरीके हैं बराबर नहीं है, इसकी वजह से दांतों की समस्याएं बढ़ रही है। तो
0: जी
1: ये हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि दांत प्रॉपर साफ करें
0: साफ
1: सुबह
0: सफाई
1: शाम,
0: में, मतलब
1: दोनों टाइम साफ करें।
0: न्यूट्रिशियस डाइट लें,
1: बिल्कुल
0: मतलब पोषण
1: बिल्कुल,
0: युक्त भोजन करें
1: हाँ
0: और अपने दांतों की, मुंह की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
1: हाँ
0: अब इसी में एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ब्रशिंग की बात आती है कि भाई ब्रश करें सुबह शाम ब्रश करें, तो थोड़ा सा, क्योंकि वो विषय बहुत वृहद हो जाएगा अगर हम उसमें ज़्यादा डीपली जाएंगे तो, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ब्रश कैसा हो, पेस्ट कैसा हो, मंजन कैसा हो और किस प्रकार से किया जाना चाहिए, सही तरीका उसका, सही समय, ये सारी बातों को थोड़ा सा आप बताएं।
1: एक्चुअली जो ब्रशिंग का सही समय होता है वो आपका खाने के बाद में होता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आपको अच्छे से ब्रश करना चाहिए। अब ब्रश की कैटेगरी हम दो तीन तरह में डिवाइड कर सकते हैं। अभी जैसे आपका नॉर्मल है, कोई भी मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई तरह का आपके मसलों की समस्या नहीं है, आपको केवल मेंटेनेंस के लिए काम लेना है, आपको केवल सार संभार के लिए, तो उसके लिए मीडियम जो ब्रश आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपके मसलों में खून आ रहा है या दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, तो हम जो सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश हम काम लेते हैं। और जहाँ तक टूथपेस्ट जो हम काम ले रहे हैं, हमें केवल केवल जो पेस्ट काम लेने चाहिए, और जो पाउडर फॉर्म होते हैं वो क्या होता है, कई बार दांतों में एब्रेसिवनेस, जो घर्षण की वजह से क्या है दांतों को कमजोर करते हैं, इसलिए उसमें हमें ये इसको बचना चाहिए इस तरह के पाउडर्स यूज करने के लिए। और हमें केवल टूथपेस्ट, वो भी जो जिसमें झाग आते हैं, वो उसको अच्छे से, और हर एक जगह, जैसे हम हर हर साइड पे, जैसे हम सामने की तरफ, पीछे की तरफ, और
0: जी
1: उसमें 10 बार कम से कम एक बार घुमाएं, और उनको राउंड मोशन में, कई बार हम क्या है कि सीधा इसको सीधा एक ही दिशा में घुमाते हैं, उसकी वजह से दांत कई बार नष्ट भी होने शुरू हो जाते हैं, खराब भी होने जाते हैं। तो उसमें क्या है कि एक सर्कुलर जो राउंड ऑफ क्लॉक जो मोशन होता है उसके अंदर है ना दांतों की सफाई करनी चाहिए, और जो जीभ की तरफ जो उसका पोर्शन होता है वहां भी कई बार क्या है हम बार बार से कर लेते हैं, जीभ की तरफ जो पोर्शन छोड़ देते हैं, हाँ जीभ की तरफ जो उसमें भी आपको ब्रश अच्छे से घुमाना होता है। और एक बार आप जब ब्रश कर ले तो दोबारा आप मिरर में देखो कांच में कि आपका पूरी सफाई हुई नहीं हुई, अगर आपको लगता है कहीं रह गया तो दोबारा उसको ब्रश करना चाहिए।

0: जी बिल्कुल, तो ये ब्रश का हो गया, और रात को सोने से पहले ब्रश जरूर
1: हाँ
0: करें,
1: करना
0: रात
1: चाहिए
0: को खाने के बाद, यानी कि सोने से पहले कैसे भी जो
1: बिल्कुल, खाने के
0: आप।
1: तुरंत बाद कुछ भी खाइए,
0: हाँ
1: उसके बाद में आपको कुल्ला और ब्रश करना चाहिए।
0: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जो दांतों की सामान्य जो हम कहते हैं कि समस्याएं आपके पास भी काफी आती होंगी, वो केविटी की है जिसमें कि 8 सीटी की जरूरत भी होती है, थोड़ा सा उसके बारे में विशेष तौर से मैं जानना चाहूंगा, केविटी के क्या कारण होते हैं विशेष तौर से, और किस स्टेज पर हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं ताकि मरीज को ज्यादा दिक्कत भी नहीं हो और उसको परेशानी ना हो, जल्दी इलाज हो जाए।
1: देखो, ऐसा देखा जाए तो जे जो सर्वे होते हैं हमारे मेडिकल डेंटल साइंसेज में, उसके अकॉर्डिंग करीबन 90-95% लोगों में दांतों की बीमारियां होती है, और वो पहुंचते नहीं है दंत चिकित्सक के पास में या दांतों के डॉक्टर के पास, बिकॉज कई तरह के मिथ्स हैं जो, मतलब इस तरह के अफवाहें, भ्रम होते हैं जो हमारे पुराने टाइम में जो हो सकती है वो सही थी, लेकिन आज के लिए वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि चीज़ें और जो मेडिकल साइंस ने जो उन्नति की है उसकी वजह से ये चीज़ें काफ़ी दूर हुई है। तो सबसे पहले जो लोगों का नहीं आने का रहता है कि गांव में वगैरह में कई बार जैसे क्या होता है कि जैसे कीड़े निकालने वाले जो होते हैं वो वहां जाके कीड़े निकलवा लेते हैं, उनको लगता है कि कीड़े निकल गए तो उसकी वजह से आराम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए और ये टेम्प्रेरी होता है।
0: जी,
1: और उसके
0: तो ये
1: बाद
0: मिथ्स की बात हम करते हैं कि जो
1: हाँ
0: भी दंत समस्याओं को लेकर जो मिथ्स हैं लोगों में, उन पर आप एक एक करके थोड़ा सा प्रकाश डालें उनका, वो
1: हाँ
0: कहाँ
1: तो
0: तक सही
1: वही,
0: गलत है।
1: हाँ
0: हाँ
1: तो वो
0: जी,
1: कीड़े निकलवाना, दूसरी बात है कि दांत निकलवाने से आंखों की
0: तो मतलब
1: रोशनी
0: कीड़े जैसा कोई चीज नहीं
1: नहीं
0: होती है।
1: होती है। एक्चुअली वो जो कीड़े, जो देखो वो उनको लगता है कि वो कीड़े, बट इस तरह की जब हमने डेंटल साइंस की जब स्टडी की है, हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देख के सब कुछ स्टडी किया है, हमें इस तरह के कीड़े दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ।
0: जी,
1: दूसरा कहते हैं कि भाई
0: दांत
1: दांत निकालने
0: निकालने
1: से आंखों की रोशनी चली जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि दांतों की नसों का और आंखों की नसों का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता है, इसलिए ये भी एक मिथ है। और आजकल की जो हमारी उन्नत तकनीकी में हम इतना ध्यान रखते हैं कि दांत से कुछ MM दूर तक भी हम उसको बचाव करके रखते हैं,
0: जी
1: तो आंख होता बहुत ही दूर होता है। तीसरा तीसरा होता है कि दांतों का दर्द, जो उपचार के दौरान जो दर्द होता है उसको लेके भी जो मरीज है बहुत चिंतित होता है, उनको लगता है पता नहीं कितना दर्द होगा, डॉक्टर साहब को दांत सुन करने के बाद में भी दर्द होता है, लेकिन आजकल जो एनेस्थीसिया आया है, जो सुन करने की जो पद्धतियां आई है उसके अंदर बहुत लगभग बिना पेन के सारा प्रोसीजर होता है, कई बार हम एक एक दो दो घंटे तक प्रोसीजर करते हैं, उसमें भी पेशेंट को पता नहीं चलता और न भी उसमें सूजन होती है। और आजकल तो लेजर एनेस्थीसिया जैसी चीजें भी आ गई है जिसमें आपको एनेस्थीसिया देने के से पहले हम उसको लेजर से उसको ट्रीट करते हैं, और वो उसके बाद जब हम उसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका पता भी नहीं चलता। तो वो तीसरा होता है कि दांत जब निकलवा लेते हैं तो उसके बाद में ये सोचते हैं कि मुंह में 32 दांत हैं, ठीक है, दो चार दांत निकाल लेते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी हमारे किसी जबड़े का कोई दांत निकलता है तो उससे के आसपास और ऊपर के दांतों का बैलेंस भी गड़बड़ा जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे एक दांत निकला है तो उसके आसपास के दांत उस जगह को भरने के लिए माइग्रेट करते हैं और ऊपर का दांत उस जगह को फिल करने के लिए, तो वो दांत भी कमजोर होते हैं, तो फिर एक दांत जो हम नहीं लगवा रहे उसकी भरपाई हमारे पूरे जबड़े के सारे दांतों को करने पड़ते हैं, उसके बाद में हमारे जो फेस का स्ट्रक्चर है उसका भी थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ता है, प्लस हमारे जो TM जो जॉइंट्स हैं, जो जॉइंट्स उसमें भी समस्याएं आने शुरू हो जाती है। तो ये दांत जब भी हमारे अगर किसी वजह से दांत निकल भी गया है तो आजकल ऐसी तकनीकें आ गई है जिसमें बिना किसी पास के दांतों को भी हम टच किए या नुकसान पहुंचाए हम ऐसे बहुत ही नेचुरल दांत उसमें लगा सकते हैं, जिससे वो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, आपके मुंह का बैलेंस भी बना रहता है और एक लंबे टाइम तक आपकी जो हड्डियां हैं जबड़े की वो भी खत्म नहीं होती, तो वो
0: जी।
1: आपको उम्र भर आपके साथ में रहते हैं।
0: तो इसी से जुड़ी एक बात मेरे दिमाग में और आ रही है डॉक्टर साहब, कि जो हम RCT कराते हैं, जो जब दांतों में केविटी वगैरह हो जाती है, तो वो तो होती है RCT, तो उसमें दांत वो उसको पैक कर देते हैं जो भी उसका ट्रीटमेंट करके, वो दांत अपनी जगह रहता है। और एक होता है इम्प्लांट, ये अब नई चीज़ और आ गई है कि जहाँ दांत ही नहीं है वहाँ दांत लाना, इम्प्लांट करना, बाहर से लगाना, तो ये भी बहुत थोड़ी एडवांस चीज़ है, हालांकि अब तो कुछ एडवांस नहीं है, बहुत एडवांस हो चुकी है हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ। तो यहाँ नागौर की बात हम करें तो आप जो चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं, चाहे वो आप लेजर से करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालें कि वो किस प्रकार से, जो पेनलेस ट्रीटमेंट आजकल हो गया है, जो पहले पेनफुल हुआ करता था और उसके डर की वजह से वो से जो पेशेंट जब पहुंचते नहीं थे आपके पास।
1: इसको हम मॉडर्न डेंटिस्ट्री बोलते हैं,
0: जी
1: जिसमें आपने अभी जैसे जिक्र किया डेंटल इम्प्लांट हो गया, लेजर वगैरह हो गया, तो ये अभी क्या है कि कुछ दिनों पहले तक जब ये साइंस डेवलप नहीं हुई थी तो हम ज्यादातर ऐसे दांत लगाते

0: आपका एकदम नेचुरल असेंबल होता है। दूसरी बड़ी बात है, जो एक बार जो आपका स्क्रू आपके बोन के अंदर इंटीग्रेट हो गया, देन उसकी लाइफ आपके जबड़े के साथ में इंटीग्रेट हो जाती है। उसके बाद में जब तक वो आपका जबड़ा है, तब तक आप वो आपका स्क्रू उसके साथ में रहेगा, तो इसकी एक लॉन्ग लाइफ होती है। दूसरी भी बात है, पास के दांतों को हम रेस्टोर रख सकते हैं, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता, तो ये भी है। और भविष्य में अगर और कुछ दांतों की जरूरत होती है तो हम उस इम्प्लांट को भी एज ए सपोर्ट काम ले सकते हैं। अभी क्या ये तकनीक थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि ये क्या है, सारे अभी इसके रिसर्च है जो सारे विदेशों में हो रखे हैं, तो वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ भारत में अभी ये बहुत महंगी आती है, तो हर आदमी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। बट हाँ, अब आज के दिन में लोग खुद चला के आते हैं कि भाई हमें इम्प्लांट करना है, तो जो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं उसको करवाना चाहिए, और जिसके जो लगता है कि भाई हाँ, उसको कभी इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप करवा सकते हो थोड़ा बहुत भी, अगर आप थोड़ा विल पावर बढ़ा के करवा सकते हो, तो यही भी करवाना चाहिए। दूसरा, अभी जैसे आ गया है कि हम क्या है कि अवेयरनेस के में, जैसे बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, तो हम क्या उस समय इतना ध्यान नहीं देते बच्चों पे कि भई आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो हम सोचते हैं क्या है, टेढ़े मेढ़े तो है, लेकिन क्या है, वो भी आपके मुंह का जो बैलेंस है उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आजकल हम क्या है कि 13-14 साल की उम्र में ही दांतों का बहुत अच्छे से अलाइनमेंट कर देते हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह का उनको दांतों के टेढ़ेपन की वजह से या बैलेंस इम्बैलेंस की वजह से उनको नई बीमारियां नहीं बने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दांतों के अंदर क्राउडिंग होती है, या एक दूसरे के आगे पीछे दांत होते हैं, तो वहां फूड लॉजमेंट होता है, फिर वहां से कैविटी डेवलप होती है या पाइरा बनता है, तो वो एक 40 की उम्र के बाद में अपने को वो बीमारी आनी शुरू होती है। तो उन बीमारियों को हम एक समय रहते ही अगर हम इसको ठीक कर दे, उनके दांतों के जो भी टेढ़ापन है या बैलेंस है, तो वो बाद में हम उससे बच सकते हैं। तो ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, हाँ, और ऑफ कोर्स लेजर एक ऐसा अभी नया साइंस डेवलप हुआ है जिसके अंदर हम बहुत अच्छे से इसको हीलिंग के लिए, जो भी आपके टिश्यू आजकल जो मेडिसिन वगैरह से हम हील करते हैं, वो हम लेजर से भी कर सकते हैं। बहुत पेनलेस रहता है, इसमें हीलिंग बहुत जल्दी होती है, आपकी जो भी घाव है बहुत जल्दी भरता है। तो इसके लिए ये एक तरह का रामबाण कह सकते हैं कि हम दवाइयों से बच के, और जो स्पेशली मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायबिटिक पेशेंट हो गए, या जिसके अंदर लीवर ट्रांसप्लांट हो रखा है, किडनी फेलियर पेशेंट वगैरह होते हैं जिसमें हम दवाएं नहीं दे सकते, उसके लिए एक लेजर वरदान साबित है।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर हम बुजुर्गों की बात करें, तो एक बुजुर्गों के लिए भी मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि पहले बुजुर्ग होते थे, वो उनकी बत्तीसी लगती थी नकली, वो अपनी बत्तीसी निकाल के बाहर रख देते थे जैसे कि पूरा, और फिर बत्तीसी वापस लगा लेते थे। तो अब उस चीज में कितनी तरक्की हुई है, यानी कि भाई बत्तीसी जो पहले बनती थी और अब जो बत्तीसी बनती है उनकी क्वालिटी में, वो जो डिटेचेबल और फिक्स है, वो अभी भी सब सिस्टम वही है या कोई और उसकी तकनीक आ गई है?
0: अभी 32C का आपने बताया सही है, आज से मतलब काफी टाइम पहले ये चीज होती थी कि मतलब 32C लगाना निकालना, उसको मेंटेन करना काफी टफ रहता है। प्लस क्या है, 32C करीबन 10 से 12 साल अच्छे से काम करती है, क्योंकि जो 32C का प्रेशर की वजह से नीचे की हड्डियां धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद में वो इतना लूज हो जाते हैं कि पेशेंट प्रॉपर खाना भी नहीं खा पाता, बोलते समय वो बार बार लूज होके बाहर आने शुरू होती है। तो आजकल हम है ना, इसमें नया कॉन्सेप्ट आया फिक्स डेंचर। फिक्स डेंचर के अंदर हम कुछ एक जबड़े में 4 से लेकर 6 स्क्रू टाइटेनियम की स्क्रू लगाते हैं और उसके ऊपर सारे दांत फिक्स हो जाते हैं। उसको हम टाइटेनियम रोड से या हाइब्रिड डेंचर बना के उसको वहां एक फिक्स दांत देते हैं, उसको वापस आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती और वो लगभग आपके नेचुरल दांतों की तरह काम करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छे से आ गई है, बस सेम वही चीज है कि ये बहुत थोड़ी महंगी पड़ती है। तो महंगी पड़ने वजह से हर आदमी, क्योंकि दांतों की समस्या हर एज ग्रुप को होती है, लेकिन सबकी जो सोच

0: सोशियोइकोनॉमिक में स्टेटस एक नहीं होता।
1: जी तो अब डॉक्टर साहब हम थोड़ी और बात को आगे बढ़ाएं और हम कह रहे हैं कि दांतों की समस्याओं को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं कि दांत ही ज्यादा ज्यादा खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन दांतों की समस्या हमारे स्वास्थ्य को संपूर्ण रूप से भी कुछ प्रभावित करती है क्या? और दूसरे हमारे स्वास्थ्य को, हम चाहे हम हमारे दूसरे अंग हैं, लीवर है, हार्ट है, और किसी प्रकार से।
0: बहुत बढ़िया बात, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। हम अभी तक ये सोचते थे कि दांतों में अगर प्रॉब्लम है, पाइरिया है, केविटी है, तो केवल दांतों का ट्रीटमेंट कर लेंगे तो वो सारी समस्याएं चली जाएगी। उसका क्या है, कई बार लोग करवाते भी नहीं है कि चलो दांत ही तो है, दांत से क्या मतलब होता है, बाकी सब कुछ। लेकिन अभी जो नए रिसर्च आए हैं, जो

0: जो ये बताते हैं कि जो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं उसके अंदर से जब उस प्लाक को आइसोलेट करके जब उसको कल्चर किया गया था तो उसके अंदर जो जीवाणु पाए गए वो वही जीवाणु हैं जो आपके मसूड़ों में पाए जाते हैं, दांतों के मसूड़ों में। तो कुल मिला के अगर आपके पेड़ दांतों की समस्या है, पाइजा वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपको कभी फ्यूचर के अंदर हृदय की समस्या भी हो सकती है और वहाँ आपको क्लॉट हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकते हैं। तो एक केवल केवल हमारी एक ऐसे की अवेयरनेस नहीं होने की वजह से एक छोटी सी बीमारी जो हम एक डेंटिस्ट के पास जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं, बाद में आज से 10 साल बाद में हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, तो उस बैक्टीरिया को हम वहीं रोक सकते हैं जब डेंटिस्ट के पास जाके उसको हम फिर कार्डियो के पास क्यों जाए कि उसमें खर्चा भी बहुत आता है, फिर
1: जी
0: आपकी लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यानी जी बिल्कुल
0: दूसरी बड़ी बात है कि एक तो ये हो गया कि जो हमारे हार्ट संबंधी समस्याएं होती है वो, दूसरा हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो उसके अंदर भी ये चीजें होती है कि कई बार क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है हम इतना अवेयरनेस नहीं रखते, दांत मसूड़े काफी कच्चे पड़ जाते हैं, ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो क्या है ब्रश नहीं करते अच्छे से, माउथ वॉशेज वगैरह यूज नहीं रहती, तो कई बार क्या होता है ना कि लो बर्थ बेबी मतलब बच्चा जो जन्मता है उसका वजन कम होता है, या फिर प्रीटर्म जो लेबर होता है कि आपका जो समय से पहले बच्चा
1: प्रीमेच्योर बच्चा हो जाता
0: प्रीमेच्योर हो
1: है।
0: जाता है।
1: जी
0: तो ये एक्चुअली ये इसमें भी आपके जो दांतों की जो समस्या है उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है वो भी इस चीज के लिए आपको प्रीटर्म लेबर्स के लिए आपके लिए जिम्मेदार होता है। तो इस जो आपकी जो प्रेगनेंसी के अंदर भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि दांतों की सफाई आप नियमित रूप से, जिस तरह आप सोनोग्राफी के लिए आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो उसी तरह आप डेंटिस्ट के पास भी जाके अपने दांतों का आप कंसीव करने से पहले एक बार आप सलाह लो कि आपके सारे दांत सही है कि नहीं है। कई बार क्या
1: जी
0: होता है कि आपका 3rd मंथ होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो कि भाई हमारे को अब दांतों में कैविटी है, मसूड़ में खून आ रहा है, तब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि हम पहले टर्म में 3 महीने में और लास्ट के 3 महीने के अंदर हम कोई ट्रीटमेंट कर नहीं सकते, हम एक्सरे नहीं ले सकते, उनको कोई इस तरह का एनिस्थीसिया नहीं दे सकते, हम उनको मेडिसिन वगैरह भी हमारे पास में बहुत कम जो भी ऑप्शंस होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जब भी कंसीव करो उससे पहले या ड्यूरिंग अपनी प्रेगनेंसी के आप डेंटिस्ट विजिट जरूर करो ताकि आपको पता चले कि आपके दांतों मसूड़ों में कोई तरह की प्रॉब्लम है और उस इन्फ्लामेशन को टाइम पे रोक दे ताकि आपकी जो डिलीवरी वगैरह जो भी होती है
1: जी
0: और जो बच्चा वगैरह है वो नॉर्मल हो। इसके
1: जी
0: लिए ये प्रेगनेंसी में भी ये बहुत जरूरी है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बात कहाँ आके और अपनी खत्म हो रही है कि जो सोच नहीं सकते थे कि एक गर्भवती महिला को जब और जांचें करानी चाहिए या गर्भ धारण करने से पूर्व उसको अपने दांतों को भी जांच करवा लेनी चाहिए कि
0: बिल्कुल
1: किसी
0: बिल्कुल
1: प्रकार की दंत समस्या तो नहीं है, कोई
0: हाँ
1: पायरिया और दूसरे की बीमारी तो नहीं है।
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल
1: बहुत ही महत्वपूर्ण
0: बिकॉज
1: बात है।
0: हमारे क्या सिनेरियो में क्या है कि ज्यादातर प्रेगनेंसी वगैरह में मीठा खिलाते हैं, ठीक है, लड्डू
1: जी
0: वगैरह होते हैं, तो वो क्या है कि खाना भी जरूरी होता है और इस दांतों की समस्या में जो खा भी नहीं पाते, तो हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं जब हम हमारे हाथ भी फिर हम कुछ कर भी नहीं पाते, हम कहते हैं कि अब इस समय हम उसको मेडिसिन नहीं दे सकते, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक समस्या ऐसी है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप इस समस्या को छोटी नहीं समझे और प्रॉपर ना आप अपने डेंटिस्ट से सलाह जरूर लें बिफोर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
1: अंत में हम चाहेंगे कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, उनके अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से वो अपना आचार विचार व्यवहार रखें कि वो दंत समस्याओं से बचे रहें।
0: मैं ये कहना चाहूंगा कि दांतों की जो मुंह की जितनी भी समस्या है वो हम खुद ही एक्वायर करते हैं, हम अपनी आदतों की वजह से, हमारी नेग्लिजेंसी वजह से, और आजकल तो ऐसी चीजें हैं जैसे पान गुटखा तंबाकू हम चला के पैसे देके खरीदते हैं और जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हमारे को उसमें कम खर्चा है, तो ये कैसे संभव है? जब आप किसी बीमारी को पैसे देके खरीद रहे हो तो फिर वो बिना उसके भुगतान के तो कैसे होगा? तो इससे अच्छा तो आप उसको खरीदो ही मत। अगर ये चीजें आपके जीवन में नहीं होगी तो दो बदलाव होंगे, एक तो आपका पैसा बचेगा और दूसरा आपको किसी दंत चिकित्सक के पास जाना नहीं पड़ेगा, इनकेस
1: दंत चिकित्सक का पैसा बचेगा और
0: हाँ।
1: दांत भी बचेंगे।
0: और दूसरा ये है अगर किसी वजह से आपको चलो हो भी गया आपको अब आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं ट्रीटमेंट लेके और मैं इसको बंद कर दूंगा, तो ये आपको ये फायदा होगा कि उसके बाद में आपके पैसे बच जाएंगे और ये समझ लो कि जो पैसा आपका बचेगा उसमें आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो सबसे बड़ी ये कि आप अवेयरनेस क्रिएट करो और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप किसी चीज को प्रिवेंट कर दे तो आपके क्योर की जानी ही पड़े। सब जितने भी हॉस्पिटल्स अभी जो मरीजों से भरे हैं वो केवल केवल हमारी जो रोज की जो जिंदगी है इसमें कहीं ना कहीं हम अपनी अवेयरनेस नहीं रखते, कहीं लैक होता है और उसकी वजह से भी होता है। और स्पेशली मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो मोबाइल जो आजकल के टाइम के देते हैं हम, स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारा जो सलाइवा सिक्रेशन कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो सलाइवा है और उसकी वजह से क्या है कि कम हो रहा है, उसकी वजह से

0: माउथ होता है और कैविटीज डेवलप होती है। तो ये भी कहूंगा कि आप स्क्रीन टाइम कम से कम करें, मोबाइल वगैरह का उपयोग कम से कम करें, और अपने यार दोस्तों के साथ में जो समय बिताना है वो आप रियल
1: और अगर
0: फेसबुक पे नहीं
1: सलाइवा
0: हो।
1: सिक्रेशन कम होने की वजह से केवल वही बात समस्या नहीं मुख्य सूखेपन की, उसके
0: हाँ
1: अलावा आपके जो पाचन क्रिया और सारी चीजें
0: वो
1: उससे
0: सारी
1: अफेक्टेड
0: चीजें,
1: होती
0: क्योंकि
1: हैं।
0: लेट नाइट आप सोते हो तो उसकी वजह से आपको डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, आपकी नींद पूरी नहीं होती, एसिडिटी होती है, एसिडिटी की वजह से अगेन आपके दांतों में प्रॉब्लम्स वगैरह शुरू होती है।
1: और
0: तो
1: डॉक्टर
0: इससे
1: साहब
0: पहले
1: सो
0: अवेयरनेस
1: बातों की
0: चाहिए।
1: एक बात ये है कि जब जागो तब सवेरा, तो
0: बिल्कुल
1: अब तक
0: बिल्कुल
1: जो अगर सोए हुए हैं वो अब भी जाग जाए
0: जाग
1: तो कोई
0: जाए।
1: दिक्कत नहीं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने हमें दी है डॉक्टर साहब, और हमें उम्मीद है हमारे लिसनर्स को बहुत फायदा मिलेगा। जब हमारे स्टूडियो में आए हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम में इनसे मिलिए के अंतर्गत दांतों की समस्याओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संबंध में डॉक्टर पवन परिहार से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है FM बैंड 103.7 MHz पर। आइए सुनते हैं गाने पुराने जमाने के, यह है पहली पेशकश।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म वो कौन थी से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में राजा मेहदी अली खां के बोल थे।

अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

अभी आपने सुना ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म यादों की बारात से। लीजिए सुनिए ये अगली पेशकश।

फिल्म हम किसी से कम नहीं के इसी गीत के साथ गाने पुराने जमाने के अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने नए। यह है पहली पेशकश।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म धुरंधर द रिवेंज से, शाश्वत सचदेव, ज्योति नूरा और जैस्मिन की आवाज़ में। यह है अगली पेशकश।

और साथियों की आवाज़ में लीजिए सुनिए ये अगला गाना, गाने नए तराने नए में। फिल्म का नाम है जुनूनियत, अरमान मलिक की आवाज़ है।

सुनिधि चौहान के गाए फिल्म क्रेजी फोर के इसी गीत के साथ गाने नए तराने नहीं अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय

0: सेवा के प्रसारण
1: जोशी का स्नेहिल अभिवादन। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं उषा अमोनकर के गाए इस भजन के साथ।

उषा अमोनकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। आइए अब सुनते हैं हालिम साबिर का कलाम। इसे आवाज दी है भूपेंद्र ने। संगीत मधु मुखर्जी का है।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

0: आ रहे हैं विविध भारती पर। बारह अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: और आइए अब सुनते हैं शुभा मुदगल की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत।

शुभा मुदगल की आवाज में अभी आपने ये गैर फिल्मी गीत सुना। और आइए आप सुनते हैं गुरु रंधावा और निकिता गांधी की आवाजें। गीतकार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वाणी जयराम की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं दानिश बरेलवी का ये कलाम।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अरिजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार का लिखा ये औकार फिल्मी गीत। इसे संगीत में ढाला है अमाल मलिक ने।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम रंग तरंग की अगली पेशकश असीस कौर की आवाज है। जानी का लिखा ये औघार फिल्मी गीत है और बी प्राक का संगीत है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहा से हुजूर।
3: सिद्धांत महादेव के संगीत निर्देशन में हम आपको मोती सुल्तानपुरी का लिखा एक और फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं, आवाज जावेद अली की।

0: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पर अच्छी चर्चा संवाद

0: बाद होना चाहिए, लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। आज तड़के पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा टकराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज अभिनेता सुनील शेट्टी और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम में हमने उन्हीं की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बस तुम रहते हो।
1: नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा यह गीत सुना। मुख्य स्वर अभिजीत का था और फिल्म का नाम था धड़कन। आइए सुनते हैं पंकज उदास, साधना सरगम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम मोहरा, गीतकार इंदिवर, संगीतकार विजू शाह।

कुमार सानू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म टक्कर का गीत। गीतकार थी माया गोविंद और संगीतकार थे अनु मलिक। और ये आवाजें हैं मीका सिंह और साथियों की। फिल्म का नाम है दे दनादन। इशाद कामिल के बोल प्रीतम की धुन।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया का संगीत, समीर के बोल, फिल्म का नाम है फिर हेरा फेरी और गायक स्वर हिमेश रेशमिया का।

ये आवाज थी हिमेश रेशमिया की, और आइए अब सुनते हैं अनुमलिक के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाज रूप कुमार राठौड़ की। फिल्म का नाम है बॉर्डर।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत नीति मोहन और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है किक।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

साजिद वाजिद की संगीत निर्देशन में समीर अंजान का लिखा गीत सुनिए, आवाजें नीरज श्रीधर और साथियों की, फिल्म का नाम हाउसफुल 2।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सेम भट्ट की आवाजों में, फिल्म का नाम है मर्डर 2। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और धुन बनाई है मिथुन ने।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल स्पष्ट किया था कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपने निवास पर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पीएम ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों राजधानी जयपुर में पीएम ई बस सेवा की शुरुआत की थी। अब इस कड़ी में नई पीएम ई बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है।

0: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आज भीलवाड़ा में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में ट्राई की विभिन्न पहलों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम का मुख्य विषय दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं में शुल्क और बिलिंग रखा गया है। इसमें उपभोक्ताओं को सेवा की गुणवत्ता, शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी जानकारी भी दी जा रही है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रमुख कार्य प्रदर्शन संकेतक केपीआई के आधार पर जारी रैंकिंग में कोटा केंद्रीय सहकारी बैंक पहले, झालावाड़ दूसरे और भीलवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा है। सहकारिता शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में बैंकों के कामकाज का मूल्यांकन किया गया। डॉ. शर्मा ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में जनविश्वास बहाल करने के उद्देश्य से कार्य करना होगा ताकि योजनाओं का लाभ किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंच सके। उन्होंने सभी ऋणी किसानों का फसल बीमा 15 अगस्त तक कराने के निर्देश दिए। साथ ही बैंकों को एनपीए कम करने और किसानों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। जैसलमेर में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से हेलमेट पहनो, जीवन बचाओ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने दुपहिया वाहन चालकों से वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमेशा ISI मार्क वाला हेलमेट पहने और अपने परिवार तथा मित्रों को भी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें।
1: आप सभी बाइक या स्कूटी चलाते समय हमेशा ISI मार्क वाला हेलमेट पहने, अपने परिवार और मित्रों को भी प्रेरित करें कि वो रोज हेलमेट पहने और वाहन चलाएं। आइए ऐसी ही एक शपथ लेते हैं और इस अगस्त स्वाधीनता दिवस पर आप सभी, मैं चाहूंगी कि हेलमेट चैलेंज प्रतियोगिता का आप लोग हिस्सा बने, जिसमें आप सभी से अपील है कि स्वाधीनता दिवस तक आप सेल्फी विद हेलमेट के साथ फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करें।
0: भरतपुर में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के घर अब निशुल्क सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल टोडवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं की सहमति से उनके घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं से कोई राशि नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सोलर सिस्टम लगाने के लिए सहमति नहीं देंगे, उन्हें पहले की तरह 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलता रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के 13 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया है। आयोग के अनुसार साक्षात्कार 17 से 25 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर समयानुसार जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
3: वो फिल्मी पर्दे पर किस अभिनेता और अभिनेत्री ने किए हैं?
4: अरे देख रहे हैं
5: तो देखने दो,
4: जल भी रहे हैं।
5: अरे तो जलने दो,
4: खुली सड़क है बाबा।
5: तो क्या हुआ भाई?
4: हो जाए
5: हो

जी तो अभी आपने सुना फिल्म खेल खेल में का ये गाना युगल स्वर किशोर कुमार और आशा भोंसले की थी। गुलशन बावरा की रचना थी राहुल देव बर्मन की धुन। जी तो इस गाने के आरंभ में जो संवाद कर रहे थे आपने बिल्कुल सही कहा, ऋषि कपूर और नीतू सिंह। और वैसे देखा जाए तो किशोर कुमार और आशा भोंसले ये संवाद कर रहे थे गाने के तौर पर। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप रिश्तों की गहराइयों और इसे जीवंत करने वाले संवाद को लेकर आई हैं। आज का संवाद सच में सुंदर होना चाहिए। रिश्ते भावनाओं की वो नाजुक डोर है जिन्हें सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल के संवाद से संजोया जाता है। संवाद किसी भी रिश्ते की वो जीवनदायिनी सांस है। शब्द रिश्तों के वो मोती हैं जिन्हें यदि सही समय और सही आदर के साथ पिरोया जाए तो वो जिंदगी को एक बेहद खूबसूरत माला बना देते हैं। संवाद वो खुशबू है जो रिश्ते के गुलशन को हमेशा महकाए रखती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में हम ऐसे पुराने गीतों से रूबरू होंगे जिनमें जिंदगी से जुड़े दिलचस्प संवाद हैं। आपकी इस मेहनत को दिल से सैल्यूट। और आप सभी सुनने वालों को भी हम सैल्यूट करते हैं कि लगातार आप इस सफर में हमारे साथ बने रहेंगे, इसलिए है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से समझ में आ गया है कि धुनों को सुनते सुनते शायद आपको भी कोई भूला हुआ चेहरा याद आ जाए, कोई ऐसा जिसे आप कुछ जरूरी बात बताना चाहते थे पर तब वक्त ने साथ नहीं दिया, इसलिए आज ही अपने अपनों से दिल की बात कहिए, दूरियों को मिटा दीजिए। शब्दों का ये पुल ही जिंदगी को महकाता है। जहां बात होती है वहीं प्यार सांस लेता है और जहां प्यार है वहां हर पल एक सुरीला नगमा बन जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद रिश्तों की वो डोर जो दिखाई नहीं देती मगर बांधे रखती है। रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं बात करते रहने से जीवित रहते हैं। कभी दो मीठे बोल मन की दूरी मिटा देते हैं तो कभी एक छोटी सी शिकायत रिश्ते में छिपी मोहब्बत को सामने ले आती है। संवाद बंद होते ही रिश्तों में खामोशी उतरने लगती है और खामोशी धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखिए, उनमें बात बनाकर रखिए, क्योंकि जहां संवाद जीवित रहता है वहां रिश्ते भी सांस लेते रहते हैं। आज सुरीला सफर में ऐसे गाने हो सकते हैं जिनमें प्रेम शिकायत पुकार सवाल जवाब मिलन विरह और अनकही बातों का संवाद होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी संवाद समस्या ये है कि हम किसी की बात को समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि उसे उस बात का जवाब देने के लिए सुनते हैं। संवाद यानी बराबर बोलना और संवाद यानी बराबर सुनना भी। जिस बातचीत से वाद विवाद की स्थिति न पैदा हो वही सही अर्थों में संवाद कहलाता है। आपसी रिश्तों की नाजुक डोर को संभालने के लिए आपस में संवाद होते रहना बहुत जरूरी है। आजकल आपसी रिश्तों में जो खटास या अबोलापन आ गया है उसका मुख्य कारण संवाद का न होना ही है। संवाद करते रहने से दो अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्ति भी आपस में अच्छे मित्र बन सकते हैं। बहुत सुंदर विचार आप सभी के। जी तो हमारे श्रोता ने कहा कि आप हमेशा दो ही सवाल क्यों करती हैं।

0: आप भी हमसे ज्यादा संवाद कीजिए ना इस कार्यक्रम में। तो चलिए आज हम दो की जगह बहुत सारे सवाल आपसे कर लेते हैं। तो क्या पूछें बताइए, आप कैसा कैसा सवाल चाहते हैं आप लोग कि हम आपसे क्या सवाल करें? भाई हम तो जब आज कार्यक्रम संवाद पर लेकर आए हैं कि इन गानों के बीच में चाहे छोटा सा संवाद सुनने को मिलेगा, लेकिन हमारा ध्यान जरूर खींचता है वो संवाद अपनी ओर। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में या आपके लिए संवाद का असली अर्थ क्या है, सिर्फ बात करना या एक दूसरे को समझना? बताइएगा कि आप जब किसी से संवाद करते हैं, घर परिवार, रिश्ते नाते, कहीं भी, तो क्या अर्थ होता है उसका? किसी को समझने के लिए संवाद करते हैं या सिर्फ आपका उद्देश्य एक बात किए रखना कि हाँ हमारी बातें होती रहनी चाहिए, ऐसा कोई विचार आपके दिलो दिमाग में रहता है? क्या रहता है किसी संवाद, जब आप किसी से संवाद करते हैं तो इसका जवाब कम से कम शब्दों में आपको देना है। ज्यादा शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोताओं को हमें शामिल करना होता है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर की रचना, आवाज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम। बताइएगा कौन अभिनेता किस अभिनेत्री से ये बात कह रहे हैं?
1: नफर।

0: आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।
1: याद आई अभिनेता
0: ने

हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

जी तो आप बताइएगा कि पर्दे पर कौन से अभिनेता ये गीत गा रहे थे और किस अभिनेत्री को ये बात कह रहे थे। आपके लिए बहुत सरल सवाल पूछ रही हूँ आज मैं, है ना। और वही एक श्रोता

देखते हैं कि आज आप संवाद विषय के साथ हम सभी के साथ संवाद करने वाली हैं। अच्छी बात है, संवाद सिर्फ बोलकर ही नहीं लिखकर भी किया जा सकता है, जो हम सभी इस पेज पर अभी कर रहे हैं। संवाद मतलब संवाद यानी सम तोल बातचीत, जो बात मुंह के तराजू से तौली जाती है। अच्छा, और तोल मोल से बोलने पर या संवाद करने पर कोई बिखराव की स्थिति भी नहीं होती, जिसके कारण आपसी रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। संवाद रूपी डोर हमें दिखाई नहीं देती, मगर एक दूसरे से बांध जरूर देती है, फिर वो घर परिवार हो या मित्र मंडली। जिंदगी सेहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है, प्यार भरे संवाद में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी आवाज अच्छा हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। अरे वाह, क्या बात है, हमें भी इंतजार रहता है कि हमारे सभी श्रोता हमारे साथ सुरीला सफर के इस यात्रा पर निकल जाए, तो आप भी निकल पड़े हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम संवाद से सजने वाली है। संवाद जीवन का वो सबसे सुंदर जरिया है आपसी संबंधों को बनाए रखने का, पर आज के इस युग में संवाद की जगह केवल व्हाट्सएप ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखी है। पर फिर भी फोन पर अथवा सामने वाले बातचीत करते हैं, उसका अपना एक अलग ही आनंद होता है और उसमें हमें प्रेम आत्मीयता और अपनापन का एहसास होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि संबंधों की सबलता में संवाद सदैव सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। सामयिक हो या सर्वकालिक, संपर्क सूत्र ही सामाजिकता का सुदृढ़ स्तंभ है। सकारात्मक और सृजनशील संवाद समय सापेक्ष है मगर सुखांत होते हैं। सीमित संसाधनों में भी सर्वमान्य सिद्धांत संवाद ही है। अति आशा की अपेक्षा संवादों में विवाद की जड़ है। समस्या समाधान का एकमात्र विकल्प संवाद है, विवाद नहीं। संबंधों को संबोधित करती हुई सुरीला सफर का ये कार्यक्रम हमें आज बेहद अच्छा लगेगा, ऐसा आपने मेरी तारीफ में फिर दो पंक्तियां लिखी हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूं। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा प्रणाम है, आज की इबारत रिश्तों को संवाद के जरिए जोड़ने वाली है, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रयास के लिए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सफर में बातचीत या कहें संवाद के माध्यम से हम सब एक दूसरे को जान या समझ पाएंगे। वो भूली बिसरी यादें, वो सामने की जिंदगी की बातें, प्यार भरी शिकायत या मायूसी, या फिर आने वाली सुखद कल्पनाओं की जिसे साकार रूप में देखना है, ये सभी बातें जीवन को साकार करते संवाद ही हैं, जो हर रूप में ढलकर बातों को सजीव करते हैं। और यही बातचीत जीवन का मजबूत स्तंभ है। एक दूसरे से परिवार में, आसपास, समाज में, दिन दुनिया में सकारात्मक संवाद हम सभी को जोड़कर रखता है और हमें ये संवाद बनाए रखना चाहिए। जी तो अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने पिछले सवाल का जवाब दिया है कि नहीं, अभी हमें देखने पर पता चलेगा कि क्या आपने सोचा है कि संवाद हम किसी से बात करने को लेते हैं या किसी को समझना भी संवाद का एक तरीका होता है। तो बताइएगा आप अपने जीवन में जब संवाद करते हैं और सामने वाले से जब संवाद सुनते हैं तो क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरह का संवाद हम एक दूसरे से किया करें। बताइएगा अपने दोस्तों से, घर वालों से, बच्चों से किस तरह के संवाद आपके होते हैं। एक माता पिता किस तरह का संवाद अपने बच्चों से करता है और करना चाहिए, इस पर भी हम बात कर सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत सुनते हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम यादों की बारात। इनका साथ दे रही हैं आशा भोंसले।

जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में बातचीत या कहीं संवाद के माध्यम से हम सब एक दूसरे को जाने समझ पाएंगे। वो भूली बिसरी यादें, वो सामने की जिंदगी की बातें, प्यार भरी शिकायत या मायूस भरी या फिर आने वाले सुखद कल्पनाओं की जिसे हम साकार रूप देना चाहते थे, ऐसी बहुत सी बातें हम संवादों के जरिए कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद केवल बातचीत करने का या आपसी बोलचाल ही नहीं है, ये दिल को दिल से जोड़े रखता है। संवाद हमेशा बनाए रखना चाहिए। प्रेम विरह शिकायतों से जीवन के सत्य जो है जीवंत बने रहते हैं। ध्यान रहे कि संवाद जारी रखने वाली स्थिति में भी जो मौन की गहराई और शब्दों की पवित्रता के माध्यम से रिश्तों की डोर जुड़ी रहती है, संवाद प्रेम को प्रकट करता है और रिश्तों में दूरी नहीं आने देता। विरह में संवाद की तड़प होती है, यादों के जरिए संवाद जारी रहता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से रोज ही सावन आया, घटा छाई, सुहाना मौसम, हरियाली, बस इन्हीं पर संवाद हो रहा था। आज आप आए और आपने भाई बहन के संवाद सुनने का इंतजार है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने इस कार्यक्रम को आपके साथ अंत तक सुनना है और आज की इबारत बहुत दिलचस्प लिखी है। इसमें गानों का संग्रह बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें सुनकर और महसूस करके अधिक आनंद आएगा। हमारे रिश्तों में मधुर मिठास घोलने वाले गानों को सुनने से आसपास के वातावरण में संगीत गूंजने लगता है और जो भी हम कहना चाहते हैं वो सब गीतों के माध्यम से हम कह सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बहुत उत्साहित हूँ रिश्तों में संवाद बनाए रखने के लिए, इस महत्व को समझाने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते मजबूत रखने के लिए संवाद होना बेहद जरूरी है। आपसी मनमुटाव को सुलझाने के लिए संवाद ही एकमात्र उपाय है। संवाद न होने पर छोटी समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। संवाद वाले गीत बहुत से हैं पर मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही है श्रोताओं, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही तो है। हम दिन रात अपनी जिंदगी का गीत गाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, है ना। सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते निभा तो रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं है, परिवार, भागदौड़, लेकिन जिंदगी के बीच में कभी कभी कोई संवाद आ जाता है। किसी अपने की कही भी कोई एक बात, माँ की कोई सीख हमें मिल जाती है, पिता की कोई डांट मिल जाती है, जीवन साथी का कोई सवाल मिल जाता है, बच्चे की कोई मासूम बात सुनने को मिल जाती है और हम अचानक रुक जाते हैं, सोचते हैं क्या मैं सच में यही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था। तो इसीलिए फिल्मी जो गाने हैं इनके बीच में आने वाला संवाद भी केवल ये मनोरंजन नहीं है, ये हमें ठहरने का एक अवसर देता है। हाँ, कि क्या कहा जा रहा है इस गीत में जो नायक और नायिका एक दूसरे से कह रहे हैं। तो यही इसलिए आज हमने इन गीतों को चुना ताकि हम एक पल के लिए ठहरे, कुछ सुने, कुछ समझें, कुछ सोचें कि रिश्तों में संवाद कितना जरूरी है। और इसलिए इन गीतों के बीच आने वाले संवाद एक बहुत बड़ी सीख हमें दे जाते हैं कि रिश्तों में केवल प्यार होना काफी नहीं है, प्यार को शब्द देना भी बहुत जरूरी हो जाता है, है ना। बताइए किस फिल्म का गाना है और पर्दे पर कौन अभिनेता और कौन नायिका है। इस गीत में भी आपको संवाद सुनने को मिलेंगे, है ना। और बताइएगा कौन ये संवाद कह रहा है किसे।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

जी, हमारे श्रोताओं ने कहा कि ये फिल्म आंधी का गीत है और इसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन आपस में संवाद कर रहे थे। बिल्कुल सही लिखा आपने। और हम आपको बता दें, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी। गीतकार जो गीतकार थे गुलजार साहब थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती की आवाज हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डायलॉग वाले गीत से सजी हुई सुरीला सफर की संगीतमयी सफर में हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि संवाद जरूरी नहीं मुंह से बोले, मगर आपको किसी से कुछ कहना है तो सबसे पहले आंखें चेहरे के भाव बोलने से ज्यादा बहुत कुछ कह देते हैं। और आपने सही कहा, रिश्तों को जीवित रखने के लिए संवाद जरूरी है। मुझे भी कुछ कहना है, पहले आप शायद ये गीत शामिल हो सकता है। वैसे हम आपको बता दें, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जिनमें संवाद है, लेकिन हमारे कार्यक्रम का एक समय जो है निश्चित है, तो हमने उसी अर्थ में हमने जो गाने चुने हैं, आपके गानों से हमारे गाने कितना मेल खा रहे हैं ये आप देखिएगा। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कई अन्य गानों का जिक्र भी किया है जिनमें संवाद हमें सुनने को मिलते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो फेसबुक खोलने से पहले अच्छा मुझे याद किया आपने और पोस्ट देखकर खुश हो गई, क्योंकि आज भगवान जी से शायद कुछ और मांगते वो भी मिल जाता। गीतों में जो बात होगी, तकरार होगी, वो तो होगी, पर आप जो कुछ बातें करेंगी, दो प्रश्न करेंगी, उनके बहुत सारे उत्तर भी देने होंगे। अरे तो आज आपने इतना हल्का क्यों मांगा, बहुत कुछ मांगना था आपको, है ना। ये कार्यक्रम तो रोज होता है और इस कार्यक्रम के जरिए तो आप हर वक्त हर किसी उद्घोषक से किसी न किसी रूप में जुड़े ही होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो गानों में थोड़ा सा अलग हमें सोच मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर क्या हो रहा है कि इन दिनों झूलों और सावन पर कार्यक्रम ज्यादा केंद्रित हमें सुनाई दे रहा है, आपने कुछ थोड़ा इसको बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से बिल्कुल साफ है कि आज के गीतों का केंद्र संवाद है, यानी ऐसे पुराने गीत जिनमें दो लोगों के बीच बातचीत, सवाल जवाब, मन की बात, शिकायत, प्यार या कोई अनकहा एहसास है। हमें कुछ गीत समझ आए, आपने भी कुछ गीतों का जिक्र किया है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बीच में चल रही मीठी बातचीत है तो रूठना मनाना भी है इन गानों में, बल्कि प्यार है, गहरा करने का बहाना भी है। एक तरफ से शिकायत है, दूसरी तरफ मनुहार है, और इस तरह से जो गीत पिरोए गए हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि खूब लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन बातचीत बंद नहीं करा करो, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का निदान होता है। एक श्रोता ने कहा कि सफर में आप काफी समय बाद आई हैं। ऐसी बात तो नहीं है, हम तो सफर में आते ही रहते हैं और आप हर दिन एक न एक सफर तो तय करती हैं ना अपनी जिंदगी का। एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी प्रकार के हल निकल सकते हैं, मनमुटाव दूर हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रिश्तों को संवाद से जोड़कर जरूर रखिए। और एक श्रोता ने कहा है कि हमारे प्रांत बिहार में लोग संवाद करते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बतरस या बतकुचन कहते हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है सुबह के दिनचर्या से, महंगाई से, बच्चों और घर की समस्याओं, शारीरिक तकलीफ से, उसके बाद पॉलिटिक्स पर बात चली जाती है और वहीं संवाद फिर बदकुचन पर चली जाती है। इसलिए अगर किसी को बुरा लग गया तो वो मुंह बनाकर उठकर चल भी देता है। हो सकता है दो तीन दिन बाद फिर किसी से बात नहीं करें, मिले भी नहीं, पर इस तरह जो बदकुचन होता है उसमें बहुत आनंद भी आता है। तो हम भी आपसे जब संवाद कर रहे हैं तो ये पूछना हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा संवाद रहा है जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए, मतलब

आपने किसी से कभी कोई अच्छा संवाद किया होगा, या आपको लगा होगा कि नहीं, मैंने जरूरत से ज्यादा किसी को गलत कह दिया है, तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई संवाद जिसे आप नहीं भूल पाए हैं? बस उस घटना का जिक्र आप कर सकते हैं। और हाँ, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कभी ऐसा कोई संवाद आपने किया हो कि आपके कुछ शब्दों ने आपके और किसी अपने के बीच की दूरी कम कर दी हो, बड़ा नहीं दी हो बल्कि कम कर दी हो। याद कीजिए वो घटना, वो शब्द, वो लम्हे जब आपको लगा होगा कि हम बहुत दूरी पर थे, लेकिन जब हमने प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, आपस में प्यार भरी संवाद की अदायगी की, तो हम कहीं थोड़ा करीब आ गए। सुनते ही राजेश रोशन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, अमिताभ बच्चन, मास्टर रवि और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल।

0: नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ में, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो।

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने कहा कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। ये गाना देवानंद साहब ने हेमा मालिनी जी के लिए गाया था फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए। बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है कि देवानंद है पर्दे पर और हेमा मालिनी से वो ये बात कह रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आप कुछ नया सब्जेक्ट लेकर ही आती हैं जो मनोरंजन भी करता है और एक संदेश भी देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद बहुत जरूरी है लेकिन बस संवाद विवाद में नहीं बदलना चाहिए और अपनी बात कहना सही है पर सामने वाले की भी तो सुनना जरूरी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे। आप हूं शीतल खोए।

0: आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं और सुनते हैं अमिताभ बच्चन के साथ लता मंगेशकर जी की आवाज। फिल्म का नाम है सिलसिला, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरी का संगीत। आपको बताना है, बिल्कुल सीधा साधा जवाब देना है कि पर्दे पर किस नायिका को ये बात कही जा रही है।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: ये स्वर थी लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की, फिल्म का नाम था सिलसिला। दोस्तों कहते हैं कि कितने ही रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोगों के बीच प्रेम नहीं था। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। प्रेम तो बहुत था लेकिन वहाँ संवाद नहीं था। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन बात नहीं करते थे, मन में शिकायतें थी लेकिन कहते नहीं थे, दर्द था लेकिन बताते नहीं थे, समझाते भी नहीं थे। इसलिए पुराने फिल्मी गीतों में जब अचानक किसी कलाकार की आवाज आती थी तो दर्शक केवल गीत नहीं सुनता था बल्कि उस किरदार के साथ उस पल को जीने लगता है ना। कई बार फिल्मों में होता है, आज भी होता है, जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो इस किरदार को जीने लग जाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो हमें लगता है कि ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि ये तो मेरी भी कहानी हो सकती है। और अक्सर हम उस कहानी को अपनी कहानी समझकर या अपनी जिंदगी से जोड़कर सुनना पसंद भी करते हैं। क्यों, आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा में बहुत सारे गीतकारों ने ऐसे बहुत सारे गीत लिखे हैं जिनको अभिनेता अभिनेत्री द्वारा संवाद करते करते गाया गया। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संवाद रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। संवाद होना बहुत जरूरी होता है, आज के गाने भी उतने ही अच्छे लगेंगे। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा, एक श्रोता ने, जब हमने आपसे पूछा था संवाद के बारे में सवाल, आप लिखते हैं कि मुझे अपने पापा से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि आजकल वो थोड़ा भूलने लगे हैं, तो जब हम उनसे संवाद करते हैं उन्हें याद आ जाता है, नाम याद आने लगते हैं, पुरानी बातें वो याद करने लगते हैं, फिर वो किस्से सुनाने लगते हैं और डॉक्टर ने भी उनसे बहुत बात करने को कहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों की बारात फिल्म का गीत आपने तारिक और जिनत अमान के बीच का संवाद था वो सुनवाया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, जब बात संवाद पर आ ही गई है तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात सिलसिला फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। अरे हमने तो आपको सुनवा भी दिया है। कहाँ हैं आप, सुन लिया ना आपने, जवाब दीजिएगा हमें हाँ या ना में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं अकेले ही ये प्रोग्राम सुन रही हूँ, वो भी आपकी संवाद अदायगी के साथ। मैं तो बचपन से रेडियो सुन रही हूँ जब भी समय मिलता है, मगर कुछ समय से मेरी बेटी भी सुनने लगी है, उसे आपकी आवाज पसंद है। मुझे भी तो कहती है जब आप आए तो मुझे बताना, आज वो कॉलेज नहीं गई और मैं उसे बताऊंगी तो उसे गुस्सा आएगा। अरे इतना प्यार इतना स्नेह है ना सर माथे पर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद एक अद्भुत शैली है, अपने आप से बात करना भी एक प्रकार का संवाद ही तो है। मैं जब 20 साल का था तब भीतर एक बात मेरे मन में आई, उद्भव हुई कि गुलाब जामुन में सुख नहीं है, फिर अंदर ही संवाद हुआ कि सुख सबको मिल रहा है तो किधर से आ रहा है। इस तरह साबित करने का मौका कुछ महीने बाद संवाद करने का मिला। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हद से ज्यादा संवाद भी रिश्ते बिगाड़ देते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद सदा मधुर और मीठे हो तब तो अच्छे है, वरना चुप ही सही है। वैसे जहां प्रेम और दिल मिले होते हैं वहां अधिक संवाद की आवश्यकता होती भी नहीं है, वहां मौन में भी दिल की बातें दिल से हो ही जाती हैं। एक श्रोता ने कहा, संवाद हमेशा प्यार से होना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बड़ों का सम्मान, बच्चों से प्यार। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं मेरे मैरिज से पहले एक बार मैं और मेरी होने वाली वाइफ घूमने गए थे। एक गार्डन में बैठकर मैंने मेरे और मेरे परिवार के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया। मुझे अचानक ख्याल आया कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैंने कहा, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? तो उन्होंने बताया कि आप ही बोले जा रहे हो, मुझे तो बोलने का आपने मौका दिया ही नहीं, तो क्या बोलूं। फिर हम दोनों बहुत हंसे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो जिंदगी में संवाद बहुत है, संवाद वही होना चाहिए में सुगंध और प्यार हो, तभी मजा आता है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं संवाद गीतों की एक अलग से लिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें अभी तक लगभग 30 गीतों के नाम शामिल हो चुके हैं, क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में हम दर्शन करने गए हैं धर्मपत्नी के साथ और वहां से आपके सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं। और आप पवित्र गुफा से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, बाबा अमरनाथ की सभी को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शिव हरि का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाजें, फिल्म का नाम चांदनी।
1: चांदनी

बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

जी तो सुरीला सफर कार्यक्रम में बस आज यहीं तक इतना ही कहेंगे कि सहमति असहमति के बीच भी हमें हर इंसान से, हर व्यक्ति से संवाद करना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बस इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

किसी ने क्या खूब कहा है साथियों, हाथों से लिखे खत की तासीर ही कुछ और थी। लफ्ज उंगलियां चूमते थे और पन्ने दिल छू जाते थे। जी हाँ, खत की बात हो रही है। महज कागज का एक टुकड़ा या स्याही की चंद लकीरें नहीं है खत। ये इंसान की वो दिल की धड़कन है जो शायद शब्द रूपी पहनावा पहनकर किसी अपने को भेजा जाता रहा है। इस खत या चिट्ठी या पत्र में होता है किसी अपने के उमड़ते घुमड़ते जज्बात, जो सामने ना कह पाए वो दिल की बात है ना। खत लिखना भी एक कला है दोस्तों। जब दिल में ढेर सारा प्रेम हो तो शब्दों का चयन अपने आप विशेष हो जाता है, या यूं कहें थोड़ा कठिन हो जाता है। तब हम एक साथी, एक दोस्त को ढूंढते हैं कि वो खाली पन्ने पर शायद हमारी भावनाएं उतार पाए। शायद ये दोस्त वो जरिया बन जाए जो दो दिलों की दूरी को पाटने का काम कर जाए। और हमारा दिल उस बाबू से मिन्नतें करता है कि मेरा हाल मेरे सावरिया तक पहुंचा दो ना।

किसी दूसरे से खत लिखवाने में जब संतोष नहीं होता तब हम खुद लिखने बैठ जाते हैं अपने दिल की भावनाएं और पन्ने दर पन्ने भर देते हैं। फिर भी लगता है कि जो बताना चाह रहे हैं वो बात तो लिखी ही नहीं। तब उस खत के साथ कुछ चीजें भेजी जाती हैं जो शायद वो काम कर जाए जो पत्र में लिखे शब्द नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना। खत के भीतर रखा गया एक सूखा फूल या कोई छोटा सा हाथ से बना कार्ड या कढ़ाईदार रुमाल, ये चीजें गवाह बन जाती है कि दूर बैठा व्यक्ति आपको कितना याद कर रहा है। ये उस सुनहरे दौर की बातें हैं साथियों, जब दो प्रेम से भरे दिल आसानी से मिल नहीं पाते थे, तब ये खत उनके स्पर्श का एहसास कराता था। किसी संजीवनी बूटी का काम कर जाती थी चिट्ठी। बार बार पढ़ना, सीने से पत्र को लगाना या उसे ऐसी जगह छुपा देना जहां कोई उसे देख ना पाए। कल की भूली बिसरी बातें हो गई है ना, लेकिन ये भी सच है कि खत पढ़कर सामने वाले की यादों में खो जाने का एहसास, उसके होने का कोमल अनुभव, वो आज के इमोजी या मैसेज में कहां। हाथ से लिखा खत अपनेपन, समर्पण और गहरे प्रेम का एक दस्तावेज बन जाता है, जैसे कि दिल ही साथ भेज दिया हो।

आज के इस युग में डिजिटल वर्ल्ड में अपनी बात कहना पलक झपकने जैसा हो गया है। जहां प्रेम दर्शाना मिनटों में हो सकता है, वहीं द्वेष जताना भी आसान हो गया है। लेकिन हम उसकी बातें नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब चिट्ठी आना एक उत्सव की तरह होता था। घर का हर सदस्य उस चिट्ठी को बार बार पढ़ता, अपने ढंग से उसका अर्थ समझता और एक दूसरे को समझाता। खत लिखा जाता था, भेजा भी जाता था और उसे मंजिल तक पहुंचाने वाले उस खाकी वर्दी पहने, कंधे पर थैला लटकाए, साइकिल पर सवार, गली गली खत को घुमाने वाले को हम कैसे भूल सकते हैं भला? डाकिया बाबू। पूरा मोहल्ला उसका बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि उसके थैले में सिर्फ कागज नहीं, किसी की तकदीर, किसी की खुशी या किसी का गम छुपा होता था। आज के समय ने भले ही उस नीले रंग के अंतरदेशीय पत्र या पोस्टकार्ड की जगह ले ली हो, वीडियो कॉल से आसानी से देखा बोला जा सकता हो, लेकिन डाकिया के उस थैले से निकलती खुशियां, आंसुओं, जज्बातों की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इंसानी रिश्तों को जोड़ने वाली मजबूत डोर है डाकिया और खत उस डोर की पतंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक

0: स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
1: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
2: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को बधाई दे रहे हैं, जिला प्रशासन रांची को, कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
3: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। मैं विश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसके गुमशुदगी पर

0: तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और एलनीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
2: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR

0: न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले तीन दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रही हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम उड़न खटोला, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहेब।

0: लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था उड़न खटोला।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र की रचना सुनिए। गायिका है आशा भोंसले और फिल्म का नाम है जागते रहूं।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

0: आ रहे हैं विविध भारती पर।
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: और लीजिए अब सुनिए फिल्म वचन का गीत, आवाज आशा भोंसले की। इस गीत को संगीत दिया है रवि ने।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तो गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहां से हुजूर।
3: सदाबहार नगमी कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है यास्मीन, आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार जानिसार अख्तर और संगीतकार सी रामचंद्र।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म बारिश का दो गाना, आवाजें आशा भोसले और चितलकर की। शब्द राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन चितलकर यानी श्री रामचंद्र की है।

0: हाय हाय हाय हाय रे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और लीजिए अब सुनिए A.R. कुरैशी का संगीत, शिवान रिजवी का गीत, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम आलम आरा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
3: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म न्यू दिल्ली का गीत, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
4: मिलते ही नजर, मिलते ही

0: ही सही, ये गम ही सही, आपसे हम कुछ तो पा गए, मिलते ही नजर आए।
1: आवाज का सदाबहार
2: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपका और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्यों क्या कैसे कहाँ
2: बस ऐसे ही जैसे
1: अब ये जो शब्द है आप चौंक गई ना अचानक।
2: बिल्कुल एकदम चौंक।
1: लेकिन आपने पूछा मन में सवाल आया होगा कि अचानक ये क्यों पूछ रही है।
2: बिल्कुल इसी क्यों बोल रही है ऐसा वैसा जैसा कह के।
1: तो बस होता क्या है कि ये जो सवाल है ना जो मन में सवाल पैदा होते हैं यही जिज्ञासा पैदा करते हैं। अगर हमारे मन में सवाल खत्म हो जाए तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जहां से सृजन की यात्रा शुरू होती है तो अगर आपके मन में कौतूहल हो रहा है जिज्ञासा हो रही

0: तो समझ लीजिए कि आप कहीं जानकारियों का खजाना अपने भीतर पैदा
1: बिल्कुल
0: करेंगे।
1: और आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा ममता जी, क्योंकि हमारे अंदर एकदम से लगा कि क्या पूछ लिया तो थोड़ा मजा भी आता है जब ऐसी हाँ, संख्या मिलकर ऐसी मस्ती करती है।
0: बिल्कुल,
1: अच्छा
0: और ये कहा जाता है ना, जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी, जितनी गहरी होगी
1: जी,
0: सृजन की यात्रा भी उतनी ज्यादा होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और आज का हमारा विषय भी यही है, सृजन का स्रोत और जिज्ञासा।
0: बिल्कुल,
1: और सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे महिला उद्यमी ऋचा कर जीवामे की संस्थापक है, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में घोड़े बेचकर सोना, तो इसके बारे में बात किया जाएगा। और हल्की फुल्की बातें में चले मेला देखने, यानी कि हमारे जो साथी हैं वो घोड़े बेचकर सोना के बारे में अपने अपने अनुभव लिखें और कुछ बातें भी लिखें, और मेला देखने कब गए, क्या खरीदा, क्या देखा, वहां की कुछ ऐसी किस्से याद हो तो वो छोटी छोटी सी उसमें लिखे, चार चार लाइनों में, पांच पांच लाइनों में, तो मजा आएगा।
0: वैसे तो विषय में ही शब्द छुपे पड़े हैं, घोड़े बेचकर सोना, घोड़ा है, जब मेला देखने जाते थे तो हाथी घोड़े, मिट्टी के हाथी घोड़े होते थे ना, और वो ढेर सारे खरीद के लिए आते थे, और उसमें शक्कर की मिठाइयां जो होती थी उसमें हाथी घोड़ा और वो अलग अलग आकृतियां बनी होती थी, तो उसमें चुना जाता था कि हाथी लेंगे या घोड़ा लेंगे या हंस और चिड़िया बनी रहती थी।
1: बिल्कुल,
0: और वो दिवाली पर खासतौर से
1: दिवाली
0: प्रसाद के रूप
1: खिलौने मिट्टी के,
0: हाँ, चढ़ाए जाते
1: थे, खिलौने आते थे,
0: और मेले में वो मिट्टी के खिलौने की खोज जरूर होती थी जब हम छोटे थे, कि वो चक्री होती थी और जात, छोटे छोटे चिमटे, बेलन, और
1: रसोई का जो छोटे छोटे सामान होता था वो लकड़ी के भी बिकते थे और
0: मिट्टी के भी
1: बिकते थे,
0: और बाद में चीनी मिट्टी के,
1: हाँ, और बड़े सुंदर रंग भी होते थे, गुलाबी, सफेद पे गुलाबी, हरा, ऐसे लाइन करके। बड़ा
0: आप कौन सा रंग खरीदती थी?
1: जो वहां पे मिल जाते थे, गुलाबी हरा इसलिए क्योंकि वही खरीदी,
0: जाहिर सी बात है, जो रंग
1: बोला है वही
0: पसंदीदा रंग होता है उसी को हम जाके चुनते थे, और कई बार रंग उस रंग का न मिलने के कारण मेले में भटकते भी थे, और ऐसा भी होता था कि मेले में जा रहे तो सिर्फ खिलौने ही नहीं मिलेंगे, हर चीज मिल जाती थी।
1: बिल्कुल,
0: अब तो जो मेला है वो मोबाइल पर और स्क्रीन पर होता है,
1: लेकिन उन मेलों की यादें बहुत अच्छी हैं, ताजी हो जाएंगी सबकी आज जब बातें करेंगे, है ना।
0: और मेले में और भी तो कुछ होता था, हाँ? वो तो हिंडोला,
1: हाँ,
0: जो झूला होता था,
1: तरह तरह के झूले होते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता,
0: और मेले में एक डर भी होता था अपने बड़ों का हाथ छूट जाने का, माता पिता
1: जाने का, फिर जब अनाउंसमेंट होता था तो फिर ढुंढाई मचती थी कि कौन कहा, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेला जाना तो
0: एक मिनट के लिए भी अगर हाथ छूट जाए तो बस डर का ज्वार मन में आ जाता था कि अरे माँ कहाँ गई, अभी हम कहीं खो न जाए, गुम न जाए भीड़ में, तो मेले का एक अलग अनुभव होता है, सबके भीतर एक मेला होता है, उन मेले का अनुभव होता है, उन अनुभवों को हमारे श्रोता साझा करें, और कोई एक छोटी सी घटना याद हो तो लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है, मुहावरे बहुत सारे हैं, दिन भर चले अढ़ाई कोस, या फिर ऐसे बहुत सारे मुहावरे
1: जो नावे आंगन टेढ़े, हाँ, बहुत सारे हैं, तो
0: और बड़े बुजुर्ग हमें याद है कि दादी नानी मुहावरों में, लोकोक्तियों में बात किया करते थे, लेकिन अब ये समय जैसे खत्म हो रहा है, तो इन्हें जिंदा रखने के लिए कभी चर्चा तो करनी चाहिए, तो किन्हें कितने मुहावरे याद हैं लिख भेजे हमें,
1: क्या
0: और अब हम क्या करें बताइए,
1: हम तो गीत सुनते हैं,
0: चलिए।

0: मंजरी जी, देखिए अपने पास विविध भारती के फेसबुक पेज पर श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं, और एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि मैं बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली सुन रही हूँ। क्या बात है, अभी यहाँ सुबह का टाइम 11:33 है, हल्की सी ठंड है, दिन में थोड़ा गर्म हो जाएगा।
1: क्या बात है, आप इतनी दूर से सुन रही, तो मेरा हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार
0: और शुक्रिया,
1: शुक्रिया
0: कि सुन रही है। और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर तक विविध भारती की आवाज गूंजती है।
1: सही बात है ममता,
0: और जिज्ञासाएं भी बहुत सारी पैदा होती हैं जब हम कहीं दूर होते हैं, तो और जिज्ञासा का घर होता है।
1: जैसे और जिज्ञासा में उन्होंने देखिए, हम लोग सोच ही सकते थे कि बर्लिन में क्या क्या मौसम है, कैसा मौसम है, तो उन्होंने बता ही दिया, तो हमारी जिज्ञासा जो थी उठी थी, वो शांत हो गई।
0: बिल्कुल सही बात है, और अब तो जिज्ञासा शांत

0: करने का बहुत बड़ा अपने पास औजार है, वो है गूगल मास्टर। जैसे मन में कोई कौतूहल होता है तुरंत गूगल पर जाकर लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक समय था जब आपके भीतर कोई जिज्ञासा है तो उसको शांत करने के लिए बड़ों की शरण में जाना पड़ता था, टीचर्स की शरण में जाना पड़ता था।
1: और साथ साथ हम लोग किताबों में भी पढ़ा करते थे, ढूंढ के पढ़ते थे कि इसमें क्या है, किसके बारे में क्या लिखा गया है, तो किताबों को पढ़ने का एक अलग ही।
0: और किताबें पलटते हुए हम जब एक दो पन्ने पलटते तो उसमें और भी चार जानकारियां मिल जाती थी।
1: बिल्कुल। और जब हम अपने आसपास की चीजों और वस्तुओं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों और लोगों को देखते हैं ना ममता जी, तो कभी कभी लगता है कि उनका आकार कैसा है, रंग रूप, बोली भाषा और छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है, कैसी है, कैसे बनी है, कब बनी है, किसने बनाया और कहाँ से आई, क्यों, जैसे सवाल मन में उठते हैं तब जिज्ञासा का जन्म होता है। जिज्ञासा होने से ही सृजन के स्रोत का जन्म होता है, जैसे आपने शुरू में पूछा ही था कि क्यों कब, तो वही चीज है।
0: और ये जो सृजन का जन्म होता है तो जिज्ञासा से, तो इस जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है, खासतौर से बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। और एक जिज्ञासा मेरे मन में भी उठी है कि इस समय 3:15 होने को है, तो क्या किया जाए,
1: अंतराल लिया जाए,
0: देते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बात जिज्ञासा की चल रही थी। मंजरी जी, जब जिज्ञासा की बात हम कहते हैं तो छोटे बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और कई बार माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते उन्हें शांत नहीं करते बल्कि इग्नोर कर देते हैं और टाल देते हैं, कई बार डांट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं की गई तो फिर आगे चलकर वो पूछना ही बंद कर देंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे बच्चे पूछते भी ना कि मम्मी देखिए आसमान में चांद क्यों निकला है, रात में क्यों निकलता है, तारे क्यों झिलमिला रहे हैं, इस तरह के बच्चे बातें पूछते हैं, और सूरज इतना गर्म क्यों होता है। तो अगर आप उन बच्चों को सही से जवाब देंगे तो वो उनको बहुत समय तक याद रहेंगे और उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो भी उस समय उनको उत्तर जब मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहना चाहिए जिज्ञासा हर किसी में होनी चाहिए किसी भी विषय को जानने की, और अगर वो प्रश्न करते हैं किसी सामने वाले से तो उसको भी सही जवाब देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सृजन का स्रोत जिज्ञासा, ये सत्य है कि कुछ नया रचने जानने या आविष्कार करने की प्रेरणा हमेशा मन की उत्कंठा या सवाल पूछने की आदत से ही पैदा होती है। जब तक मन में ये क्या है, ये काम कैसे करता है जैसे भाव नहीं उठते, तब तक किसी नए विचार या कला का जन्म संभव नहीं है। जिज्ञासा और सृजन का संबंध मन में उठने वाला एक छोटा सा प्रश्न नए रास्ते खोलता है। जिज्ञासा इंसान को उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल। और ममता जी, इसी तरह एक साथी हमारे लिखते हैं कि जिज्ञासा ही सृजन की पहली सीढ़ी है। जब मन में किसी बात को जानने और कुछ नया खोजने की चाह जागती है तभी नए विचार जन्म लेते हैं। जब मन में सवाल आते हैं तो दिमाग जवाब ढूंढने लगता है, यहीं से सृजन की शुरुआत होती है। कुछ नया रचा जाता है, फिर वह कविता का रूप हो चाहे विज्ञान के रूप में आता है। जिज्ञासा ही नई कल्पनाओं को जन्म देता है और वही साकार रूप लेकर हमारे सामने आती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि

0: जिज्ञासा जन्मजात गुण है, हर इंसान के भीतर होता है। यह न केवल ज्ञान के बंद दरवाजों को खोलने वाली पहली चाबी है, बल्कि जीवन को रोमांच, नए अनुभवों और अंतहीन संभावनाओं से भरने का एकमात्र जरिया भी है। और आगे इन्होंने लिखा है कि विविध भारती से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिज्ञासा इसीलिए ही हमें बहुत पसंद है।
1: क्या बात है, इतनी बढ़िया से उन्होंने तारीफ करी है। और जिज्ञासा सृजन का मूल स्रोत है, लिखते हमारे साथी। और सुरीली धड़कन विविध भारती पर भी जिज्ञासा से भरी सृजन रूपी गंगा बहती रहती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे कुछ ना कुछ नया जानने की, खोजने की और खोज के बाद उसका सृजन करने की इच्छा जागती रहती है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं, तभी विज्ञान, कला, साहित्य और आविष्कारों की शुरुआत होती है।
0: अभी गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम बातें करते हैं शिक्षा की, सेहत की, खेलकूद की और महिला उद्यमी की, और कई बार रसोई की भी बातें करते हैं। गांव से शहर तक, शहर से महानगर तक, महानगर से विदेशों तक भी हमारी आवाज गूंजती है।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें होती है ना, तो जो हमारी महिलाएं जो निराशा के उसमें चली जाती तो वो ये सुनकर के बहुत उत्साहित होती कि उन्हें हमारी बातों से उन्हें कुछ ना कुछ नया करने की एक सीख मिली है,
0: हौसला अफजाई भी करती है सखी सहेली, है ना। तो अब हम अगले विषय पर पहुंचते हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाते हैं कि देखते हैं कि हमारी सखियों ने और हमारे सखाओं ने क्या लिखा है, क्योंकि सखियों के साथ साथ सखा भी हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं,
1: बहुत रोचक तरीके से सुनते हैं हमारे सखा
0: जी। तो हमारे एक सखा की टिप्पणी आई है जिन्होंने लिखा है कि भाई सखी सहेली कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है और मेले के बारे में अपने जज्बात साझा किए हैं। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि मेले को आज भी मनोरंजन का विशुद्ध साधन माना जाता है। बचपन में पापा की उंगली थामकर न जाने कितने मेले देखे और जरा जरा सी चीजें खरीदकर जो मन को तसल्ली मिलती थी। मेले में देहाती फनकारों के हुनर काबिलियत की पेशकश देखना एक अलग ही आनंद देता था। पहली बार कठपुतली का नृत्य मैंने मेले में ही देखा था। मनोरंजन का ये खेल तमाशा दुनिया के किसी भी मेले में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बचपन छूटने के साथ ही मेला देखने जाने का उत्साह भी पीछे छूट गया, मगर मेरे शहर में पुराने संग्रहालय की चीजों का और पुस्तक मेला समय समय पर लगता रहता है।
1: बिल्कुल, मेले की बात ही कुछ और होती है क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीजें होती हैं, खाने पीने से लेकर के घर गृहस्थी के सामान हैं और बहुत सारी हस्तकला भी जो होती है वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो जिसको जैसी जरूरत होती है वो वहाँ से उसी हिसाब से खरीद के लाता है, चाहे वो रसोई से जुड़ा हुआ सामान और कपड़े भी बहुत होते हैं, चटाइयाँ, दरी हैं, तरह तरह के कपड़े वो भी वहाँ बने बनाए मिलते हैं मेलों में। तो सब लोग बहुत शौक से मेला देखते हैं और खरीदते हैं
0: और मेले में जगहों के बारे भी पूछते हैं। अब हमारे कुछ श्रोता जिज्ञासा की ओर फिर पहुंच गए हैं जो हमने सब्जेक्ट दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा 7 साल का पोता है, मुझसे बड़े सवाल पूछते रहता है। मुझे पता होता है तो बता देती हूँ, पता नहीं होता तो तुरंत गूगल में सर्च करके बताती हूँ। इससे मेरे पोते की जिज्ञासा तो शांत हो जाती है लेकिन मेरा भी सामान्य ज्ञान बढ़ता रहता है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह एक लिखते हैं कि जिज्ञासा हर प्रकार के सृजन, आविष्कार और ज्ञान की मूल आंतरिक प्रेरणा है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं तभी किसी नए विचार, विज्ञान या कला का मार्ग खुलता है।
0: और अब एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: महिला उद्यमी की बातें करते हैं। अब देखिए ना, आज हमने विषय मेला भी दिया है, तो मेले की कितनी सारी टिप्पणियां श्रोताओं की आई हैं। हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि हम मेले में जाते थे, गुम हो जाते थे। कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि मेले का इंतजार रहता था साल भर, और गांव में जब मेला लगता था तो बाकायदा ऐलान किया जाता था कि मेला लगने वाला है, तो वहां से खिलौने खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, किताबें, और अब तो किताबों का भी मेला लगता है।
2: और मेले में ममता जी, वहां पर गुड़ के सेव है, चक्की है, लड्डू है, लैया के लड्डू, खील के लड्डू, ये सब भी बहुत बिका करते थे। और आइसक्रीम खाने का चाट के ठेले लगते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था। और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, श्रृंगार के कितने सारे सामान होते थे, चूड़ी बिंदी। और मुझे याद है कि वो जो बड़े बड़े रिबन हुआ करते थे वो उस समय भी खरीद के लाते थे।
1: और एक चीज की हिंडोला होता था, और बड़े वाले हिंडोले पर बैठने पर डर बहुत लगता था
2: जी।
1: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक बार ही मेला गई थी मेरे दोस्तों के साथ, करीब 4 साल पहले दशहरे के मेले में। वहां से मैंने एक लकड़ी की हेयर स्टिक ली थी जो अभी भी मेरे पास है, और वहां मैंने एक छोटे बच्चों का टी शर्ट देखा था जिसके लिए मैंने बहुत जिद की थी, पर मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं लेने दिया।
2: और देखिए, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेले की बात कर अपनी बचपन की बहुत यादें सामने से गुजरी हुई दिखाई दी। हमारे जमाने में मेला देखने जाना ऐसा होता था कि कहीं कोई दूसरी ही दुनिया में घूमने जा रहा है। मैं अपने चाचा जी के पास रहती थी तो वहां मेला लगता था मेरे घर के सामने ही, रोज ही देखती थी। और दशहरा का मेला तो देखने हम सब भाई बहन चाचा जी के साथ देखने जाते थे। वाकई में मेले से बहुत सारी यादें जुड़ी है। बाइस्कोप होता था, वो घिसी हुई आइसक्रीम होती थी, है ना, जो बर्फ का गोला जिसे
1: बर्फ का गोला, और उसमें रंगीन मांगते थे कि ऑरेंज नारंगी कलर का दो, और कोई काले काला खट्टा काला वाला लेते थे, और वो पूरे ओठ रंग जाते थे तो उसमें फिर उस समय तो मोबाइल था नहीं कि तस्वीर खींची जाए, पर किसी गाँव में किसी के पास कैमरा हुआ करता था बड़ा वाला, तो कैमरा ले आके उसके पास जाते थे कि उस कैमरे से फोटो ले ली जाए, फिर वो फोटो प्रिंट करवा के मिलती थी बहुत मिन्नत करने पर।
2: बिल्कुल, और कई कई मेलों में होता भी था ममता जी, पर्दे लगा करके वो चांद तारा है, और क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल रखी है, उस पर फोटो खींचने के लिए सुविधा बनी रहती थी। तो हम

0: भी बहुत इस तरह से कि ऐसे
1: हम्म,
0: चांद है उसके ऊपर बैठ के फोटो खिंचा रहे, जैसे लग रहा है हम आसमान की सैर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं कि अरे वाह हम तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इस तरह की फोटो जब देखते हैं वापस एल्बम में तो मेले की यादें ताजा हो जाती है। और मेले में जो एक आता था गुलाबी कलर का पैकेट में बंद होता था, बुढ़िया के बाल जिसे कहते हैं, वो भी हम लोग खरीदते थे क्योंकि उससे ओठ और जवान लाल हो जाती थी तो बड़ा मजा आता था। तो मेले में कहना चाहिए कि सब चीजें, और वहां पे डांस वगैरह भी होते थे पशुओं के, तोता को दिखाया जा रहा चढ़ रहा उतर रहा है, पर्ची निकाल रहा है, इस तरह
1: कठपुतली
0: के
1: का नृत्य
0: कठपुतली का
1: दिखाया
0: डांस।
1: जाता था, वो
0: हाँ
1: बहुत आनंद
0: जी
1: आता था। और जो लोक नृत्य दिखाए जाते थे उसकी तो छटा अलग ही
0: जी
1: होती थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया और मोबाइल ने हम लोगों को कुछ इस कदर मोह पाश में बांधा है कि देर रात तक हम अपने सुख चैन और आंखों को मोबाइल के हवाले कर देते हैं। फिर लेट नाइट घोड़े बेच कर ऐसे सोते हैं कि सीधे दोपहर ही जागते हैं, और मोबाइल की लत ने हमें घूमना फिरना मेलों ठेलों का मोह भंग कर दिया है। दशहरा मेला हो, चाहे नवरात्रि का मेला हो, व्यापार मेला हो, कोई सांस्कृतिक मेला, बच्चों को कहो कि चलो भाई सब चलो, कुछ बाहर की रौनक देख कर आते हैं। इस पर बच्चे कहते हैं भला भीड़ भाड़ में धक्के खाने कौन बाहर जाएगा, हम घर पर ही रहकर ये सब कुछ मोबाइल के जरिए रील में देख लेंगे। मगर मोबाइल और सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग के चलते गांव देहातों में मेलों का क्रेज आज भी बरकरार है। मेले हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल है, और इसे जीवित रखने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन होते ही रहना चाहिए।
0: जी और एक लिखते हैं ममता जी कि मेले तो बहुत गए हैं, बचपन में पानी वाली बॉल अक्सर लाते थे और बहन के लिए मिट्टी के घड़ी घंटी और चूल्हा हांडी तवा बेलन चकला वगैरह लाते थे, बहुत सुंदर सुंदर होते थे ये डिजाइन। और एक लिखते हैं पहले मेले मंदिर के चौगान में लगते थे जो दर्शनार्थी दर्शन करते और कुछ आनंद लुटाते थे, अब मेले बड़े शहर में लगने लगे हैं, गाँव में बंद हो गए हैं। और
1: एक
0: जी
1: श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत हमने मेले के बारे में लिखा है कि मेला देखने आज मैं जाती हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर करने कर रही हूँ। जब मैं बचपन में मेला देखने जाती थी तो मुझे खिलौने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था। मेला देखेंगे ये खिलौना मिलेगा, वो खिलौना खरीदेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, और इस चक्कर में मैं तो जाती खिलौने देखने और खाने। कितनी बार मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता कि ये बहुत ज़्यादा खिलौने की ज़िद कर रही है। और वहीं पर मेले में इस बात को लेकर मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता। मेरे खिलौने की जिद को लेकर ये मेरा बचपन का सबसे ज्यादा अनुभव रहा है मेला देखने का। वैसे मेरा मेला देखने का मजा अलग ही होता है, वहां जाकर खिलौने खरीदना, अब चूड़ियां खरीदना, खाना बहुत ज्यादा मजा आता है। अब तो मेले में सब कुछ एक साथ मिल जाता है,
0: बिल्कुल
1: मतलब खाने के अलग अलग स्टॉल भी होते हैं और चीजें तो अभी मिलती हैं। अभी भी मेले लगते हैं,
0: बिल्कुल
1: अभी मुंबई जैसे महानगर में भी मेला लगता है जहां पर पूरे देश की
0: चीजें
1: लोग आते
0: दिखाते
1: हैं और चीजें मिलती हैं वहां पर। बहुत सारी लोक संस्कृति की चीजें होती हैं, लकड़ी के खिलौने,
0: जी
1: लकड़ी के बर्तन और तरह तरह के अचार भी मेले में मिलते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: अचार है, चूरन
1: और
0: है, चिप्स, पापड़, कचरी, ये सब भी बहुत मिलता है। और जो बहुत सारी चीजें बर्तने कटर वगैरह जैसे आ गए हैं मार्केट में तो वो सब भी मिलते हैं, और तरह तरह की जैसे आपने चूड़ियां करी,
1: लेकिन
0: झुमके
1: लोगों के
0: वगैरह भी
1: पास
0: खूब
1: वक्त
0: मिलते हैं।
1: नहीं है।
0: जी
1: अब जो मेले में भीड़ होती है वो बड़ों की भीड़ होती है,
0: जी
1: ज्यादातर उम्रदराज लोगों की, बच्चों की भीड़ नहीं होती है।
0: बच्चों की भीड़ तो उन मेलों में हुआ करती थी जहाँ
1: हाँ,
0: झूले वगैरह होते
1: क्योंकि
0: थे।
1: अब जो हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि मोबाइल में सब कुछ है, तो सब बच्चे बच्चों को अगर कहा जाए कि चलो घूम के आते हैं, दशहरे का मेला देखाते हैं, दुर्गा पूजा देखाते हैं, तो बच्चों की यही बात होती है कि इतनी देर हम पढ़ाई कर लेंगे। और पढ़ाई तो क्या, जब माता पिता घर में नहीं रहते तो पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट स्क्रीन के सामने भी होता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और हमारे साथी एक लिखते हैं ममता जी इसी पर कि वैसे तो मैं शुरू से शहर में ही रही हूं तो दशहरा में जो मूर्ति बिठाई जाती थी वही मेले जैसा भी लगता था, हम लोग भी वहीं जाते थे। दशहरा के 4 दिन यानी सप्तमी से दशमी तक मम्मी घूमने जाने से 20 रुपए देती थी, उससे ही हम लोग झूला भी झूलते थे, चाट वगैरह भी खाते थे और कुछ खरीद भी लेते थे। अभी भी डिज्नीलैंड में जाती हूँ तो मुझे हर एक माल 10 रुपए या 20 रुपए वाला सामान खरीदने में ज्यादा मजा आता है, वहां मैं बड़े सामान कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। और एक लिखते हैं कि मेला हमेशा गर्मी की छुट्टियों में ही लगता है, मैं मेरे दोनों छोटे नातियों को लेकर मेले गई, बड़े बच्चे तो बड़े झूलों में बैठे थे लेकिन छोटे झूलों में दोनों नातनियों ने को लेकर मैं खड़ी थी, अचानक से धूल भरी आंधी चालू हुई, लगभग सभी झूले रोक दिए गए, शॉर्ट सर्किट भी होने लगा, जल्दी जल्दी सब बाहर निकलने लगे। उस समय बहुत घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि दो छोटे मेरे पास थे और बाकी सारा दूसरा ग्रुप अलग।

था। फिर कुछ देर सब में सब लोग मिल गए, बाहर आए तब तेज बारिश भी होने लगी थी। कई बार हो जाता है ऐसा, मौसम बदल जाता है अचानक, तो पता नहीं चलता है कि हम तो मिला घूमने गए, लेकिन इस तरह की समस्याएं हो जाती। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अपने बच्चों का बहुत आप ध्यान रखें जब भी कहीं जाएं। तो अब बातचीत को थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं विराम और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना। कई बार यादों का भी मेला होता है, तो यादों का मेला बहुत विशाल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। देखते हैं इस गाने में क्या बात है।

0: तो ममता जी, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत महिला उद्यमी ऋचा कर के बारे में, जो जीवामे कंपनी की संस्थापक हैं। और अक्सर क्या होता है, जब महिलाएं शॉपिंग पर जाती हैं तो अपने आंतरिक वस्त्रों के लिए एक खरीदने में उन्हें एक शर्म सी और झिझक सी महसूस होती है, ये कैसे उनके बारे में हम बताएं, क्योंकि ज्यादातर पुरुष ही ग्राहक को कपड़ा दिखाते हैं, तो इस समस्या पर जो ध्यान था ना, वो इन ऋचा जो कर थी उनका गया, और उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने ऋचा कर जो थी वो जीवामे कंपनी की संस्थापक और पूर्व सीईओ है, जीवामे ब्रांड ऑनलाइन लग्जरी अंडरगारमेंट्स की कंपनी है, तो उनका इस पर ध्यान गया और उन्होंने इस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया।
1: और ऋचा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ऋचा कर का जन्म हुआ था जुलाई 1900

0: सीखो झारखंड के जमशेदपुर के एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार में। उनके पिता टाटा स्टील में काम करते थे और परिवार में आदर्श मूल्य संस्कार और सामाजिक रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती थी। ऐसे परिवार में ऋचाकर ने आगे चलकर अलग ही व्यवसाय को चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऋचा के सपने इन सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे
1: और उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय ये किसी लड़की के लिए आसान नहीं था। साल 2007 में उन्होंने मुंबई के नरसिंह मौजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में से वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और बाद में मास्टर्स डिग्री भी पूरी की। वे शुरू से कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋचा ने आईटी क्षेत्र में कदम रखा और रिटेल कंसल्टेंसी जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रिटेल और मार्केटिंग की गहरी समझ हासिल की जो उनके बिजनेस में काफी काम आई। और ऋचा जब एक संस्थान में काम कर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में आज भी महिलाएं इस तरह के वस्त्रों को लेने में असहज और संकोच महसूस करती हैं। दुकानों में चैन के विकल्प कम और प्राइवेसी भी नहीं लगती, साथ ही में सही साइज नहीं मिलना एक बड़ी आम समस्या हो गई थी। बस यही से इस कंपनी को आगे बढ़ाने का उनका ध्यान गया।
0: और 2011 में ऋचा ने अपने पति और सह संस्थापक विवेक कर के साथ मिलकर जीवावे में की शुरुआत की। ये भारत का पहला ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड था जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्टाइलिश, आरामदायक और किफायती लॉन्जरी उपलब्ध कराना, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ।
1: जी, और शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी बचत और उधार लेकर इस सपने को हकीकत में बदला उन्होंने। और जो इसको इस खरीदारी को मतलब इस आंतरिक वस्तुओं की खरीदारी को उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन पर ला करके बहुत ही सुविधाजनक बनाया और बल्कि इसे एक सशक्त अनुभव में बदल दिया। ग्राहकों का भरोसा जीतने के साथ जीवामे जल्द ही भारत का विक्टोरिया सीक्रेट बन गया। साल 2014 में फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया और कंपनी की ऊंची उड़ान को देखते हुए साल 2015 में उद्योगपतियों ने भी इसमें निवेश किया जिससे कंपनी की कीमत कई मिलियन डॉलर हो गई।
0: और जब किसी और कंपनी ने टेक ओवर किया तो ऋचा ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी शामिल है। आज जीवामे की वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है और ये ब्रांड लाखों भारतीय महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और सहजता का प्रतीक बन गया है। ऋचा कर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने वही सच होते हैं जिनका पीछा करने की हिम्मत हो। चाहे आप किसी छोटे शहर से हों, रूढ़िवादी परिवार से क्यों ना हो, या समाज आपको पीछे खींचे, अगर आपके पास जुनून है, मेहनत है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
1: जी,
0: अब इसके बाद एक गाना सुनते हैं।

0: कैसे भीगे भीगे प्यारे प्यारे हैं नज़ारे। बारिश के मौसम में नज़ारे का आनंद कुछ अलग ही होता है,
1: बिल्कुल
0: और इस बारिश के मौसम में नींद भी खूब जम के आती है,
1: बिल्कुल
0: और तेज बारिश हो रही हो तो ऐसे
1: जी
0: लगता है कि जम के सो जाया जाए, है ना।
1: बिल्कुल, घोड़े बेच कर सो जाए
0: और आज
1: जी
0: हमने विषय भी दिया है अपने श्रोताओं को कि
1: जी
0: मुहावरों की जो दुनिया पहले होती थी बड़ी आबाद रहती थी, मुहावरों में बात करने का एक अलग ही जायका होता है,
1: बिल्कुल
0: मिजाज होता है, लेकिन अब ये तरीका बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। लोग अगर मुहावरा बोलना भी चाहें तो सामने वाला समझता ही नहीं। आप आने वाली पीढ़ी के सामने मुहावरे का प्रयोग करके देखिए,
1: वो सिर्फ
0: वो
1: कोर्स में ही पढ़ के समझते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: वो
1: हम लोग
0: पूछते
1: तो
0: हैं।
1: अपने घर में दादी नानी जो
0: हाँ
1: थी, मम्मी वगैरह, ये सब हर बात में कहावते मुहावरे बोलती थी। कुछ नहीं काम आ रहा है तो कह रही है नाचना आवे आंगन टेढ़ा
0: बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घोड़े बेचकर सोने वाले मुहावरे से मुझे एक घटना याद आ गई। मेरी भतीजी की शादी थी, बुआ होने के नाते मेरे ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां थी। 2-3 दिन के भागदौड़ के बाद जब बारात की विदाई हो गई तो जहां जगह मिला वहां सो गई। इत्तेफाक से उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, उसे जन्मदिन सेलिब्रेट करना था, पर मैं तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने मुझे इस तरह से कभी सोते नहीं देखा था तो घबरा कर रोने लगा। तब उसके पापा ने उसे समझाया और मुझे जगाया। फिर किसी तरह से केक कटवा कर हम सबको बाय बोलकर फिर से घोड़े बेचकर मैं तो सो गई।
1: क्या बात है, कितनी अच्छी सी यादें हैं
0: वैसे ये
1: जी
0: घोड़े बेचकर नींद आजकल आ जाए तो ये अच्छी बात है, इससे बड़ा
1: जी
0: खुश नसीब कोई है नहीं
1: बिल्कुल, जिसको
0: कि
1: गहरी नींद आती हो
0: गहरी
1: जल्दी,
0: नींद और देर तक आती हो,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: सही
0: अब
1: बात।
0: जो जमाना है, जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन और व्यस्तता और सबकी दोहरी तेहरी जिम्मेदारियों ने नींद हनन कर ली है,
1: बिल्कुल,
0: और
1: क्योंकि
0: जहां
1: बगल में मोबाइल रखा रहता है, जरा सी मैसेज आई नहीं कि पट से देखने लग गए, तो ये चीज बहुत गड़बड़ हो गई नींद हमारी। तो हमारे साथी लिखते हैं, घोड़े बेचकर सोना हिंदी का बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुहावरा है, जिसे रोज मजाक की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत उठाने पर भी नींद से कोई नहीं उठता है तो कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे थे। लोग बोलते हैं कि बेटी का ब्याह कर लिया, अब तो हमको घोड़े बेचकर सोना है। इसका मतलब निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना या सारी चिंताओं को छोड़कर बेफिक्र हो जाना। मुहावरे का अर्थ और प्रयोग ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह के तनाव या डर के बिना आराम से सोता है, बहुत लापरवाही होने पर भी इसका प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी होता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर सो रहा है। कई बार कहती हैं कि भाई तुम इतना सो रहे हो घोड़े बेचकर, क्या तुमने पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली है क्या, इस तरह से भी कहा जाता है। और ममता जी हमारे और साथी लिखते हैं कि घोड़े बेचकर मुहावरे का अर्थ निश्चिंत और बेफिक्री गहरी नींद लेना होता है। पुराने समय में घोड़े के व्यापारी को घोड़े की देखभाल के लिए रात भर जागना पड़ता था। जब घोड़ा बेचा जाता था तब निश्चिंत होकर चैन की नींद ले सकते थे। तो इस तरह की बातें हमारे साथियों ने लिखी हैं। और एक लिखते हैं, मुहावरे की दुनिया, घोड़े बेचकर सोना, अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले वो घोड़े बेचकर ही सो रही थी, और इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना। और ये मुहावरा हम सबके जीवन में लगभग, मैं कहूंगी कि रोज ही प्रयोग होता है। और कवि का और कहती है कि हम घोड़े बेचकर रविवार के दिन सो जाते हैं, उसके कारण से हमारे रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। ऐसा अनुभव मेरा तो कितनी बार रहा है, कितनी बार घोड़े बेचकर ऐसे सो गए कि मुझे सुबह उठकर काफी भागीदारी, मतलब दौड़ भाग लगानी पड़ी काम करने के लिए। और ये कहती है कि भाई भागा दौड़ी में दिन भी बीत जाता है इस तरह से।
0: दरअसल घोड़े बेचकर सोने का जो मुहावरा प्रचलित हुआ कि पहले के जमाने में घोड़ा घर पे होता था, मतलब आंगन द्वार पर घोड़ा बंधा होता था, और उसके पीछे बहुत सारे

0: लगती थी, क्योंकि जिसके द्वार पर घोड़ा होता था वो कहा जाता था बहुत समृद्ध इंसान है, और उसके पीछे जो खान पान होता था वो बहुत कुछ लगता था, लागत लगती थी, तो बेचने पर पैसे बहुत मिलते थे, वो इंसान समृद्ध हो जाता था। तो एक
1: जी
0: बार जब पैसे से समृद्ध हो इंसान को नींद अच्छी आए,
1: जी
0: तो ये मुहावरा उस समय बना था। और इस मुहावरे का प्रयोग कई बार नकारात्मक भी हो जाता है,
1: बिल्कुल
0: इम्तिहान के दिन जब होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, तो पढ़ते पढ़ते कई बार रात हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं, और पता चला कि बस एक झपकी ले लेते हैं और उठ के तैयार होके परीक्षा देने जाना है, तो पता चला कि आप सोते ही रह गए। वहां घोड़ा बेचकर सोने वाली बात तो है नहीं,
1: जी
0: लेकिन नींद ऐसी आई कि आपकी परीक्षा को देर हो गई।
1: देर हो
0: कई
1: गई
0: कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई कि लोग परीक्षा के पहले सोते ही रह गए, और या नींद तब खुली जब परीक्षा का टाइम हो गया, तो भागते भागते आप परीक्षा हॉल तक पहुंच रहे हैं,
1: कई बार ऐसी
0: तो
1: चीजें
0: ये
1: हो भी
0: नींद
1: जाती
0: भी,
1: है।
0: ऐसी
1: हाँ
0: नींद भी होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि कुछ लोग तो सचमुच नींद में ऐसे सोते हैं कि लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। एक परिवार के साथ सुबह के टाइम में हम लोग चले गए और मंदिर घर मंदिर मतलब मंदिर चले गए, और घर में बहू और उसकी बच्ची थी। मंदिर से लौटते हमें 10 बज गए। जब दरवाजा खुलवाया गया तो बहू को सुनाई ही नहीं दे रहा था। आधा मोहल्ले के लोग जुट गए और बहू दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। बड़ा डर लग रहा था। अंत में दूसरे के घर में जाकर बांस की सीढ़ी लगाकर खिड़की पर डंडे से पीटा गया तो बहू की बच्चे की रोने की आवाज आई तो बहू बोली कि सो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से उन लोगों ने, उनके परिवार ने बहू को पर कभी मतलब बहू को घर पर कभी नहीं छोड़ा कि ये जब जाते हैं तो कहीं ऐसा ना ये फिर से सो जाए।
0: और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भाई सो गए फिर क्या, देह पर मक्खी बैठी, मच्छरों ने अटैक किया, क्या अंतर पड़ता है। अब सोए तो सोए, लेकिन ध्यान रहे कि ये सोए ही नहीं अपितु घोड़े भी बेचकर सोए हुए हैं, यानी पूरी तरह से गंभीर निद्रा में सो रहे हैं। जबकि निद्रा के संबंध में कहा गया है कि ये निद्रा श्वान की भांति होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, और हम लोग इस जग पाठशाला के एक विद्यार्थी ही तो हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुहावरा है, और इसके निहितार्थ यही है कि निद्रा तो एक बहाना है, सच तो समस्याओं से बचते रहने का एक उपाय मात्र ही है। दरअसल कई बार इसमें लापरवाही भी छिपी होती है, और अब आगे की जो जनरेशन है कई बार इसी तरह की नींद सोती है कि आप
1: बिल्कुल।
0: जगाते रहो जगाते रहो, उठना ही
1: क्योंकि
0: नहीं।
1: उनकी भी देखिए, वो लोग देर रात तक सोशल मीडिया मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते रहेंगे, नहीं तो कुछ सर्च ही कर रहे हैं, नहीं तो लेट नाइट पढ़ ही रहे हैं। तो उससे क्या होता है, फिर वो सुबह मतलब पता चला वो 3 बजे सोए
0: अब
1: हैं।
0: उल्टा हो रहा है मामला, क्योंकि
1: जी
0: अब लोगों को घोड़े बेचकर सोने की आदत नहीं, बल्कि नींद से जूझने की आदत पड़ गई
1: जी
0: है, और ये नींद से जूझने वाली जो बात है गाने में भी प्रयुक्त हुई है।
1: तो चलिए
0: देखते हैं इस
1: सुनते हैं।
0: गाने में क्या है। फिल्म है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।

0: अब मंजरी जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।
3: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
4: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक

0: सेलुलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
1: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूं, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
2: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
1: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
2: जी जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
1: ओके।
2: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
1: गाना,
2: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
1: अरे अरे।
2: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, हमको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर उनकी फिल्म।
1: ऑडिशन से मिली थी?
2: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
1: ओहो,
2: हाँ। और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं

0: वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए
1: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
0: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन, बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वॉन्टेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वॉन्टेड अ सिंगर। तो मैंने वही पे स्कोर किया।
1: क्या बात है।
0: कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग।
0: ओके আমি লাস্যময়ী তোমার চোখে কামনার ফুল যে ফোটাই তবু আখি

0: তোমার নয়, তোমার নয়।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल,
0: हाँ
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया,
0: हाँ
1: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे एक इंटरनेशनल
0: ये
1: टीम के साथ काम
0: बिल्कुल
1: करने के।
0: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स की फिल्म
1: हो,
0: उन्होंने
1: टुवर्ड्स
0: शूट
1: द
0: किया
1: एंड ऑफ
0: था।
1: द वर्ल्ड।
0: यस सो एक-एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड, हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ ले गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स। तो वो मतलब बहुत ही कमाल का
1: चार पांच
0: एक्सपीरियंस था।
1: धड़कन मिस।
0: हाँ बिल्कुल टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था। तो बर्लिन आले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे, एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी,
1: वाह,
0: लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट, की दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी।
1: बिल्कुल।
0: इंडिया में ऐसे कोट्स मिलते ही नहीं थे, वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
1: क्या
0: तो
1: एक्सपीरियंस था वो एकदम, है
0: हाँ
1: ना।
0: मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने। और मिल रहे हैं
1: वाह
0: किसे, कियानो रीव्स।
1: वाह
0: पर
1: वाह वाह,
0: ये
1: यही तो
0: कहानियां
1: मजा है।
0: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे, और हम लोगों को रिट्स कार्लटन में ठहराया गया था, तो हम तो
1: वाह
0: पागल हो
1: वाह,
0: गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट।
1: ग्रैंड।
0: या बट थैंकफुली लेटर इन लाइफ दिस बिकेम अ नॉर्म इन लाइफ, लाइक मेनी मोर फिल्म हैपेंड लाइक दिस, जहां मतलब बहुत ट्रेवल मैंने किया, जूरी में भी रही, और ये धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो
0: दिस इज
1: है,
0: द बिगिनिंग।
1: यस बिल्कुल। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म्स और उनमें अवार्ड्स लेने और तारीफ पाने का सिलसिला लगातार चलता रहा,
0: जी
1: तो इसके बाद कौन सी फिल्म आई?
0: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की,
1: मेनन के साथ।
0: महाराजा मेनन के साथ ही किया
1: जी।
0: एक, और फिर ब्रिकलेन हैपेंड। फिर कुछ दिन, कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी
1: मजा
0: ऐसा
1: नहीं आ
0: नहीं है
1: रहा था
0: कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा नहीं
1: उस
0: हो रहा
1: दौरान।
0: था।
1: एक बांग्ला फिल्म भी की,
0: बिबौर, हाँ
1: बिबौर।
0: बांग्ला बिबौर भी की, फिर मुझे ब्रिकलेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके। फिर ब्रिकलेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
1: ये डिसीजन

0: किस चीज पर बेस्ड था?
1: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली ये भी था,
0: ये भी
1: हाँ
0: था,
1: प्यार हो गया
0: वाह
1: ये भी था,
0: वाह।
1: दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो, रॉयल ओपरा हाउस में। जॉसलिन पुक, जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के, तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर
0: कितना फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
1: द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, लाइक
0: बिल्कुल
1: प्रोफेशनली चलती है वो। लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए, कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ। तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी। क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूं जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलकर लिखा। पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे, ये हॉबी हो जाती है। जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस।
0: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
1: या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं,
0: बिल्कुल
1: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है और जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है।
0: ऑफ कोर्स।
1: बट द थिंग इज, वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं।
0: तो लंदन में थिएटर होता रहा,
1: हाँ
0: अलग अलग प्रोडक्शंस में काम
1: यस
0: किया।
1: किया। और यहां पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया, दक्षा शेट और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो,
0: वाह वाह, क्या बात
1: मतलब
0: है।
1: इट वॉज फैंटेस्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिक लेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स।
0: एवरीथिंग
1: या
0: यस। मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई?
1: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना, फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको, बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की। सो ऐसी चीजें मैं करती गई।
0: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
1: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक, यू नो, जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए। सो वर्क वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर। आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली।
0: अच्छा,
1: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रह वहां रही थी पर यहां काम कर रही थी काफी सारा। सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर। तो मुझे लगा कि यहां थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए,
0: तो आप वहां से वापस आ गई
1: वापस आ गई। और
0: और
1: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं, सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट।
0: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
1: जी,
0: अब भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
1: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए ही हुई, क्योंकि
0: अच्छा।
1: वो भी वहीं का प्रोडक्शन था। या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे,
0: जी
1: ही इज ब्रिटिश।
0: ओके।
1: या
0: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
1: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे, और
0: ओके अच्छा,
1: मार्टिन शीन, कार्ल पेन, ये सब भी,
0: हाँ
1: वो
0: वो दूसरी,
1: इंटरनेशनल फिल्म
0: करेक्ट
1: थी। या
0: करेक्ट,
1: या
0: जी जी जी
1: या
0: बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी।
0: अच्छा,
1: और
0: और एक ट्रेजेडी होने वाली है, उसके इर्द गिर्द
1: हाँ
0: बुनी
1: उसके,
0: गई
1: हाँ
0: फिल्म।
1: फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय, व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब तो काफी सारा वो वहां इधर दोनों का काम कर।

0: रही थी।
1: बिल्कुल मजेदार है ये, मुझे लगता है कि यहाँ भी एक गाना सुनते हैं फिर आगे की बात करते
0: बिल्कुल।
1: हैं। तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
0: मुझे नूर जहान के गाने जो हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
1: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है, आवाज दे कहाँ है
0: बिल्कुल,
1: वो भी सुना जा सकता
0: वो
1: है।
0: भी हाँ हाँ वो भी सुना जा सकता है।

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की,
1: जी
0: मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एन वाई, सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें,
0: वो एक फिल्म थी, यस
1: वो
0: यस।
1: मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी, और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम, सो
0: अरे
1: आई हैड द
0: वाह,
1: प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन
0: डंपिंग द मेन हीरो, क्या बात है, मजे
1: स्क्रीन.
0: की बात है।
1: नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली. मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी, और बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर हैं वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास. और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है.

0: कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो। स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है।
1: एक सील ठप्पा, एक
0: हाँ
1: टाइपकास्ट वाला मामला
0: हाँ बट
1: होता है।
0: ऐसा नहीं होता है, यू नो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने
1: हाँ,
0: पार्च्ड
1: मैं
0: जो
1: बस उसी की तरफ आ रहा
0: किया।
1: था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म आपके करियर की है
0: हाँ
1: पार्ज, जो
0: पार्च्ड,
1: महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना
0: यस,
1: चाहिए।
0: और पार्च्ड वॉज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन
1: अरे
0: इनिशियली,
1: वाह,
0: यस।
1: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था।
0: हाँ
1: वाह,
0: मैंने ये लिखा था और मैंने एक दिन हम लोग मिले थे लीना और असीम और हम सोच रहे थे कुछ करे कुछ करे, तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं, मैंने कहा बनाओ मैं दे देती हूँ तुमको। सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड, देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का, एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले और ऐसे करके बनी वो।
1: वो एक शानदार फिल्म बनी।
0: हाँ वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी और
1: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें।
0: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सब की कास्टिंग हुई एंड वी हैड लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम यू नो शूटिंग दिस टुगेदर, बॉन्डिंग, एंड हमने साथ में बनाई इस फिल्म को, यू नो वी ऑल गॉट टुगेदर एंड मेड द फिल्म। रसल कार्पेंटर जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है, ही इज अ सिनेमाटोग्राफर ऑफ एवटार्स एंड टाइटैनिक, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों ही शॉट द फिल्म, और ये असीम बजाज की वजह से है
1: वाह
0: हु इज आर
1: वाह,
0: प्रोड्यूसर और लीना के पार्टनर भी हैं वो। सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर, वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए,
1: वाह,
0: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया
1: बड़ा हो
0: पूरा।
1: गया, और फिल्म
0: हाँ
1: बात भी बड़ी करती
0: बड़ी,
1: है,
0: हाँ
1: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची एक
0: यस,
1: तरह
0: यानी
1: से।
0: लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई, यू
1: वाह,
0: नो सो इट वॉज रियली फैंटास्टिक, एंड ऑल्सो वर्किंग विथ सच अमेजिंग एक्टर्स, सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही है। जोरम के बारे में बात कीजिए,
0: जी
1: क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म
0: फिल्म
1: है।
0: है। हाँ तो अगेन देवशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है।
1: वाह,
0: ही इज अ अनअपोलोजेटिक अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट
1: बिल्कुल अपनी
0: जो
1: तरह की फिल्में करनी है।
0: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है, और मैं इसलिए देवशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ। तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी, आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड येल्लो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है। तो देवशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है बट आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वॉन्ट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस। मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूं,
1: वाह,
0: दैट्स ऑल।
1: क्या बात है। और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी
0: बिल्कुल
1: देवाशीष की तमाम फिल्मों की
0: बिल्कुल
1: तरह।
0: बिल्कुल कमाल, और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया, एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है, यू
1: बिल्कुल
0: नो ही इज सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, एक्टर तो सबको पता ही है वो है
1: बिल्कुल, तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है। मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है, और
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए,
0: या
1: क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं।
0: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है।
1: हाँ बिल्कुल, पीछे भी वो
0: मैंने गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई, फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है
1: अच्छा,
0: पे थी वो, और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था, वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था। और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था, क्योंकि अनंत जी
1: ऐसा
0: के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ, तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, अरे व्हाई कांट इट बी अ शी, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली ऑफरिंग मी अ रोल इन द फिल्म बट नॉट द सेंट्रल कैरेक्टर,
1: राइट।
0: सो ही

0: ओके और मैं डैलस जा रही थी नेक्स्ट डे किसी और फिल्म के लिए. व्हेन आई केम बैक ही सेड कि ओके दीज आर योर डेट्स एंड यू कम एंड या नाउ इट्स नॉट ही इट्स शी. आई वाज लाइक ओके
1: बाबा
0: वंडरफुल.
1: क्या बात है,
0: हाँ देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमा भाई
1: वो भी उनके साथ ही है,
0: उनके
1: बिल्कुल,
0: साथ
1: जिसका
0: की.
1: जिक्र हमने अभी पीछे किया,
0: बिल्कुल
1: देश की पहली डॉक्टर, महिला
0: देश की
1: डॉक्टर
0: प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर.
1: जी।
0: हाँ वो की मैंने और उसमें तो बहुत ही मतलब इट वाज अ हार्ट क्योंकि ये जर्नी थी उसकी. और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणेचा मुलगी हूँ.
1: क्या बात है,
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया एंड आई वॉज लाइक कंफ्यूज क्योंकि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा
1: जो वहां दिख रहा
0: वहां दिख रहा है. एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो.
1: है।
0: इट्स
1: यस
0: नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो यू नो बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो अच्छे से सीखो.
1: क्या बात है। तो तीन फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ,
0: हाँ अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
1: क्या बात है, एक ही डायरेक्टर के साथ चार फिल्में,
0: हाँ उनके
1: ये
0: साथ
1: तो
0: मुझे
1: कमाल
0: काम
1: की
0: करने
1: बात
0: में
1: है।
0: बहुत मजा आता है. वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं मतलब दे आर सो. तो पास्ट टेंस में परेश और स्टोरी टेलर भी की फिफ्थ. यस
1: लीजिए, एक फिल्म तो छूटी गई थी।
0: आई हैव डन स्टोरी टेलर ऑल्सो विद आनंद जी.
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इंपॉर्टेंट फिल्म है और
0: बिल्कुल
1: बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया
0: जी
1: है।
0: जी जी जी एंग्री इंडियन गॉडेसेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी कुछ नहीं था. ऑल दी एक्सेप्ट फॉर माय कैरेक्टर एवरीबडी ऑल्सो डिवेलप देयर ओन कैरेक्टर्स. मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय विकास मिश्रा की इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था. दैट्स व्हाई आई हैड टू आई ज्वाइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. देव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ. आई कुडंट बी जबकि मैं मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटिल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस और वो एंड
1: लेकिन
0: वक्त
1: फिर
0: पे
1: बीच
0: यहाँ
1: में
0: डेट
1: चीजें
0: आए तो हो
1: दूसरी।
0: गया. एनी एनी वे सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था 1 साल पहले और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया जिस ढंग की मतलब कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई यू नो एवरीथिंग वॉज सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट. सो इट्स अ पर्सनल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस एंग्री इंडियन गॉडेसेस.
1: वाह, बिल्कुल, और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला, उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का। यहां भी एक गाना सुनते हैं,
0: बिल्कुल.
1: कौन सा गाना होगा?
0: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है बट
1: वाह,
0: उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन वो सॉन्ग.
1: हमने अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है, अब
0: हाँ
1: हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते
0: स्वानंद माफ कर दे. पर ये एनएसडी में जब हम थे ना वो तब से गाता था
1: तब से
0: ये.
1: गाते हैं, बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल।

0: अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माई फादर एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये। और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं। एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माई प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वॉज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल। तो उसके बाद काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब वाइल वी वर शूटिंग इट, सो इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। और फिर फिल्म खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म। इट वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट रैंडमली गॉन टू माई गायनोकोलॉजिस्ट टू डू सम चेकअप्स, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। और वहां उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है।
0: लेकिन इसके कोई लक्षण

0: पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रही लगातार।
1: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में
0: और उसने कोई संकेत नहीं दिए?
1: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज सो आई वॉज लाइक ये कैसे हो सकता है,
0: बिल्कुल
1: यू नो, एंड इट वॉज अनरियल। और इट वॉज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माई फादर टू
0: द सेम थिंग।
1: या इट वॉज ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया CML। सो आई डिडंट नो हाउ वुड आई टेल माई मदर।
0: ओ गॉड।
1: तो मैं रिपोर्ट्स जो है हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय, कि हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ये भी। तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर आई हैड 9 ईयर ओल्ड, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी, डॉटर एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक, एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर। बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेल हर एट सम पॉइंट। मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी, और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है, बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन। तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज टॉकिंग टू दीज टू पीपल। मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कांट डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूं, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है, मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूं, नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर, इमोशनली प्रैक्टिकली फाइनेंशियली देर इज नोबडी एल्स, so how would I do this, and the expenses of my treatment is obnoxiously high.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Initially insurance also refused my claim.
0: Kyun?
1: Unke bahut hi gande funde hote hain, uske andar main ja hi nahi rahi hu, and I had to fight and fight and fight with the insurance.
0: Aap jeeti?
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: But the thing is there were too many battles. You know, isme main heal kaise hu? Because it's also about healing and I was coming and the stress of the film.
0: वो तो रखा ही हुआ था.
1: तो it was just I had reached the rock bottom the day the insurance claim got rejected. मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड. That day I really hit the rock bottom ki yaar iske aage ab acha hi hoga, isse bura aur kya hoga.
0: Bilkul.
1: But my sister told me ki nahi, tumko apne doston ko batana padega. You have to tell your friends, nahi to if not now then when, wo sirf party kar le ke liye hai kya. That's when I reached out. Mera ek girl gang hai. Maine sabse pehle unko bataya.
0: Wo log kaun hai?
1: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है.
0: इसलिए तो मैंने नाम पूछे हैं जी.
1: और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकणा है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतौंदकर है, दिस वाज आर गर्ल गैंग, ऋचा चड्डा है. तो ये इन्होंने मुझे एक्चुअली रिचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया जिनके पास मैं गई फाइनली. शबाना जी आके मेरी मम्मी से मिलके, यू नो जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं अकेली नहीं है. एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, संजय सूरी है, ऑनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं, और मतलब उसका तो मैं क्या कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है.
0: गजब.
1: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ. एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है. मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है.

0: एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन. मुझे हर
1: जबकि
0: 21
1: डेढ़ साल बीत चुका है.
0: हाँ 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए. बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सब के बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, एआई, बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग विच हील्स एवरीथिंग. और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके.
1: ये कितना मुश्किल
0: सो
1: था.
0: ये मुश्किल नहीं था बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था. और मेरी बहन आई थी, मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था. एटलीस्ट वन पर्सन इज टेकन केयर ऑफ. मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम, पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुम को अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी. आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट. और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माई फिल्म. आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक
1: ये
0: अलॉन्ग.
1: प्ले का आइडिया जो शुरू होता है,
0: हाँ
1: ये वाली कहानी बताइए,
0: ये
1: क्योंकि
0: शारिफ
1: इस पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल,
1: गुजर रही
0: जिस
1: थी.
0: दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिफ से मिलने वाली थी. और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूं उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूं क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट
0: डाइवर्ट
1: होगा.
0: रहेगा. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कि ऐसा रिपोर्ट में आया है, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को एंड आई ब्रोक डाउन. उसने मुझे अपनी पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ
1: वेरी
0: कैंसर.
1: डिफिकल्ट
0: ये
1: टाइम.
0: वेरी
1: या
0: डिफिकल्ट, शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप. और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को अभी लिखते हैं हम
1: वाह
0: इसी इसी के बारे में
1: वाह
0: लिखते हैं.
1: क्या बात है.
0: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट. तो दैट इवनिंग वॉज इनक्रेडिबल, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने. और दैट वॉज द लास्ट इवनिंग. मैं एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे.
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि ठीक हो जा. अपने ही सेल्स हैं विच हैव गॉन रूग, इट्स अप टू मी इफ आई कैन हील. ये मतलब इट जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ लाइक दैट. एंड दैट्स द डे मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले. फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया. और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने.
1: क्या बात है. और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया.
0: यस, हमने शोज भी किए अब
1: पहला
0: तो.
1: शो कब कहां हुआ था.
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ.
1: जी.
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है. और फिर आगे और भी करेंगे शोज.
1: यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
0: हाँ
1: सुनते हैं.

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से इस मुश्किल से गुजर चुके हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक सर्वाइवर से और ऑनकोलॉजिस्ट से और आम जनता, हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑनकोलॉजिस्ट भी आए थे देखने और लखनऊ में बहुत फेमस ऑनकोलॉजिस्ट आए थे और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखानी चाहिए क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर, अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग, आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते। और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि, और इमोशनली कह रहे हैं क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने एक कहानी कही है, पर स्क्रीनिंग करवाना अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन, आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना, टेस्ट करवाना, ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी, आपको पता नहीं है मैंने ये नहीं की, ये गलती की मैंने, क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूं, मुझे कुछ नहीं है, मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ। सो बट यू जस्ट नेवर नो, ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम। तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो, हाँ उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है तो प्रोग्नोसिस सबका अच्छा होता है, लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। ये म्यूटेशंस क्यों होता है वी रियली डोंट नो, साइंस डजंट नो इट, और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं तो करेज कायम रखना, अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज अ सर्वाइवर। इतने सारे लोग जो इन चीजों से, इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
2: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं ये मानती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, आज मैं अपने फिल्म को लेकर

0: दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूँ, अपना प्ले कर रही हूँ, अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूँ. आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप
1: इस
0: यही कर
1: लम्हे में
0: सकते
1: जो
0: हो
1: जो भी
0: और
1: है बस
0: हियर
1: यही पल
0: एंड
1: है।
0: नाउ. कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे. ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था बट अब तो मतलब ये इंटरनल है. वी रियली डोंट नो. मतलब मैं एक दिन पूरा एक आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन. द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस. हाउ बिजार इज दैट. मेरे दोस्तों को जब पता चला वो सब ये कहने लगे कि टैन मतलब यू नो क्योंकि आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई एम नॉट दैट यू नो. सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया. आई ईट हेल्दी, आई हैव ऑलवेज बीन फिट. मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का. मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट. सो हाउ देन जस्ट यू जस्ट नेवर नो. तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवा ता हबे. आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त हियर एंड नाउ. मैं जब कीमोथेरेपी पे जाती थी मैं दोस्तों को बुला लेती थी वहां. हमारे अड्डे चलते थे वहां. कोई पोएट्री पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुना रहा है, वो हम चुटकुले
1: क्या
0: मतलब ये
1: बात है,
0: ताकि वो वक्त निकल जाए. मेरे
1: बिल्कुल।
0: ट्रीटमेंट का जो पेन है, बाल झड़ रहे थे मैंने शेव करवा लिए.
1: और वो भी पब्लिक को दिखाया प्रॉपरली
0: यस
1: कि यस आई एम गोइंग थ्रू दिस।
0: यस आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. आई मीन दैट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई एक्सपीरियंस्ड इट. आई एम एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स एंड आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस. और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं.
1: बिल्कुल। तनिषा, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
0: मत कल का सिर्फ पता है
1: कल
0: क्योंकि
1: का
0: मैं
1: बताए कि कल
0: परसों
1: कहाँ जाना
0: दिल्ली
1: है,
0: जा रही हूँ. फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है वहां हैबिटेट सेंटर में.
1: तो क्या अगले
0: नहीं,
1: प्ले की कोई प्लानिंग है?
0: कुछ चीजें लिख रही हूँ लेकिन वो कब आएगी कब होगा ये पता नहीं अभी. पर आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स. फिल्म भी लिख रही हूँ, प्ले भी लिख रही हूँ.
1: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं?
0: नहीं, एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है. अभी बेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ. हमने लिखा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं. मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो. सो शी हैज डायरेक्टेड इट.
1: ओके, वाओ, बढ़िया बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही हैं, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ, क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है. फिर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, बहुत मजा आ रहा है. तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल. थोड़ा वहाँ रिलैक्स भी हो जाते हैं. बेटी भी सीख रही है, स्विमिंग सीख रही है. देन आई स्पेंड टाइम विथ हर. खाना बनाने में मुझे मजा आता है और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी
1: काम करना पड़
0: कॉन्सेंट्रेट
1: रहा है।
0: करना पड़ता है. तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ.
1: क्या बनाती हैं?
0: हाँ, मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा. मेरा खाना आजकल जो हो रहा है. मम्मी कहती कि अच्छे इसको बुला लो उसको बुला. मैंने कहा कि घर पे लोगों बुलाएंगे खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है. मेरी वजह से अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के, उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन, उसको सब एफर्टलेसली आता है. इतना सुन चुकी है वो कि इस खाने में क्या विटामिन है, क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी.
1: राइट राइट, सो शी इज एन एक्सपर्ट नाउ।
0: या
1: बिल्कुल
0: वो
1: सही है।
0: एक्चुअली मुझे टीज करने लगती है. अभी मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है, वो मिनरल्स है और ये
1: पहले ही बोल देती। क्या बात है
0: मिलेगा.
1: तनिषा, बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे।
0: बिल्कुल. और जाते जाते एक गाना,
1: जरूर,
0: जीवन से भरी तेरी आंखें
1: मजबूर करें
0: करे
1: जीने के
0: जीने
1: लिए
0: के
1: सफर,
0: लिए.
1: फिल्म का ये गाना।
0: यस
1: इस गाने को इंदीवर ने लिखा है
0: हाँ
1: और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जयरंजी हैं।

0: तनिषा बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से और
0: जरूर आइए, स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को संजय पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, साथ ही आपको आनंद से कई प्रकार के फिल्मी गीत सुनाने आया हूं, जो कि आपकी पसंद के फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम के तहत। आप 5:40 से 5:10 तक हमारे केंद्र पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर है 015-82-240-168। कार्यक्रम है फ़ोन करें गीत सुने। साथियों, हम बात करते हैं आप ही की, यानी कि आप युवा हैं और आप पढ़ते लिखते भी हैं, छात्र भी है, और छात्र हर तरह से अपने आप में सुदृढ़ होते हैं। छात्र राजनीति से देश का विकास कैसे हो सकता है? युवा दोस्तों, छात्र देश का भविष्य होते हैं। विद्यालय में पढ़ते हैं या महाविद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यार्थी केवल शिक्षा ही प्राप्त नहीं करते बल्कि अपने देश का नेतृत्व भी करते हैं, अनुशासन भी रखते हैं और सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी छात्रों में होती है। छात्र राजनीति इस प्रक्रिया का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छात्र राजनीति से विद्यार्थियों को लोकतंत्र की कार्यशैली समझने और अपनी समस्याओं को उचित तरह से उठाने का अवसर भी मिलता है। चुनाव, विचार विमर्श और नेतृत्व, ऐसे निर्णय लेने में, ऐसी प्रक्रियाओं में छात्रों को नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ जिम्मेदारी की भावना भी आप लोगों में पैदा होती है। यदि विद्यार्थी आगे चलकर समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका वही निभा सकते हैं जिनमें नेतृत्व क्षमता होती है, अनुशासन में वो रहते हैं और सहयोग की भावना के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी उठाने की क्षमता रखता है। आज बात करें सकारात्मक छात्र राजनीति की, जो कॉलेजों में शिक्षा के तौर पर ले लें, पुस्तकालय के तौर पर ले लें, खेल, स्वच्छता और छात्र सुविधाओं और अन्य आवश्यक मुद्दों को बेहतर बनाने में छात्र राजनीति अपना योगदान देती है। साथियों, इसके साथ साथ ही सामाजिक जीवन में जागरूकता लाना, यानी जागरूकता अभियान में और पर्यावरण संरक्षण में, नेत्रदान में, रक्तदान में, स्वच्छता अभियान में या जरूरतमंद लोगों की सहायता करने जैसी कार्यों में भी छात्र राजनीति अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकती है। हालांकि छात्र राजनीति का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। जातिवाद, हिंसा, धनबल, बाहुबल और राजनीतिक स्वार्थ से छात्र राजनीति को दूर रखना बहुत जरूरी है। यदि छात्र राजनीति के विचार रखें, शिक्षा, सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित यदि हो, तो युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण में ये बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। छात्र राजनीति यदि सकारात्मक सोच और अनुशासन, शिक्षा और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ यदि की जाए, तो ये केवल छात्रों के हितों में ही नहीं बल्कि समाज और देश के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। साथियों, ये तो हुई बात छात्र राजनीति से किस प्रकार देश का विकास हो सकता है। आइए सुनते हैं काम की बात।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, अब बात करते हैं आपके फोन कॉल्स के बारे में और सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आया, गीत की फरमाइश की है नवाब चौक लोहारपुरा से मोहम्मद हसन ने, और आप सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया आया सावन झूम के फिल्म का ये गीत। इसी गीत को सुनना चाहा है राजेश जी कुमावत, पप्पू हलवाई दूली चंद ने, पुराना तेलीवाड़ा नागौर से।

कार्यक्रम में अगला फोन किया है मुकेश शर्मा अमर सिंह कॉलोनी नागौर से। आप सुनना चाहते हैं कार्यक्रम का चलते चलते फिल्म का ये गीत।

अगला गीत सुनना चाहे है प्यार का मौसम फिल्म से, जाट कॉलोनी नागौर से रामनिवास सांगवा ने।

कार्यक्रम का अगला गीत गूंज उठी शहनाई फिल्म से सुनना चाहा है बी आर मिर्जा कॉलेज नागौर से अनवर हुसैन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाह है डीडवाना बाईपास फाटक नागौर से मनीषा, सुनना चाहती है सनम बेवफा फिल्म का ये गीत।

साथियों, कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने। हमने आपको आपके पसंद के गीत सुनाए, और भी आप फोन कॉल्स करेंगे तो हम आपकी पसंद का गीत सुनाएंगे। बात करते हैं उच्च शिक्षा के लिए सरकारी ऋण। आज के समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करना हर विद्यार्थी का सपना होता है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कई विद्यार्थी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं या पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की सहायता के लिए भारत सरकार विभिन्न सरकारी बैंकें शिक्षा ऋण यानी एजुकेशनल लोन भी देती है। इसका उद्देश्य योग्य विद्यार्थियों को आर्थिक कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के अवसर देना। सरकारी शिक्षा ऋण के माध्यम से विद्यार्थी देश या विदेश में मान्यता प्राप्त संस्थाओं में स्नातक कर सकता है, स्नातकोत्तर या तकनीकी या व्यवसायी या अन्य मेडिकल उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है, और वहाँ के पाठ्यक्रमों की फीस, पढ़ाई से जुड़े आवश्यक खर्चों के साथ साथ वो लोन भी ले सकता है। लोन की सुविधा पाठ्यक्रम संस्थान या बैंक के नियमों के अनुसार ही निर्धारित होती है। भारत सरकार विद्यार्थियों की सहायता के लिए सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम यानी CSIS और PM विद्यालक्ष्मी जैसी योजना भी संचालित करती है। पात्र विद्यार्थियों को इन योजनाओं के अंतर्गत शैक्षिक ऋण के लिए ब्याज में सहायता या अन्य सुविधाएं मिल सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों पर पढ़ाई का वित्तीय बोझ कम हो, इसके लिए सरकार ये योजनाएं चला रही है। शैक्षिक ऋण के लिए सामान्यतः विद्यार्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश होना जरूरी होता है। आवश्यक यह है कि आवेदन करते समय प्रवेश पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक संबंधी जानकारी या अन्य कोई दस्तावेज जरूरत के हिसाब से प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। तो साथियों, विद्यार्थी संबंधित बैंक या अधिकृत ऑनलाइन माध्यम से भी अपना आवेदन कर सकता है। शिक्षा का ऋण यानी एजुकेशनल लोन का भुगतान सामान्यतः पढ़ाई पूरी होने के बाद निर्धारित अवधि के अनुसार किस्तों में किया जाता है। लोन लेने से पहले ब्याज दर, पुनर्भुगतान अवधि, आवश्यक दस्तावेज और बैंक की सभी शर्तों को अच्छी तरह समझना और पढ़ लेना जरूरी है। सरकारी शिक्षा का जो ऋण है वो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा

प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए साथियों, जो विद्यार्थी अपनी प्रतिभा और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है या भविष्य में रोजगार प्राप्त करना चाहता है या देश के विकास में सहयोग प्राप्त करना चाहता है, तो वो सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाए और एजुकेशनल लोन ले सकता है। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं। बारीकुआ नागौर से जसोदा ने हमें फ़ोन किया है और इनकी पसंद का ये गीत हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

इसी गीत को पसंद किया है हरसुख देवा से खारड़ा मुंडवा से, और नियाज पेंटर लोहारपुरा नागौर से

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत सुनिए। खारड़ा मुंडवा से हर्षुक देवासी की पसंद का ये गीत।

साथियों, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गीत आपकी पसंद के सुनवाएं, लेकिन समय की कमी के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो युवाणी कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजय पारासर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, यकीन मानो हर जीत आपकी है, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। चिरमी चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं और सभी प्यारी सखियों को सुनीता चौधरी का नेभरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का कार्यक्रम महिला जगत में। सखियों, हम आपकी और हमारी बातें तो अक्सर करते हैं और हमारे अपनों के बारे में भी हम चर्चा करते रहते हैं, तो आज हम बात करेंगे उनकी जो है आपकी और हमारी दुनिया, यानी कि हमारे बच्चे। और सखियों, जब भी बच्चों की बात आती है ना, तो पालन पोषण के बारे में चर्चा करें तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, यानी कि जिन लोगों को हमने जन्म दिया है उनको पालना पोसना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो केवल उनका भोजन है, उनको रहने के लिए घर दे दिया है या पहनने के लिए कपड़े दे रहे हैं, उसके अलावा अच्छी शिक्षा दीक्षा का भी हमने प्रबंध कर दिया है, इतना भर हमारी जिम्मेदारी नहीं है सखियों। बल्कि बच्चों का जो मानसिक दृष्टिकोण है, उनकी भावनाएं, उनकी बुद्धि, उनके विचार और उनका व्यवहार, ये सब भी सही रहे, अनुशासित हो, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है और हम इस चीज से मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर घर में बच्चा शैतानी कर रहा है और हम ये सोच लें कि चलो उसकी हम स्कूल में शिकायत कर देंगे, मैम से कह देंगे या सर से कह देंगे, उसको डांट पड़ जाएगी, या किसी और के लिए हम सोच लेते हैं कि दादाजी या दादी जी उसको डांट दें, या चाचा जी, ताऊ जी, चाची जी, कोई उसको डरा दे, धमका दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर बात है तो वहाँ पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप बच्चे को सही और गलत में फ़र्क सिखाएं। लेकिन बच्चों को कुछ भी अगर आप सिखाते हैं तो ये ज़रूर उस समय याद रखें कि बच्चा जो है वो हमारी सीमाओं को तोड़ने में सबसे अच्छा होता है, यानी कि हम जो भी नियम बना के रखे हैं या हमने जो भी मर्यादाएं अभी तक फॉलो की है या हमने कुछ बाउंडेशन अगर बना रखी है, तो उनको अगर कोई ध्वस्त कर सकता है तो वो हमारा अपना ही बच्चा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, क्यों कहते हैं ना कि हम अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दबाव में रखते हैं और उसको जब छोड़ते हैं तो वो अचानक से बहुत तेज़ से स्विंग करती है, ऐसा ही बच्चे के साथ आता है। अगर आप सिर्फ उसको बाउंडेशन में रखेंगे, सिर्फ बाउंड्रीज ही क्रिएट करके रखेंगे, तो ऐसे में जो बच्चा है उन्हें तोड़ने के तरीके ढूंढने लग जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि आपको हराना भी सबसे पहले बच्चा ही शुरू करता है। अब हम करें क्या कि हमारे साथ ऐसा भी नहीं हो और हमारे बच्चे भी अच्छे से परवरिश पा सकें, तो शुरू से ही कुछ बातें हैं जिनका कि हमको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सखियों, जो माता पिता होते हैं दुनिया में वो सबसे अच्छे ही होते हैं, हमेशा सबके माता पिता अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक बात होती है कि हम अगर बेस्ट बेटी बन सकते हैं, बेस्ट माँ बन सकते हैं, बेस्ट बहन, बेस्ट भाभी बन सकते हैं, किसी की बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, तो जब हमें अपनी ज़िंदगी में सारे रिश्तों में बेस्ट चाहिए होता है, तो यहाँ माता पिता दोनों को सोचना चाहिए कि उनको पेरेंट्स भी दुनिया के बेस्ट बनना है। यानी आपका जो बच्चा है, अगर आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि आप उसको प्राउड कर सकें, वो बच्चा ऐसा कुछ करे कि आपको उस पर गर्व महसूस हो, तो ऐसे में आपको भी अपने आप को बेस्ट बनाना होगा, ताकि बच्चा भी ये कह सके कि मेरे माता पिता दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। अब इसके लिए करें क्या, तो सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को सुनने की आदत डालें। आजकल के जो बच्चे हैं ना सखियों, वो थोड़ा सुनना कम पसंद करते हैं लेकिन बोलते ज़रूर हैं। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों को सुनने की आदत डालें, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, बच्चों पर कभी भी दबाव नहीं डालें बल्कि उनके दोस्त बने। जिस तरह से दोस्तों में बातचीत होती है वैसे अपने बच्चों के साथ में बतियाएं।

बच्चों को बहुत प्यार दें, उनकी तारीफ करें और खुद उनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बने, ताकि जो बच्चे हैं वो आपको देखकर अच्छी बातें सीख सकें। बच्चा जब भी कुछ कहे, कोई भी बात अगर कहता है, तो उसको अनसुना नहीं करें। या फिर जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे जो सखियां हैं खाना बना रही हैं, उसके अलावा हमारी श्रोता अगर किसी काम में व्यस्त हैं और वहां अगर बच्चा आपसे बात कर रहा है, तो उसे करते हुए बच्चे को नहीं कहें हाँ हाँ तू बोल मैं सुन रही हूँ, या हाँ हाँ बोल मैं सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं करें। बल्कि बच्चे को ये महसूस करवाएं कि हाँ हमारा पूरा ध्यान उस पर है और हम दूसरा कोई काम नहीं करके उसकी ही पूरी बात सुन रहे हैं। इससे जो बच्चा होता है थोड़ा स्पेशल फील करता है और उसको ये लगता है कि उसके माता पिता उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। और जो भी वो बात कहता है उसको ध्यान से तो सुनना ही है, साथ ही साथ पूरा सुनना है। ऐसा नहीं कि बच्चा शुरू करे और आप उसको बीच में काट के चुप करवा दें, ऐसा नहीं करें। उसके अलावा ये ध्यान रखें कि अपने बच्चे की तुलना कभी भी किसी से नहीं करें। यानी कि हम कई बार ऐसा कर जाते हैं, उस बच्चे को देखो कितने परसेंटेज आए हैं, या उनकी बेटी को देखो वो कितनी अच्छी है, या उस लड़के को देखो वो कितना कहना मानता है, उस लड़की को देखो ना वो कितना काम करती है। मतलब हम किसी न किसी जगह है पर कहीं ना कहीं अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करें। आपके बच्चे आपके लिए बिल्कुल अलग हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, दूसरों के बच्चे उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी भी एक से दूसरा तुलना नहीं किया जा सकता, सब अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं। तो ये बात आप भी ध्यान रखें। बच्चों से सखियों ऐसा रिश्ता रखें कि वो आपको अपनी हर बात आपसे बिना डरे, बिना झिझके और बिना किसी संकोच के कह सके। घर का जो माहौल है ना सखियों, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है बच्चों पे। इसलिए हमेशा प्यार से रहें और एक दूसरे के प्रति सम्मान का माहौल रखें। बच्चों पर कभी भी पढ़ाई या फिर किसी भी दूसरी चीज के लिए, कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं डालें, बल्कि उसको एक सपना दें, उसको एक इच्छा दें और उसको पूरा करने के लिए उसका सपोर्ट करें। उसको ये बताएं कि वो कैसे यहाँ तक पहुँच सकता है, उसकी मंजिल उसको कैसे मिलेगी। उसके सहायक बने, उसके मार्गदर्शक बने, उस पर दबाव नहीं बनाएं। क्योंकि हम बच्चे हैं तो गलतियाँ तो होंगी, होती ही हैं, लेकिन उनको यहाँ डांटने की बजाय सही रास्ता समझाएं, सही तरीके से समझाएं। दिन भर में से सखियों कुछ खास वक्त निकालें, वो सिर्फ बच्चों के साथ बैठकर बातें करें, या फिर आप चाहें तो खेलने में भी बिता सकते हैं। इससे बच्चों की जो स्क्रीन टाइमिंग है वो भी थोड़ी कम होगी और आपके साथ में नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी। सखियों जो बातें आप बच्चे में नहीं देखना चाहते उन्हें आप भी न करें, और जो आप बच्चे में देखना चाहते हैं उन बातों को पहले अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि हम हमेशा से ये कहते सुनते आए हैं कि बच्चे हमेशा बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। मान लिया कि हम अपने जीवन के एक पड़ाव पर खड़े हैं और अब बदलना या संभलना संभव नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों के लिए तो हम कुछ कर ही सकते हैं। और सीखने की और शुरू करने की तो कोई उम्र होती ही नहीं है। चर्चा को देते हैं थोड़ा सा विराम, लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

सखियो आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के बारे में। ये कार्यक्रम सखियों देश के अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी के जो वंचित और कमजोर वर्ग हैं उनके कल्याण और विकास के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। सखियों इसको विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं के जरिए लागू किया जाता है, जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विकास योजनाओं के वित्तीय आवंटन का 15% हिस्सा लक्षित होता है। सखियों जैसे शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए जो मेधावी छात्र हैं इन समुदायों के, उनके लिए छात्रवृत्ति, स्कूल शिक्षा तक पहुंच में सुधार और मदरसों के आधुनिकीकरण से जुड़ी हुई योजनाएं शामिल है। सखियों इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं की हम अलग अलग आपको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं हम आपसे ये कहते हैं कि ये पीएम के 15 सूत्री कार्यक्रम में से है जो कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाया गया है। तो इस कार्यक्रम के बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। अगर हम बात करें सखियों अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक सहायता और रोजगार के लिए, तो इस क्षेत्र में स्वरोजगार और कौशल विकास योजनाओं में उचित भागीदारी और ऋण सहायता के लिए भी योजना निर्माण किया गया है। सखियों आवास और बुनियादी सुविधाओं के लिए आवास योजनाओं, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सखियों कमजोर वर्गों के संरक्षण के साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाना, पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना भी इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है। सखियों आप इस कार्यक्रम की और इसके अंतर्गत जो योजनाएं चल रही है उनकी विस्तृत जानकारी अगर चाहते हैं तो आप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं और अपनी आवश्यकता और पात्रता के अनुसार योजना में आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला खूबसूरत गीत।

सखियों, जैसे ही बारिश की पहली बूंद जमीन को छूती है, वातावरण में ताजगी और सुकून पसर जाता है। यानी कि गर्मी से तपते हुए मन को और तन को शीतल सा अनुभव होने लगता है। और लगभग सभी को जो बारिश का मौसम है वो बहुत खूबसूरत भी लगता है, और इसका पूरे साल इंतजार भी रहता है। ठंडी हवाएं होती हैं, काली घटाएं होती हैं, और चारों तरफ खुशनुमा सा मौसम होता है, हरियाली छाई हुई रहती है। तो जाहिर सी बात है कि ये किसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस

खूबसूरत मौसम के साथ साथ एक और भी चीज़ है जो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, और वो है संक्रमित जो बीमारियां होती है, यानी संक्रमण जो होता है, इन्फेक्शन जो होता है, वो बहुत तेज़ी से इन दिनों में बढ़ने लगता है। क्योंकि ये जो मौसम होता है ना सखियों, वो इन्फेक्शन जनित जो रोग होते हैं ना, उनको बढ़ने का पर्याप्त तो मौका देता है। यानी ये बिल्कुल सही सीजन होता है उनके पनपने और उनके बढ़ने का, और ये भी बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर बहुत गंभीर भी हो सकता है। सो क्यों बारिश के मौसम में क्या है, थोड़ी नमी सी रहती है, गंदगी हो जाती है, और भीड़ भाड़ के कारण जो वायरल बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है और आप उसके संपर्क में जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उससे आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और अगर सावधानी नहीं बरती जाती है तो जो मामूली से लक्षण दिखाई देते हैं ना, वो भी गंभीर रोगों में बदल सकते हैं और आपको हॉस्पिटल तक भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है ऐसे क्यों थोड़ी सी सतर्कता और स्वच्छता रखी जाए, यही आपके परिवार की सुरक्षा की असली चाबी भी है। इस मौसम में सखियों गंदे जल स्रोत होते हैं, पानी का ठहराव कई जगह है पर आप देख सकते हैं, उसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जो जगहें हैं वो बीमारियां फैलाने का मुख्य कारण बनती है। इन दिनों में सखियों डायरिया हो सकता है, मलेरिया, डेंगू, फ्लू, टाइफाइड या स्किन इन्फेक्शन और फंगल डिजीज जैसी बीमारियां और परेशानियां हो सकती हैं। सुनने में ये बहुत छोटी छोटी सी जरा जरा सी लगती हैं, लेकिन एक बार अगर थोड़ा सा भी हुआ है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो समस्या को बढ़ने में समय नहीं लगता है और वो थोड़ा गंभीर रूप भी ले सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी है तो आपको तुरंत डॉक्टर से ज़रूर सलाह करनी चाहिए। सखियों खान पान का इन दिनों में ध्यान रखना चाहिए। अगर आप खान पान का ध्यान रखेंगे तो भी आप सेहतमंद बने रहेंगे। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रेश और घर का बना खाना ही आपको इन दिनों में खाना चाहिए। कच्ची सब्जियां और जो फल हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले बहुत अच्छी तरह से धोएं और उसके बाद ही उनको इस्तेमाल करें। पीने के लिए साफ पानी इस्तेमाल करें और रसोई के साथ साथ पूरे घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर गंदगी फैलेगी तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियाज को जन्म लेने और उनके पलने पोसने का उनको पूरा मौका भी मिलेगा। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीज़ें जो हैं उन्हीं को अपने खाने पीने में शामिल करें। आप दही, छाछ है, नींबू पानी है, इन दिनों में पी सकते हैं। और खाने के लिए जैसे हमने पहले भी बात की थी, अदरक है, हल्दी है, काली मिर्च है, इनको अपने भोजन में आप शामिल करें। सखियों स्वच्छता के लिए भी आपको थोड़ा सजग इन दिनों में रहना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं और बारिश में भीग गए हैं तो घर आकर तुरंत आपको नहाना चाहिए और उसके बाद साफ सूखे कपड़े पहने, गीले या फिर जो सीलन वाले कपड़े हैं उनको पहनने से बचें। इसके अलावा यहाँ ये भी कहना चाहेंगे सखियों कि हमारी कई सखियाँ ऐसी हैं, बहुत सारे श्रोता भी ऐसे होंगे जिन्हें बारिश में नहाना बहुत पसंद है और विशेषकर बच्चे तो नहाते ही हैं बारिश में, तो यहाँ ये ध्यान रखें कि आप चाहे किसी भी उम्र के हों, अगर आपको बारिश में नहाना पसंद है तो आप ज़रूर नहाइए, शौक से नहाइए, खूब आनंद लीजिए। लेकिन एक बार बारिश में नहाने के बाद में दोबारा आपको साफ पानी से भी स्नान करना है और उसके बाद आपको पूरे शरीर को अच्छे से पोंछ के तब सूखे स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, गीले या सीलन वाले कपड़े नहीं पहने, और बारिश में नहाने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक उन गीले कपड़ों में भी नहीं रहें, इस बात का ध्यान रखें। और इन दिनों में सैनिटाइजर और साबुन से हाथों की सफाई नियमित रूप से करें। जब भी कुछ खाएं उससे पहले अच्छे से हाथ धोएं और बाहर से जब भी घर आते हैं तो अच्छे से अपने हाथ पैर और मुँह ज़रूर धोएं। डस्टबिन को भी कवर करके रखें और सूखा और गीला कचरा इन दोनों को अलग अलग ही डिस्पोज करें, इस बात का भी ख्याल रखें। अगर आपको सामान्य से ज़्यादा छींकें आ रही हैं, बुखार हो गया है, पेट दर्द होता है, उल्टी दस्त, डायरिया या तेज बुखार हो गया है, स्किन पर सूजन या रेशेज या फोड़े फुंसी दिखाई देते हैं तो इसका इलाज जरूर लें, डॉक्टर से दवाई लें। सेल्फ मेडिसिन या डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाइयां नहीं लें। इसके अलावा मानसून में संक्रमण से बचना बहुत आसान है, बस कुछ बेसिक स्वच्छता टिप्स, खान पान और देखभाल का ख्याल रखें। हेल्दी मानसून के लिए छोटे कदमों की शुरुआत करें, खुद भी स्वस्थ रहें, परिवार को भी स्वस्थ रखें। और जैसा कि आप मौसम देख रहे हैं कि बदरा तो छाए हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं, तो इतनी सारी जानकारी और चर्चाओं के बाद आइए एक मैसेज बदरा के लिए।

ठोकरों के बाद भी संभलना जरूरी है, गिरे हो तो फिर उठना होगा, मंजिल है अगर पानी तो चलना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत अपनी सखी सुनीता चौधरी को, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल, नमस्कार।

महिला अभिसुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक की गिरावट के से 24,472 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी नागौर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और साथियों का गाया छुपा रुस्तम फिल्म से। गीत की रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले

0: तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साधना सरगम और मोहम्मद अजीज का गाया सौदागर फिल्म से। गीत आनंद बख्शी का है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत सुनिए अनुराधा पोटवाल मनहर रुदास के स्वर में जंगल लव फिल्म से। गीत समीर ने लिखा है और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम माटी के स्वर। लोक संगीत के आधारित इस कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं प्रेम नारायण राव। तो आइए सुनते हैं इनकी गायक कुछ लोक प्रस्तुतियाँ।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी के स्वर और हमारे आज के कलाकार हैं प्रेम नारायण राव। तो आइए सुनते हैं इनकी गाई कार्यक्रम की अगली लोक प्रस्तुति।

0: प्रेम नारायण राव की गायी कुछ लोक प्रस्तुतियाँ अभी आप माटी के स्वर के इस कार्यक्रम में सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। इस समय शाम के 6:30 होने को हैं। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर के आमिर चैनल से रिले करेंगे।
1: कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, किसी भी व्यक्ति के गुमशुदा होने पर पुलिस को आयु और लिंग का भेद किए बिना तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।

0: फर्म बॉन्ड और जल संचयन संरचनाओं में सुरक्षा के उपाय अनिवार्य होंगे। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी बारिश, 27 जिलों के लिए कल बरसात का येलो अलर्ट। और राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति के गुमशुदा होने की शिकायत मिलने पर पुलिस को आयु और लिंग का भेद किए बिना तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए अवमानना की चेतावनी दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जांच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए उपाय भी लागू किए थे। मॉनसून सत्र में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा बना हुआ है। इससे सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, किंतु विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़े रहे। श्री बिरला ने कहा कि गृहमंत्री इस विषय पर सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से हंगामा नहीं करने और सदन चलाने में सहयोग की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पर अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधा कृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, किंतु विपक्ष के शोर शराबे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। राज्यसभा में आज अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्य की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। जीआई उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता मानकीकरण के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने एक समझौता किया है। इसके तहत देश के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के व्यवसायीकरण और दुनिया भर के बाजारों तक उन्हें पहुंचाने के काम को रफ्तार दी जाएगी। इसके लिए डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देकर एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत किया जाएगा। प्रदेश में डिग्गी, फार्म पॉन्ड और अन्य जल संरचनाओं में सुरक्षा के उपाय अनिवार्य होंगे। कृषि विभाग ने डूबने के हादसों की रोकथाम और जन तथा पशुधन की सुरक्षा के व्यापक उपाय करने को कहा है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों की तत्काल प्रभाव से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में हर डिग्गी, फार्म पॉन्ड और जल संरचना के चारों कोनों पर खूंटों सहित मजबूत रस्सी बांधने को कहा है। इसका एक सिरा पानी में छोड़ा जाएगा ताकि पानी में गिरने की स्थिति में कोई व्यक्ति इस रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकल सकेगा। साथ ही हर जल संरचना में पुरानी ट्यूब लाइफ सेविंग फ्लोट के रूप में उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी नई बनने वाली जल संचयन संरचनाओं में भी निर्धारित सुरक्षा उपाय अनिवार्य होंगे। इनकी अनुपालना के बिना किसी योजना में कोई अनुदान और वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में कोटा, अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में आज बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में हल्की से मध्यम बरसात का सिलसिला फिलहाल बना रहेगा। कल 27 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट बताया गया है। हालांकि 13 अगस्त से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। टोंक के टोडा राइजिंग में आज झमाझम पानी बरसा। राजधानी जयपुर में भी अच्छी बरसात हुई। वहीं कल बारा, झालावाड़, कोटा और नागौर में जोरदार बारिश हुई। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि काले सिंध और परवन नदियां उफान पर है। हाड़ौती अंचल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: काले सिंध, परवन और चंबल नदियां उफान पर हैं। जलभराव के चलते नौनेरा बैराज के 19 गेट खोलकर 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा सवाई माधोपुर मार्ग पर झरेल पुलिया पर 6 फीट तो रोटेदा पुलिया पर 2 फीट पानी बहने से कई स्टेट हाईवे बंद हो चुके हैं। वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मुकुंद्रा टनल में पानी भरने से रफ्तार थम सी गई है। निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
0: डीडवाना कुचामन के नावा में भी भारी बरसात हुई। तेज बारिश से कई स्थानों पर दुकानों और घरों में पानी भर गया। और ब्यौरा हमारे नागौर संवाददाता से।
2: नावा उपखंड मुख्यालय पर सोमवार रात को करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई और कई दुकानों व घरों में पानी घुस गया। तेज बारिश से बालिका स्कूल चौराहे पर भारी जलभराव हो गया। वार्ड संख्या 6 में कई घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन भी प्रभावित रहा। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में अब तक 7 जिलों में अत्यधिक बारिश हुई है। 18 जिलों में सामान्य और 16 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। वहीं छोटे बड़े 693 बांधों में से 451 आंशिक रूप से भरे हैं और 22 बांध लबालब हैं। प्रदेश में अपराध दर में कमी आई है। साल 2024 की तुलना में इस साल अब तक कुल अपराधों में लगभग 17% और संपत्ति संबंधी अपराधों में 32% से ज्यादा की कमी आई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने आज जयपुर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वीसी के जरिए हुई इस बैठक में डीजीपी ने अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला सुरक्षा और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतने और तय समय सीमा में इनकी जांच पूरी करने पर जोर दिया। श्री शर्मा ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करने और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करने की बात कही। नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे लक्ष्मण रेखा अभियान की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने नार्को सेल को और अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए जल्दी ही नेक्स्ट जेन ई चालान प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही विभाग ने तबादला सूची जारी कर दी है। विभिन्न जिलों में उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सहायक कलेक्टर और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों का दायित्व दूसरे अधिकारियों को सौंपा गया है। महावीर खराड़ी, योगेश कुमार श्रीवास्तव, नरेश बुनकर और डॉक्टर अशोक कुमार को जयपुर में स्थानीय निकाय विभाग में लगाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण रेट की जयपुर पीठ में 2 सदस्यों की नियुक्ति की है। सरकार की ओर से आज उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी गई। सरकार ने अदालत को बताया कि सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी अंतर सिंह नेहरा और वीरेंद्र सिंह बागावत को रेट की जयपुर पीठ में सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं अधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, इसे जल्द पूरा किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत समूचा

0: प्रदेश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। अभियान में अब तक 21 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही है। 9 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान में 12,000 से ज्यादा प्रभात फेरियां निकाली गईं और 12,000 ही वाहन रैलियां निकाली गईं। हर घर तिरंगा पोर्टल पर 40,000 से ज्यादा सेल्फी अपलोड की जा चुकी है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से लोगों में राष्ट्र ध्वज के सम्मान और देशभक्ति की भावना का संचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नागौर, कोटपुतली और बारा में तिरंगा प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया। उधर चूरू और बाड़मेर में भी विभिन्न स्थानों पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई गतिविधियां रखी जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने युवा मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता बढ़ाने के लिए ईएलसी गतिविधियां तेज करने पर जोर दिया है। श्री सिंह ने आज प्रदेश भर के निर्वाचन साक्षरता क्लब ईएलसी अधिकारियों और कॉलेज प्राचार्यों के साथ वीसी से संवाद किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, किसी भी व्यक्ति के गुमशुदा होने पर पुलिस को आयु और लिंग का भेद किए बिना तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। प्रदेश में डिग्गी, फॉर्म पॉन्ड और जल संचयन संरचनाओं में सुरक्षा के उपाय अनिवार्य होंगे। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी बारिश, 27 जिलों के लिए कल बरसात का येलो अलर्ट। और राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। जिले में अगस्त माह की शुरुआत के साथ प्रशासनिक गतिविधियों, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और नशा मुक्ति से जुड़े अभियानों के साथ मॉनसून और त्योहारों की हलचल भी दिखाई दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने, युवाओं को रोजगार से जोड़ने और जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर भी काम चल रहा है। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले 9 तारीख से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ। 9 से 17 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव ने अधिकारियों को तिरंगा प्रभात फेरी, रैली, प्रदर्शनी, तिरंगा कैनवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजावट जैसी गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदर्शनी, लघु फिल्मों का प्रदर्शन, श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन, कैंडल मार्च और विभाजन प्रभावित परिवारों का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत हनुमानगढ़ जंक्शन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान 1,746 नव चयनित अभ्यर्थियों को वेलकम किट दी गई। अधिकारियों ने युवाओं से सरकारी अवसरों का लाभ उठाने और सेवा में ईमानदारी तथा संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील की। अंगदान संकल्प अभियान में हनुमानगढ़ जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। 22 जुलाई तक जिले में 12,828 नागरिक अंगदान का संकल्प ले चुके थे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अधिक अंगदान शपथ लेने की अपील की है। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेफ सिटी अभियान शुरू किया गया है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई पर जोर दिया। नागरिकों से सूचनाएं साझा करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू करने की भी जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत भी महिला सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की गई है। महिलाओं को छेड़छाड़, उत्पीड़न या सुरक्षा से जुड़ी समस्या होने पर पुलिस सहायता लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिले में नशा मुक्ति को लेकर हर ग्राम पंचायत में मनस्वी समितियों का गठन किया जाएगा। इनके माध्यम से खेल प्रतियोगिताएं, योग शिविर, नशा मुक्ति की शपथ, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता और जनसंवाद जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिला प्रशासन युवाओं को नशे से दूर रहने की लगातार अपील कर रहा है। खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत जिले में 26 जनवरी 2025 से अब तक 23,957 नए पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। वहीं गिवअप अभियान के तहत 1,78,000 से अधिक लोगों को योजना से हटाया गया है। प्रशासन के अनुसार इससे पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुँचाने में मदद मिली है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के तहत जिले की पांचों

0: विधानसभा क्षेत्रों में 54 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 65 नई सड़कों का निर्माण होगा। इनकी कुल लंबाई 174 किलोमीटर 750 मीटर है। भादरा, हनुमानगढ़, नोहर, पीलीबंगा और संगरिया क्षेत्रों में मिसिंग लिंक और नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य किए जाएंगे। इससे गांवों और कस्बों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। चिकित्सकों ने जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराने और 6 माह तक नवजात को केवल माँ का दूध देने पर जोर दिया। इसके बाद पूरक आहार के साथ 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रखने की सलाह दी गई। हाल ही में हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। हनुमानगढ़, मक्कासर और गोलूवाला क्षेत्र में कुछ स्थानों पर जलभराव भी हुआ। हालांकि इस बारिश से धान उत्पादक किसानों को फायदा हुआ है। जिले में इस मानसून अपेक्षाकृत बारिश कम रही है, लेकिन किसानों को आगे अच्छी बारिश की उम्मीद है। सावन माह के चलते जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी है। सावन के दोनों सोमवार को लोगों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिरों में भजन और जयकारों का सिलसिला चलता रहा। इस बीच बाजारों में त्योहारों को लेकर गतिविधियां बढ़ गई हैं। हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट साफ कीनो किनीर गम जावण री सूरत माए पुलिस ने उम्र और लिंग रो भेद करिया बगैर तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। प्रदेश माए डिग्गी फार्म पॉन्ड और पानी भेड़ो करण री संरचनावा माए हिफाजत रा जतन जरूरी फैला। राजरा उगनी और लंकाऊ उगनी हलका माए कठे कठे जोरदार मह परछियो। 27 जिला सारू काल बरसात रो येलो अलर्ट और राज्य सरकार 183 आरएएस अहलकारा रा तबादला कीना। समाचार संगे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, सुप्रीम कोर्ट साफ कीनो है कि किणी रे गम जावण री शिकायत मिलन पर पुलिस ने उम्र और लिंग भेद करिया बगैर तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन रिपीट इनरी पालना नी करण वाला राज्यों रा मुख्य सचिव और पुलिस रा मुखिया ने खुद पेश फेवन रो हुकम देता था का अदालत रो हुकम नी मानन रा आरोप री चेतावनी दीनी है। मामला री अगली सुनवाई 5 अक्टूबर ने फैला। इनु पहली सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने गम्योड़ा लोगों रा सगला मामला माए बिना शुरुआती जाँच तुरंत एफआईआर दर्ज करन रा हुकम दीना है। अदालत गम्योड़ा बच्चा ने हेरबा और वारी हिफाजत सारोई उपाय लागू की ना है। संसद रा पावत सत्र रे दौरान हाल ताई दोनों सदना री कार्रवाई माए विपक्ष रा हंगामा रे कारण अड़चन आ रही है। विद्यार्थियों का न्यू लाडला दिना करी जिया विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित करड़ी कार्रवाई समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्षरा सदस्य लगातार हंगामो कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज प्रश्नकाल शुरू करन री कोशिश कीनी, पण विपक्षरा सदस्य विद्यार्थियों रा प्रदर्शन रा मुद्दा माथे गृह मंत्री अमित शाह रा बयान री मांग करता रहा। श्री बिरला कहो कि गृह मंत्री ई मुद्दा माथे सदन ने जवाब देवन सारू तैयार है। वह विपक्ष रा सदस्यों सदन री कार्रवाई चलावन माए मदद री अरज कीनी।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार
1: रहे, सदन चलना चाहिए। राज्यसभा में ऐड़ा ही हालात रहा। सभापति सीपी राधाकृष्णन शून्य काल शुरू कीनो, पण विपक्ष रा शोर शराबा रा कारण सदन री कार्रवाई दोपहर पाछे 2 बजे ताई टाल दी रीजी। ए बीच राज्यसभा में आज अधिकरण सुधार बिल 2026 पास करती उच्चियो। लोकसभा वो बिल

0: पहले ही पास कर दिनो हो। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो बिल पेश कीनो। इनरो मकसद न्यारा न्यारा अधिकरण रा अध्यक्ष और सदस्य री योग्यता नियुक्ति और प्रशासन और काम करण रा तरीका माय दक्षता सुधार स्वतंत्रता साफ गोई और एक रूपता तय करनु है। बिल माय राष्ट्रीय अधिकरण आयोग बनावन रोई प्रस्ताव है। जीआई टैग वाला सामान री दुनिया माय बिक्री बधावन सारू सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन महकमा सागे करार कीनो है। इन तेत देश रा जीआई टैग वाला सामान ने दुनिया भर रा बाजारा ताई पोगावन ने बधावो दियो चावेला। इन सारू एक जिला एक उत्पाद उन जुड़िया तंत्र ने मजबूत बनायो चावेला। प्रदेश माय डिग्गी फार्म पॉन्ड और पानी भेड़ो करण रा दूजा साधना माय हिफाजत रा जतन जरूरी फैला। कृषि विभाग डूबण रा हादसा री रोकथाम और मिनखा और ढांडा ढोरा री हिफाजत रा उपाय करण सारू कहो है। महकमो सगला संबंधित अहलकारा ने हर डिग्गी फार्म पॉन्ड और जल संरचना रा चार ही खूणा मत है खूंटा गार्ड और मजबूत जेवड़ी बांधनु तय करण सारू कहो है। इनरो एक सिरो पानी माय छोड़ दियो जावेला ताकि पानी माय पड़ जावन री सूरत माय ई रस्सी रे सहारे बाहर निकलो जा सके। ईसा गई पानी भेड़ो करण री हर जुगत कने जूना ट्यूब राखना जरूरी फैला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। कोटा अजमेर उदयपुर और जयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए आज घनी जोरदार बिरखा रा आसार है। मौसम विभाग काल राज्य रा 27 जिला सारू बरसात रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। हालांकि 13 अगस्त तो तेज बरसात माए कमी री संभावना है। ई बीच काल 12 झालावाड़ कोटा और नागौर माए जोरदार में बरसियो। माना कोटा खबर नवीस बतायो कि काली सिंध और परवन नदियां उफन रही है और हड़ौती अंचल माए फेरी झमाझम बिरखाऊ जिंदगी माथे असर पड़ियो है।
1: काली सिंध परवन और चंबल नदियां उफान पर हैं। जल भराव के चलते नौनेरा बेराज के 19 गेट खोलकर 4,00,000 क्यूसेक से अधिक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा सवाई माधोपुर मार्ग पर झरेल पुलिया पर 6 फीट तो रोटेदा पुलिया पर 2 फीट पानी बहने से कई स्टेट हाईवे बंद हो चुके हैं। वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की मुकुंद्रा टनल में पानी भरने से रफ्तार थम सी गई है। निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। आशीष मेहता आकाशवाणी समाचार कोटा।
0: नागौर जिला माई चोखी बिरखा भी है वठा तेज बारिशों के ठोड़ा मकाना दुकाना माए पानी भर गयो। और जानकारी महाना खबर नवीसू।
2: नवा उपखंड मुख्यालय पर सोमवार रात को करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई और कई दुकानों व घरों में पानी घुस गया। तेज बारिश से बालिका स्कूल चौराहे पर भारी जल भराव हो गया। वार्ड संख्या 6 में कई घरों में पानी घुस गया। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन भी प्रभावित रहा। श्यामलाल आकाशवाणी समाचार नागौर।
0: प्रदेश में साल 2024 की तुलना में इन साल हाल तई अपराधों की तादाद में करीब 17% जबकि संपत्तियों जुड़िया अपराधा माए 32% उम्बत्ती कमी आई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा आज जयपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए राखी जी मीटिंग माए आ जानकारी दीनी। वह अहलकारा ने अपराधियों रे खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करन रा हुक्म दीना। श्री शर्मा साइबर अपराधा माथे लगाम लगावन सारू 32 शंका वाला हलका री पिछाण करण और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क रे खिलाफ मिलजुल कार्रवाई करण सारू ही कहो। नशारी रोकथाम सारू चलाया जा रहा लक्ष्मण रेखा अभियान रो जिक्र करता थका डीजीपी नार्को सेल ने और सक्रिय बनावन रा हुक्म दीना। वह कहो कि आवन जावन री व्यवस्था ने और बेहतर बनावन सारू नेक्स्ट जेन ई चालान प्रणाली लागू करण रे तैयारी करी जा रही है। राज्य में 183 आरएएस अहलकारां रा तबादला कर दिया गया है। आवता दिना भेवन वाला निकाय और पंचायत चुनाव न ध्यान रखता थका अहलकारां ने तुरंत नवी जिम्मेदारी संभाल बारा हुक्म दिया गया है। चुनाव सारू आदर्श आचार संहिता लागू भेवन पहले ही तबादला सूची जारी करती रिची है। न्यारा न्यारा जिला माए उपखंड अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहायक कलेक्टर और दूजा खास प्रशासनिक

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली है काया, करे जो मेहनत कदे लालच में न आया। बै टूटा छप्पर में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम में सगला काश्तकार भाया ने बहना ने चंचलरो ने भरियो मीठो मीठो राम राम, और सगला बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भाईली बुआ सब ने ढोगर जैसा। महेश भाई आपने भी घने मानू राम राम सा।
7: राम राम चंचल जी आपने, और जो अपना भाई लोग बैठे कार्यक्रम सुन रहे हैं बने में घनी घनी राम राम सा।
6: रामा श्यामा तो है ही, रास तो जो बिरखा की झड़ी लागी है ना, लाड़ली टेम भी आपा जद मिलिया तो खूब चौकी बरसात हो रही है साहब।
7: बिल्कुल बहुत चौको में बरस रहे है, चौमासा को टेम है और बरसात देखो होती रहे, दिन में हो जाए रात में हो जाए, कना भी आसमान में जी आपा बादला ने चालता देखा और बिजली कड़के तो यो लगा कि भी देखो कठिन तो मोरिया बोले और खटे अभी चौको बरसात होगी। तो बिजली की बात याद आई तो ये टाइम बरसात का मौसम है, आप अभी गांव ढाणी कमाए रहवा हाँ, जगह पशुपालक ही वह अपने भेड़ बकरी ने चराबा के लिए कुछ जो की पहाड़ी हुए हैं जगह चराई हुए है बैठे लेके भी जावे और घूमबा फिरबा ने आप भी जावा तो थोड़ी सी सावधानी को भी ध्यान रखना चाहिए।
6: बिल्कुल महेश भाई, आज जब मैं आ रही तो एक तो बरसात बहुत तेज ही और हवा भी चाल रही थोड़ी बहुत, और एक टहनी बहुत बड़ा पेड़ के जो डालो जिन्हें कहवा ना अचानक से टूटर पड़ी। अब आसपास में थे जानू ये थड़ी ही एक और लोग खड़ा ही रह, बरसात हुए तो भाई अभी पेड़ा के नीचे आर खड़ा हुआ है भाई, एकदम सू आर पड़ी कोई के लागी को नहीं या गनीमत ही, पर डर तो बहुत लागो साहब।
7: देखो जगह पुराना पेड़ ही कोई जो को सुकेड़ो है तो बरसात का माय कोई आप खड़े हाँ भी बीज वैसे बचपा के लिए तो कोई पेड़ भी गिर सके है या कोई कच्ची दीवार के सहारे कई बार खड़े हो कि आप आश्रय ले लेवा तो बा भी गिर सके है, बिल्कुल भी कोई भरोसा को नहीं। तो बरसात का माय आपा कटे फंस गया हाँ या मौसम खराब हो रहे भी आंधी तूफान के साथ में बिजली की गिरबा की संभावना है तो आपा जो कोई पक्को मकान हो बिका माय आपा ने आश्रय लेना चाहिए।
6: बिल्कुल। दूसरी बात, आजकल बरसात है और तकनीक को युग है, बिजलियां की तारा भी खूब फैलोड़ी रह है, सब सुविधा तो सुविधा की जगह है पर जब बरसात को मौसम होवे तो कई बार होवे कि तार वार टूट जावे तो ऐसी स्थिति में करंट फैलवा को भी डर रहे है और बड़ो हादसों भी हो सके है। तो ये बात को आप ध्यान रखा कि आसपास कड़े कोई तार टूटे है आपने पत्तो चाले है तो तुरंत आप जो बिजली विभाग की हेल्पलाइन है बट है फोन करना चाहिए, नहीं आजकल तो जगह जगह हर चौराहे पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहे बा नहीं जार सूचित कर दियो या कोई भी संबंधित व्यक्ति ने आसपास का लोगों से पूछ और आपने सूचना देनी चाहिए और ऐसी जगह पे जार खुद हीरो नहीं बनना चाहिए क्योंकि बिजली तो कोई की सगी कोने साहब।
7: बिल्कुल, जगह खुला तार पड़ेरा रहे बिजली का मैं सु कई बार दुर्घटना हो जाए तो आप भी बरसात के मौसम में बाहर निकला तो पगा का माए जगह रबड़ का जूता चप्पल हुए वह आपा पैर के निकला रबड़ का जगह या चमड़ा का जगह लंबा बूट हुए बाने पैर के अपन रात बिरात अगर खेत खलियान में भी जानो पड़े तो बीच में आपने पगा की सुरक्षा भी हो जाए कोई कील कांटो भी कौन लागे और जगह अपनी जगह पशुशाला है भी कमाए भी कोई तार खुला न पड़े रहे ये भी जहां तक।
6: और एक आजकल को चलन चालू है कि भाई बरसात वैली तो जगह जगह निर्जर भी चाले ला पानी भी बह वेलो और नदिया भी आ जावे उफान मार जावे, तो आजकल को जो नयो चलन है जो नया नया टाबर है ए पिकनिक मनाबा जावे साहब यार दोस्त मिलर चार जना आठ जना एकटा और जावे। अब बशी स्थिति में भाई आप रोज तो पानी देखो कोनी तिरबो बहुत चौकी तरीका आवे कोनी आवे भी है तो जब जो वेग आवे पानी को बीमे कोई संभलवा को मौको कोनी मिले

0: ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਪਿਕਨਿਕ ਪੇ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੂੰਬਾ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਸੋਮਬਾਰ ਗਰਬਾ ਗਏ ਯਾਰ, ਬਟੇ ਪੈ ਪੱਗ ਫਿਸਲ ਗੋ, ਪੜਗਾ ਗਿਰਗਾ, ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗੋ, ਜਾਂ ਸੜਕ ਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਡਾ ਛਾ, ਪਾਣੀ ਬਰੋੜੋ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੱਡਾ ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਕੀ ਗਾੜੀ ਸਮਾ ਗਈ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੋ ਚਾਹੇ ਜੇ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹੀ, ਬਠੇ ਦੇਖੋ ਕਾਈ ਵੀ ਜਮ ਜਾਏ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਫਿਸਲਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ, तो पैर फिसल सके, देखो घूमना फिरना की कोई बुराई को नहीं, ध्यान रखना चाहिए, पर थोड़ी सी जो सावधानी जरूरी है।
0: देखो उद्दम फैलो जो है समय सारू उम्र के हिसाब से सब चोखो लागे है, बढ़िया लागे है, लेकिन उद्दम फैला में आपने स्वय विवेक नहीं भूलना चाहिए जे। दूसरी जी की बात है आजकल वो सेल्फी रीला को जो जमानो आयो है भाई, मैं तो अशाशा जोखिम उठार पे रील बनावे है कि देखो मैं तो ऊपरा से कूदू लो निर्जर में, या कोई अब निर्जर में जब आप कूदो हो पहाड़ी इलाका हो वह बठे कत्ती गहराई है, उथलो है, छिछलो है, कशोक पानी है, आपने पतो को नहीं, आप ऊंचाई से कूदोला वेग सु नीचे जाओ लो, कोई भाटा सु टकरा जाओ, था को बैलेंस ही नहीं बने थे, फिसल ही जाओ नीचे आर पड़ो, तो ऐसे में जो रंग में भंग को काम हो सके साहब।
1: बिल्कुल, चाहे ऊंचाण की जगह पहाड़ी की बात हो, चाहे झरना हो, चाहे तालाब हो, बावड़ी हो, सावधानी जरूरी है, सुरक्षा पहली चीज है, और भी के साथ भी आप घूमबा फिरबा को आनंद लियो।
0: अब आनंद की बात आई है तो देखो कार्यक्रम में तो गीत संगीत है जो समो बांधे है और आनंद दिलावे है, तो एक गीत सुना।
1: बिल्कुल सुना सर,
0: सुनो।

0: वाह महेश भाई, बहुत सांतरो गीत आप सुनाया हो छुट्टन सिंह खींचीरी आवाज में।
1: लटपट छाई नागर बेल, बिल्कुल।
0: और बरसात में तो जो बेलड़िया फैल रही है और फैले ही है वनस्पति, और आपको भी आपा ध्यान रखा, आपको औषधीय महत्व भी पतो कर तो चालनो चाहे जे आपने।
1: तो देखो, लोकगीत तो हुयो, पर अब कार्यक्रम के माये जानकारी की बात है, तो कृषि के माये मृदा स्वास्थ्य कार्ड और बीकी उपयोगिता ये विषय पर जानकारी देसी डॉक्टर बंशीधर, और आपसे जानकारी ले रहे हैं नरपत भाई।
0: तो बिल्कुल, अब आपा सुना जानकारी।
2: राम राम किसान भाइयों, आज आपने बीच जानकारी देवा के लिए स्टूडियो में पधार्या छे डॉक्टर बंसीधर जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बनस्थली विद्यापीठ टोंक में प्रभारी के रूप में पदस्थापित छे, जो कि आज आपने जानकारी देवला मृदा स्वास्थ्य कार्ड और बाकी उपयोगिता के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब था को स्टूडियो में स्वागत छे, राम राम सा।
3: राम राम साहब।
2: तो डॉक्टर साहब, आप बताओ कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी की उपयोगिता के बारे में कोई परिचय दियो।
3: सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि मृदा क्या होती है। जो जमीन की 1-1.5 फीट तक की गहराई तक जो मिट्टी उपजाऊ होती है उसको मृदा कहते हैं, जिसमें अच्छा फसल उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन की किसानों की अच्छी आ सकती है, उस चीज को अपन मृदा कहते हैं। भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो उपजाऊ होता है, उस उपजाऊ जमीन को अपन मृदा कहते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, आप बताइए कि मृदा स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी जानकारी अपना किसान भाई दो।
3: मृदा स्वास्थ्य के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मृदा स्वास्थ्य एक उपजाऊ जमीन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होती है। मृदा स्वास्थ्य में क्या होता है कि जितना मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगी उसकी उपजाऊपन देने की क्षमता मिट्टी में ज्यादा होगी। क्यों, जो भी कोई फसल हो वो स्वास्थ्य पे निर्भर करते हैं कि जमीन का जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा उतना ही अच्छा होगा। मृदा स्वास्थ्य के लिए अपन जो बात करते हैं, फसल की पूरी उत्पादकता का आधार मानते हैं, जो खेत में खेती करता है उसका जो उत्पादकता का आधार होता है वो मृदा ही होता है। मृदा में जैविक कार्बन, अम्लीयता, क्षारीयता, लवणता, अन्य परिस्थितियां उसमें फास्फोरस, जिंक, बोरोन, अपना ऑर्गन कार्बन, पीएच, ये सब सामान्य रूप में रहते हैं, तो ये मानते हैं कि मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर ये असंतुलित मात्रा में हो जाते हैं या इनकी कमी हो जाती है तो जमीन बीमार होने लगती है, धीरे धीरे इसका उपजाऊपन घटता है और फसल पैदावार देने की क्षमता भी उसमें कम होती जाती है। इसलिए मृदा स्वास्थ्य को अच्छा रखना बहुत ही जरूरी होता है।
2: तो डॉक्टर साहब, आप बताओ कि जो अपने मृदा स्वास्थ्य है, कौन कौन सा पोषक तत्व की जांच करानी चाहिए जो अपना किसान भाई से करवा सके थे?
3: देखो, मुख्य रूप से जमीन में 17 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी फसल का उत्पादन में योगदान देते हैं, पर जब जांच होती है तो अपने को 12 तत्वों की जांच होती है। उसमें पीएच होता है, ईसी होता है, जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरान तत्वों की जांच अपन कर सकते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी जांच अपनी मशीनों के द्वारा या लैब में नहीं हो पाती है, तो इन जांच में जमीन की अम्लीयता, क्षारीयता, ईसी, कुलशील लवणों की स्थिति, जैविक कार्बन की स्थिति, इन सब चीज़ों का पता लगता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 फसल उत्पादन में मुख्य तत्व माने जाते हैं, जबकि सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरान तत्व है वो संतुलित पोषण होना, जमीन में अच्छी स्वस्थ जमीन में होना, इनका बैलेंस या संतुलित मात्रा में होना बहुत ही जरूरी होता है।
2: तो डॉक्टर साहब, अपना किसान भाई ने बताओ कि जो मृदा स्वास्थ्य जैविक को कई उद्देश्य रहे हो जी?
3: इसका जो मृदा स्वास्थ्य का जो उद्देश्य होता है ना, उसमें यह होता है कि हर खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग होती है, इसलिए उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए
2: जी डॉक्टर साहब।
3: और किसानों को हर वर्ष एक ही मात्रा में यूरिया, डीएपी, अन्य उर्वरकों प्रयोग से बचना होता है। कई बार किसान क्या करते हैं, हर साल लगातार एक जैसा यूरिया डाल रहे हैं, एक जैसा डीएपी फसल में डाल रहे हैं, तो जांच के हिसाब से उनको क्या होता कि जितनी आवश्यकता होगा संतुलित मात्रा में ही यूरिया डीएपी का यूज करेंगे, इसलिए जमीन का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है
2: जी डॉक्टर साहब।
3: मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी मिल जाती है
2: जी,
3: इसकी जांच करवाने से जिस पोषक तत्वों की कमी आएगी उसी की अपन को पूर्ति करनी होती है। उदाहरण के लिए यदि मिट्टी में फास्फोरस पर्याप्त है तो आवश्यक रूप से अधिक डीएपी देने से बचना चाहिए। अगर मिट्टी में सल्फर और जिंक की कमी है तो यूरिया और डीएपी के बजाय संबंधित पोषक जिंक और सल्फर ही अपने को देना आवश्यक होता है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग से कृषि लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है।

0: मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में दीर्घकालीन तक मिट्टी को लंबे समय तक अच्छी बनाया रह सकता है, जांच करवा करवा के बीच में उसके अनुसार उसमें खाद देते रहेंगे। और किसानों के अनुमान के बजाय, किसान क्या करते हैं जनरली अपना अनुमान लगाते हैं कि मैं बाजरा बो रहा हूँ या गेहूँ बो रहा हूँ या चना बो रहा हूँ उसमें क्या देना, अनुमान से करते हैं। जब अपने को मिट्टी की जाँच होती है, जैसा स्वास्थ्य रहता है उसके हिसाब से ही खाद अपने को खेतों में पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाता है, जिससे लंबे समय तक जमीन को उत्पादन को स्थिर रखा जा सकता है और पैदावार में कमी नहीं आएगी, जमीन का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और जो इम्बैलेंस मतलब असंतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक डाल रहे हैं उनसे बचा जा सकता है, इसलिए खेती का। तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए अपन को मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है कि निर्देशों की उनकी पूर्ति होती रहे।
1: बहुत ही चौकी जानकारी दी मृदा स्वास्थ्य कार्ड का कहीं कहीं उद्देश्य, जो अपना किसान भाई ने बहुत ज्यादा फायदा मिले लो। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब मैं थाने वो भी पूछ पाऊँ अपना किसान भाई के लिए कि जो आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना रहे अभी की जांच के लिए कौन कौन सा नमूना और की प्रकार से हमें लेना चाहिए।
0: देखो नरपत जी, किसान जांच तो करवाते हैं पर उनको क्या है कि जांच का जो नमूना लेना होता है ना वो सही तरह से नमूना नहीं ले पाते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है जांच का, 0 से लेके 15 सेंटीमीटर जो मिट्टी होती है उसमें एक सीधा गड्ढा करें और उसको ऊपर से नीचे तक काटें, या एक यंत्र आता है इसमें जिसको कहते हैं ओगर
1: जी,
0: ओगर जमीन को 15 सेंटीमीटर गहराई की मिट्टी को, जैसे गड्ढे खोदने की मशीनें होते हैं किसान पोल गाड़ते हैं बिजली के, वैसे गड्ढे खोदने की मशीन आती है उससे ओगर को घुमा के उसका सैंपल लेते हैं। और उसमें पूरे खेत होता है, 1 हेक्टर का खेत होता है, उस 1 हेक्टर के खेत में 4 या 5 जगह से अपन नमूना लेते हैं और उन सब नमूनों को एक जगह मिला लेते हैं। एक जगह मिलाने के बाद में उनको धीरे धीरे 2-3 बार मिला के 5 नमूनों को एक जगह करके 250 ग्राम के आसपास जो नमूना अपने पास में बच गया उसमें अपना खेत किसान अपना नाम लिखेगा, अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, खेत का कचरा नंबर लिखेगा, गांव लिखेगा, तहसील लिखेगा और जिला लिख के जो भी नज़दीक में मिट्टी पानी की प्रयोगशाला होती है, हर कृषि विभाग का जो जिला स्तरीय मुख्यालय होता है वहाँ भी होती है, कृषि विज्ञान केंद्र जो भी अपने राजस्थान में बने हुए हैं उनके हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होती हैं, वहाँ भी परीक्षण प्रयोगशाला होती है। और आपका जो एग्रीकल्चर का जो क्लस्टर होता है 2 ब्लॉक को मिला के होता है, वहाँ भी लैब होते हैं, उस जगह लैब में किसान अपना नमूना दे दे तो वो अपनी उसकी जाँच होके प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाती है। और आज के टाइम में तो कृषि विभाग ने या राजस्थान सरकार ने यह अनिवार्यता कर दी कि जो भी किसान कृषि विभाग से सब्सिडी लेता है उसमें अपने मृदा स्वास्थ्य का कार्ड उस सब्सिडी के फार्म के साथ में जरूर लगाएगा।
1: बहुत ही चौकी जानकारी बताया डॉक्टर साहब। मैं अपना किसान भाई के लिए यू भी पूछ बताऊँ कि जो मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा आप जो नमूना लेवा चाहिए कौन कौन सी बातें ना अपना किसान भाई ने ध्यान रखना चाहिए।
0: देखो नमूना लेते टाइम में अपने को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अभी जब नमूना लेते उस टाइम में खेत खाली होना चाहिए
1: जी डॉक्टर साहब,
0: और उससे पहले कोई भी उसमें जो खाद वाद होता है ना वो डला हुआ नहीं होना चाहिए, और खेत की मेड या पानी की नाली के पास से नमूना नहीं लेना चाहिए। अलग प्रकृति के अगर खेत 2-3 तरह का होता है, कहीं खेत अच्छा होता है कहीं ऊसर होता है, तो उन खेतों के नमूने भी अलग अलग लेनी चाहिए
1: जी डॉक्टर साहब।
0: खेत का जो है ना वो एक जैसा होना चाहिए। और नरपत जी एक बात और है कि जब भी नमूना लेते हैं तो उस मिट्टी में कोई जड़ पत्ती कोई कंकड़ पत्थर ऐसे साफ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। और जो नमूना की गहराई एक विशेष बात है कि गहराई है ना वो सभी जगह से किसान भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि गहराई एक कभी भी किसान क्या ढेला उठा के टेस्ट करवा लेते हैं तो हर गड्ढे की जो 5 या 6 जगह से हम पल ले रहे हैं खेत में उनकी गहराई भी सबकी एक जगह होनी चाहिए। और ज़्यादा आवश्यक ये भी रहता है कि नमूने के साथ में किसान आवश्यक जानकारी अवश्य दे कि पहले उसने कौन सी फसल बोई थी, आगे बोने वाली फसल कौन सी बोएगा
1: जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब मैं ये भी पूछना चाहूँगा अपना किसान भाई के लिए कि जो बार थे मृदा नमूना लेबा के बारे में तो बता दिया, लेकिन जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड चे तो बीस अपना किसान भाई ने काई उपयोगिता बीस कौन कौन सा लाभ ले सके थे।
0: हाँ यही अपने टाइम में आज की आवश्यकता है कि किसान जांच भी करवा लेता है, कार्ड को देख भी लेता है, मृदा का स्वास्थ्य भी सोचता भी है, पर इसके लिए उसका महत्व क्या है। जब भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपना बनता है तो उसका जो सबसे बड़ा महत्व होता है सबसे पहले अपने देखते हैं कि पीएच मान ये पोषक तत्वों की उपलब्धता से संबंधित काम करता है। और जड़ की वृद्धि के लिए पीएच मान ये होता है कि जमीनों का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, वो जमीन अच्छी मानी जाती है
1: जी डॉक्टर साहब।
0: तीसरी जो दूसरी बात आती है वो होती है ईसी, विद्युत चालकता बोलते हैं मिट्टी की, अगर ये 1 डेसीमीटर से अधिक होती है तो

0: जो भी जमीन में पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषण करने में प्रभावित करती है। जैविक कार्बन, इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि जमीन का जैविक कार्बन 0.5 से 0.7 के बीच में रहता है, तो ये अच्छी पोषक जमीन मानी जाती है कि मिट्टी की संरचना है, जल धारण क्षमता है, सूक्ष्म जीव गतिविधियां हैं, पोषक तत्व तो की उपलब्धता में ऑर्गन कार्बन से सुधार होता है। जो भी किसान खाद देते हैं नरपत जी,
1: हाँ जी,
0: उनको जो पौधों की जड़ों को उपलब्ध करवाता है
1: हाँ
0: उसमें
1: साहब,
0: ऑर्गन कार्बन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर होती है नाइट्रोजन, जो 280 से 560 किलोग्राम अगर किसी खेत में जहाँ से मिलती है तो उपयुक्त होता है। ये पौधों की पत्तियों और तनों की वृद्धि करता है और इसमें प्रोटीन संश्लेषण के काम में भी आपको नाइट्रोजन काम में आता है। फास्फोरस 10 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर अगर मिलता है तो जमीन में उपयुक्त उसकी मात्रा मानी जाती है। इससे कम या ज़्यादा होता है तो उपयुक्त नहीं माना जाता है। जड़ों का विकास है, ऊर्जा का स्थानांतरण है, बीज बढ़ना, फल बढ़ना, इसमें फास्फोरस का महत्व होता है। पोटास है, 110 किलो से कम होती है तो उसको कम मानते हैं, और
1: जी
0: 110 किलो से लेके 280 किलो के बीच में रहती है तो ये पर्याप्त मात्रा में, मध्यम मात्रा में मानी जाती है। तो पोटाश का महत्व होता है कि जड़ों में जल का संतुलन बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पोटाश बढ़ाती है कि कोई भी कीड़ा और बीमारी मिल लगता है तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को पोटाश बढ़ाती है। और उपज की जो गुणवत्ता होती है, दाने में चमक है, उसका मोटा है, अच्छा पकड़ा है, ये भी पोटाश का है। फिर दूसरी चीज़ होती है अपनी सल्फर है। सल्फर क्या है कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाती है,
1: जी डॉक्टर साहब,
0: तो सल्फर भी अपने देख के जांच करके, ये सल्फर से प्रोटीन अमीनो अम्ल का निर्माण होता है जिससे नाइट्रोजन का भी इसमें महत्व बढ़ जाता है। जिंक सल्फेट जो अपनी 6 PPM के आसपास खेत में होनी चाहिए, एंजाइमों की सक्रियता बढ़ती है, वृद्धि निर्माण में भी काम आती है, तथा पौधों का वृद्धि और विकास में जिंक सल्फेट का भी जरूरी है। आयरन है जो 6.5 PM के आसपास होना चाहिए, इसमें आयरन का जो महत्व है वो क्लोरोफिल के निर्माण में काम में आता है। क्लोरोफिल जितना अच्छा बनेगा पौधा में उतना ही पौधे की वृद्धि ज़्यादा होगी।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: प्रकाश संश्लेषण बढ़ाता है आयरन, और एंजाइम की क्रिया को भी बढ़ाता है। और मैं किसानों से नरपत जी, और जो सूक्ष्म तत्व होते हैं अपने कॉपर, मैग्नीज और बोरान, ये भी तीन एक सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनकी जांच भी होती है। इनका सबका महत्व होता है ना सूक्ष्म तत्वों का, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ाना होता है।
1: जी डॉक्टर
0: तो
1: साहब,
0: इनकी भी पूर्ति अपन मृदा के लिए अच्छी तरह करेंगे तो जमीन अच्छी रहेगी और उत्पादन बढ़ेगा, किसानों का लागत खर्चा घटेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और जब सारे चीज अच्छे होंगे तो उनका उत्पादन है वो अच्छी कीमत पर भी बिकेगा।
1: बहुत ही चौकी जानकारी बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बाकी उपयोगिता के बारे में, और यह उपयोगिता हमारा किसान भाई इन्हें मनन भी करेला। लेकिन चलता चलता डॉक्टर साहब, मैं यू भी पूछना चाहूँ जो कि जो मृदा स्वास्थ्य से संबंधित और हमारा किसान भाई अंत कहीं संदेश दे बुझाओ जो भी संदेश के
0: और
1: बारे
0: मैं
1: में
0: कुछ
1: बताऊँ।
0: ऐसे इस मृदा स्वास्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण जो निर्देश है उसमें एक तो यह है कि किसान फसल चक्र का प्रयोग करें
1: जी
0: अच्छी मिट्टी को रखने के लिए, एक जैसी फसलों को लगातार बार बार नहीं बोएं, फसल चक्र। दूसरी चीज, खेतों में दलहनी फसलों का ज्यादा समावेश करें कि
1: जी
0: दलहनी फसलें जमीन की उर्वरता को बढ़ाती हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। एक अपने को जो मिट्टी और सिंचाई का पानी है उसकी भी अपन जांच करवाते रहें, कि ऐसा नहीं कि अपन सिंचाई का, खेत का, कुएं का पानी खराब है मिट्टी की तो जांच करवा रहे हैं, पानी की जांच नहीं करवा रहे हैं, तो उस पानी से भी जमीन खराब होती है, तो पानी की भी जांच करवाते रहें। खेतों में गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद का प्रयोग ज्यादा करें। प्राकृतिक खेती को भी किसान अपनाएं कि
1: जी
0: प्राकृतिक जो बीजामृत, जीवामृत, अग्न्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जो भी प्राकृतिक खेती के अस्त्र हैं उन अस्त्रों का भी किसान अपन प्रयोग करें जिससे जमीन अच्छी स्वस्थ बनी रहेगी। और गोबर की खाद है वो खेतों में सड़ी हुई खाद डालें, गोबर नहीं डालें। किसानों से मेरा नरपत जी में बार बार यही निवेदन करता हूँ हमेशा, किसान की चौपाल हो या किसानों के कोई कार्यक्रम हो या गोष्ठी हो, कि खेत में गोबर नहीं डाल के गोबर का खाद डालें,
1: जी डॉक्टर साहब,
0: कि सड़ा हुआ गोबर का खाद डालेंगे खेत में अच्छे पोषक तत्व तो मिलेंगे, जमीन का स्वास्थ्य अच्छा सुधरेगा। और कच्चा गोबर या ज्यादा सड़ा डालते हैं कच्चा गोबर, तो उससे दीमक, कीड़े, बीमारियां बढ़ते हैं। और एक जो इसी मृदा स्वास्थ्य संबंधित विशेष जानकारी है, किसान 2 या 3 वर्ष में अपने खेत की जांच अवश्य करवाते रहें, और जो मिट्टी पलटने के गहरे हल होते हैं डिस्क प्लाऊ या MB प्लाऊ से, गर्मी के महीने में एक बार गर्मी में गहरी जुताई जरूर करें, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी को ऊपर पलटाई कर देंगे तो अपने फसल चक्र के साथ साथ मिट्टी का चक्कर भी होगा। जब

0: मिट्टी को गर्मी में पलटेंगे तो उसमें प्रकाश जमीन में गहराई तक जाएगा, वायु संचार बढ़ेगा और जमीन में बरसात का पानी होगा वो भी गहराई तक जाने के लिए। तो बारानी खेती में मृदा का स्वास्थ्य, जो ज़्यादा पानी होगा, जो ऊसर के लवणीयता के कण हैं वो पानी में घुल के गहराई में चले जाएंगे। तो ये मेरा किसानों से अच्छा निवेदन है, इस खेती में अच्छी जमीन को रखने के लिए प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दें।
1: बहुत ही चौकी जानकारी दिया डॉक्टर साहब की मृदा स्वास्थ्य कार्ड बाकी उपयोगिता माँ किसान भाई था कि बात सुने आज ने अमल भी कर ला। देखो किसान भाइयों, आपने सामने अभी मौजूद था डॉक्टर बंसीधर जी जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बनस्थली विद्यापीठ टोंक में प्रभारी का पद स्थापित थे और थे माँ के स्टूडियो में बताया। इतनी चौकी और महती जानकारी माँ किसान भाइयों ने पूर्ति करवाई के लिए डॉक्टर साहब था को घणो घणो धन्यवाद। राम राम सा।
2: और धन्यवाद तो नरपत भाई रो भी है कि बहुत फूटरी जानकारी आपने दिवाया।
3: और किसान भाई सुनी जानकारी। अब देखो चंचल जी, चलता चलता जयपुर के मौसम को थोड़ा हाल बता दे। पिछला 24 घंटा में जयपुर को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, अगला 24 घंटा में जयपुर को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ बारिश की संभावना है।
2: बिल्कुल साहब। और अब जब जानकारी वाली बात आई है तो थोड़ा सा मंडी भाव की तरफ भी आपा चला। सबसे पहली बात करा गेहूं री। जयपुर की मंडी में गेहूं रो भाव रहे हो 2535 रुपया प्रति क्विंटल। ओसिया मथानिया में गेहूं रो भाव रहे हो 2300 रुपया। और बीकानेर की मंडी में गेहूं रो भाव रहे हो 2575 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों की बात करा तो जयपुर की मंडी में सरसों रो भाव 3701 रुपया। कोटा की मंडी में सरसों को भाव 7699 रुपया। और रामगंज मंडी में सरसों रो भाव रहे हो 7271 रुपया प्रति क्विंटल। बात करा बाजरा री तो जयपुर की मंडी में बाजरा रो भाव 2080 रुपया। ओसिया मथानिया की मंडी में बाजरा रो भाव 1800 रुपया। बस्सी की मंडी में बाजरा रो भाव 2200 रुपया। और सादुलपुर की मंडी में बाजार भाव रहे हो 1900 रुपया प्रति क्विंटल।
3: और बड़ी इशारों कर रही है कि किसान वाणी को जो समय वो पूरा हो चले तो लेवा आज्ञा करा सबने।
2: राम राम सा।
4: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: उतला बोल रहे
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
5: पर हम तो सब यही डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
8: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम अभी किसान भाई सुन रहे थे। इसे हमने आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले किया था। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। अब आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1347वां भाग सुनेंगे।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
3: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
3: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
3: जी श्रोताओ, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
2: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
3: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
2: जी।
3: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
2: नशाखोरी से दूर रहें,
3: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
2: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
3: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
2: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
3: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था,
2: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
3: श्रोताओं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी

0: हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up!
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: इंतजार। जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। अमृतसर में आसपास के गांवों से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
1: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
1: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
3: रोलेट एक्ट वापस लो।
2: रोलेट एक्ट
3: वापस लो।
2: रोलेट एक्ट
3: वापस लो।
1: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
2: मारो,
1: सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो।
2: डॉक्टर किचलू को
3: रिहा करो।
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो।
0: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली। लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे

0: और गोलियां उन्हें बीनती रही।
1: कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके,
0: लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
2: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? फायर अगेन!
3: सर, कारतूस खत्म हो गए हैं।
2: देख, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर!

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: मासी मेरी लत सीधी करते मासी
2: पापा
1: मासी मासी मेरी लत सीधी
2: कर दिया अल्लाह आए ना लाऊ आए री पुत्र ने तो लाऊ ही लाऊ है
3: पानी
2: पानी पानी पानी पानी पानी कितने लू ही लू है पानी कितने
0: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
4: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
5: जनरल डार,
6: यस सर,
5: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
6: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
5: क्या यह हुक्म आपने फौरन दिया?
6: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
5: क्या वार्निंग नहीं दी?
6: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
5: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
6: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की

0: फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
1: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
2: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
3: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
4: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
5: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
6: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
4: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
3: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊं, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह दुनी बारह।
4: राहुल, खेले नहीं आ रहे?
2: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छह तीय अठारह।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मेरे

0: हिना तू रो क्यों रही है? और राहुल तू खेलने नहीं गया?
1: माँ मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
0: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
1: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
0: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
1: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
0: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
2: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
4: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है पर पहाड़ा।
4: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
3: फिर पहाड़ा कब?
4: देख मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
4: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
4: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
4: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
4: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
2: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
5: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का अभी आप 1347वां भाग सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉ बीआर अंबेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजद के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्दीराजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजद के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्ना द्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए। बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया, लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉ के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, एस सिल्वा गनबेती,
मनोनीत सुधा मूर्ति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके

समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉ. संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात ओडिया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉ. संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे, तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराहन 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराहन 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वें विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब
एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के

0: अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनेट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद समीक्षा, अभी आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से सुन रहे थे ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है एल्बम सॉन्ग, कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

अभी आप एल्बम सॉन्ग सुन रहे थे। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घूमर लोक संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं सीमा मिश्रा और साथियों को।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से आप सुन रहे हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम घूमर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली लोक प्रस्तुति समूह स्वर में।

एफएमएन 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से सुनेंगे समाचार संध्या।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी

0: की है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
5: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
6: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए

0: रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
0: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध

0: लक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए एआई को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एआई ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 9 बजे हैं। अब सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए गुलाम अली की गाई चंद गजलें।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं चंद गजलें, फनकार है गुलाम अली। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल इन्हीं के स्वर में है।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आप विविध भारती मुंबई से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

बेताली फिल्म से आप सुन रहे हैं श्रेया घोषाल और शेखर रजवानी की आवाज में गाना, विशाल ददलानी के बोल और विशाल शेखर का संगीत।

श्रेया घोषाल और शेखर रबजियानी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं तुम बिन फिल्म से, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, फैज अनवर के बोल, निखिल विनय का संगीत।

महालक्ष्मी अय्यर और राघव संचार की आवाज में आप सुन रहे हैं 1 2 3 इस फिल्म से गाना। आदित्य धर के बोल और म्यूजिक है राघव संचार का।

0: यह है विविध भारती। आज के फनकार। दोस्तों आज है खास दिन। जी हां, आज है अभिनेता सुनील शेट्टी का जन्मदिन। उनको विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो आज हम सुनेंगे अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित कार्यक्रम, लेकिन बस कुछ ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिए मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनील शेट्टी 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक मैंगलोर के मुल्की तालुका में जन्मे। तुलु भाषी बंट परिवार के सदस्य सुनील शेट्टी अंक शास्त्र में बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने उसी के अनुसार अपने नाम की स्पेलिंग्स में भी फेर बदल किया है।

आग पानी और भाई जी से कभी खेलना नहीं। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है।

1992 में फिल्म बलवान से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले सुनील शेट्टी को जब दर्शकों ने देखा तो उनमें सभी को एक ही मैन नजर आया।

जैसे जैसे सुनील फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाते चले गए, वैसे वैसे उनके अभिनय में भी निखार आता गया। इसी से उत्साहित होकर सुनील ने कॉमेडी रोल किया अपनी दोहरी भूमिका वाली फिल्म गोपी किशन में। सुनील शेट्टी के दमदार अभिनय को फिल्म इंडस्ट्री ने सराहा। उनके नेगेटिव रोल के लिए फिल्म

इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया 2001 में, और 2009 में सुनील शेट्टी को साउथ एशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म रेड अलर्ट के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मान

श्री शेट्टी ने मुंबई में होटल व्यवसाय भी शुरू किया है और 2003 में फिल्म खेल से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने क्रिकेटर अजय जडेजा को बतौर हीरो चांस दिया और खुद बने।

तो दोस्तों ये था अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अमरकांत के साथ, प्रस्तुति सहयोग पी

0: के ए नायर, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर विजय दीपक छिब्बर। अब अमरकांत को दीजिए इजाजत, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अनगिनत।

0: आ रही हैं विविध भारती पर।
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे।
2: विविध भारती मुंबई से अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत।
4: ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
5: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
6: प्रश्न संख्या 241। क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है। ख प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है। और ग ग्रिड संपर्क पारेषण ट्रांसमिशन अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है।
7: I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpayee ji.

0: तक सीयूएफ उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन की संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है तो ऑफशोर विंड की तुलना में अधिक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है। तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है अध्यक्ष महोदय। चौथा है तो स्कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन के राइट ऑफ वे ऑफ इसे जुड़ी कई कंस्टिट्यूएंसीज सभी बच जाते हैं जो लैंड बेस्ड रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है। कोस्टल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट वेजल फैब्रिकेशन मरीन लॉजिस्टिक और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, इससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
1: द थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी।
2: ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस द रिन्यूएबल एनर्जी इन हाइड्रो प्रोजेक्ट आदरणीय विंड प्रोजेक्ट हाउ मच इट इज अफेक्टेड, इज देयर एनी लॉसेस, इफ इट इज देयर हैव इट बीन मेजर्ड, एंड आई वुड लाइक टू नो हाउ एवरी स्टेट इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट एंड साइक्लोन एंड हरिकेन एंड फ्लड्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू दैट। थैंक यू सर।
3: हेलो मिनिस्टर,
0: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। तो ये जो प्रश्न है आपके मिलने का है और इसलिए इससे संबंधित नहीं।
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।